आदाब, यह आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है। मीडियम वेव 268.81 मीटर और एफएम 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। आप हमें डीटीएच और मोबाइल फोन्स पर न्यूज़ ऑन एयर के जरिए भी समाप्त कर रहे हैं। आज बुधवार है, शक सुमत 1948 के अषाढ़ महीने की 3 तारीख यानी 1448 हिजरी के मुहर्रमुल हराम की 8 तारीख मुताबिक 24 जून सन 2026 ईस्वी। 6:34 हो रहे हैं। हमारी आज की मामूल की नशरियात का आगाज होता है। मैं हूं आमिर अशरफ।

0: ए जिन त इंसानन हंजो दयो तबकाओ अगर सकत छव तो हे जमीन त आसमानन हंजो तंदेव नबर चलन तल से चलियो
1: ला तफुजुना इल्ला बिसुल्तान
0: किही हे किउन चलत जोर रोस

0: हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के श्रीनगर स्टेशन से। 6:55 हो रहे हैं। आइए रुख करते हैं आकाशवाणी दिल्ली का, जहां से आप संस्कृत, अंग्रेजी और हिंदी में खबरें समाप्त करेंगे।
1: संप्रति वार्ता श्रूयंताम प्रवाचक डॉक्टर गणेश हेगड़े। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी उक्तवान् यत् परिवर्तनशील वैश्विक परिस्थितौ सुरक्षा सहकार्यं गभीरं कर्तुं तथा च आतंकवादात् अन्तर्जालीय सुरक्षायाः च आरभ्य उदयमान प्रौद्योगिकी पर्यन्तं समाह्वानानां परिहारे ब्रिक्स इत्यस्य महत्वपूर्णा भूमिका वर्तते। प्रधानमंत्री श्री मोदी गतसायं नवदिल्ल्यां ब्रिक्स देशानां राष्ट्रीय सुरक्षा परामर्शदैः वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारिभिः सह मिलितवान्। सामाजिक माध्यम संदेशे श्री मोदिना प्रकाशितं यत् भारतस्य ब्रिक्स अध्यक्षता व्यावहारिक सहकार्यं प्रवर्तयितुं वैश्विक दक्षिणस्य प्राथमिकतानां समर्थनं कर्तुं सुरक्षित समावेशीय विश्वे च योगदानं दातुं प्रयतते। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी कतर देशस्य अमीरस्य शेख तमीम बिन हमद अल थानी इत्यस्य दूरभाषं प्राप्तवान्। कतरस्य रास लफान औद्योगिक नगरे दुर्घटनायां भारतीय नागरिकाणां निधन विषये कतरस्य अमीरः शोकं प्रकटितवान् तथा च घातितानां शीघ्रं स्वस्थतायाः आशां प्रकटितवान्। श्रीमोदी प्रभावित परिवारेभ्यः सहानुभूति वचनानां कृते कतरमीराय धन्यवादं दत्तवान्। व्रणितानां कृते शीघ्र चिकित्सा सहायता प्रदानाय च प्रशंसितवान्। द्वौ नेतारौ स्वनागरिकाणां कल्याणं सुरक्षाञ्च सुनिश्चेतुं स्वप्रतिबद्धतायाः पुनः पुष्टिं कृतवन्तौ। भारतस्य खनिज मन्त्रालयेन 56 महत्वपूर्णानां सामरिक खनिज खण्डानां अथ 11 अन्वेषण अनुज्ञापत्र खण्डानां च सफल सघोष विक्रयणेन सह क्रिटिकल मिनरल मिशन इति दुर्लभ खनिज कार्यक्रमस्य महती गतिः प्राप्ता अस्ति। मन्त्रालयेन सघोष विक्रयणस्य 7 खण्डस्य अन्तर्गतं 10 महत्वपूर्ण सामरिक खनिज खण्डाः सफलतया सघोष विक्रयणं कृताः। भारतेन पाकिस्तानाक्रमित जम्मू कश्मीरस्य स्थितिविषये कृतटिप्पणी सम्बद्धं पाकिस्तानस्य रक्षामन्त्री ख्वाजा आसिफ इत्यस्य घोरालोचना कृता। विदेशमन्त्रालयेन कथितं यत् एताः टिप्पण्यः प्रतिवेशिदेशस्य स्वस्य असफलताम् अवच्छादनाय स्वस्य मानव अधिकारस्य उल्लङ्घनम्।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीष शर्मा। ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों और वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारियों की दिल्ली बैठक में आतंकवाद, साइबर खतरों और वैश्विक सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए सहयोग बढ़ाने पर बल दिया गया है। ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 16वीं बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने की। बैठक में सदस्य देशों ने उभरती सुरक्षा चुनौतियों पर विचार विमर्श किया। विदेश मंत्रालय के अनुसार ऐसे सुरक्षा खतरों पर खासतौर से चर्चा हुई जो अब वैश्विक रूप ले चुके हैं। प्रतिनिधियों ने ऊर्जा, खाद्य सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन और आतंकवादी संगठनों द्वारा नई तकनीक के दुरुपयोग पर चर्चा की। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल और रूस के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार सर्गेई शोइगु के बीच नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक के क्रम में द्विपक्षीय वार्ता हुई है। वार्ता में दोनों पक्षों ने विभिन्न क्षेत्रों में आपसी सहयोग को मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। श्री डोभाल ने सुरक्षा से जुड़े नए खतरों और चुनौतियों के प्रति जागरूक रहने की आवश्यकता पर जोर दिया।
1: हमें सुरक्षा से जुड़े नए खतरों और चुनौतियों के प्रति जागरूक रहने की आवश्यकता है। गैर पारंपरिक खतरे राष्ट्रीय सीमाओं से आगे निकल चुके हैं और पारंपरिक जवाबी कार्रवाई से निपटने के लिए उन्होंने अपने बचाव के तरीके भी विकसित कर लिए हैं। नई और क्रांतिकारी तकनीकें, आतंकवाद के छिपे हुए रूप और तेजी से डिजिटल होती दुनिया में साइबर खतरे, ये सभी हमारे लिए एक बड़ा खतरा है।
0: भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के हालात पर पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ की टिप्पणियों की कड़ी आलोचना की है। भारत ने कहा है कि ये टिप्पणियां पाकिस्तान की नाकामियों को छिपाने और मानवाधिकारों के उल्लंघन से ध्यान भटकाने की कोशिश है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने संवाददाताओं से कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में विरोध प्रदर्शन इसलिए हो रहे हैं कि पाकिस्तान वहां के लोगों का दशकों से आर्थिक शोषण, बुनियादी अधिकारों का हनन और प्रशासनिक दमन कर रहा है। खाड़ी क्षेत्र में जारी टकराव पर श्री जायसवाल ने बताया कि भारतीय ध्वज वाले 10 जहाज अब भी फारस की खाड़ी में हैं। उन्होंने कहा कि 17 जून को अमरीका और ईरान के बीच सहमति पत्र पर हस्ताक्षर

0: होने के बाद 11 जहाज होर्मुज जलडमरू मध्य से भारत पहुंचे हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि भारतीय ध्वज वाले बाकी जहाज भी जल्द ही होर्मुज जलडमरू मध्य को पार कर सकेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी के साथ टेलीफोन पर बात की। कतर के अमीर ने रविवार को रास लाफान शहर में हुए हादसे में भारतीय नागरिकों की मृत्यु पर दुख जताया और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। प्रधानमंत्री मोदी ने पीड़ित परिवारों के प्रति सहानुभूति व्यक्त करने के लिए धन्यवाद किया और घायलों को तुरंत चिकित्सकीय मदद पहुंचाने के लिए श्री थानी की सराहना की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने, विकास की गति को तेज करने और समावेशी विकास के लिए सभी पक्षों से और अधिक सहयोग आवश्यक है। उन्होंने ये बात कल नई दिल्ली में ग्लोबल कन्वर्जेंस फॉर ग्रोथ सम्मेलन को ऑनलाइन संबोधन में कही। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि मौजूदा दुनिया में समृद्धि और चुनौतियां तो साझा हैं, लेकिन संघर्षों और अनिश्चितता का असर विकासशील और पिछड़े देशों पर अधिक पड़ता है। उन्होंने कहा कि चुनौतियों से निपटने के लिए साझा वैश्विक कार्रवाई जरूरी है। सरकार ने कहा है कि एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित है और इसकी निरंतर निगरानी की जा रही है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि सोशल मीडिया पर इस बारे में चल रही खबरें भ्रामक और निराधार हैं। सरकार ने कहा है कि E20 पेट्रोल की शुरुआत के बाद से एथेनॉल मिश्रण के कारण इंजन की खराबी या वाहन में तकनीकी खराबी की कोई भी व्यापक शिकायत सामने नहीं आई है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में पुर्तगाल ने उज्बेकिस्तान को 5-0 से हरा दिया है। अमेरिका के ह्यूस्टन में हुए मुकाबले में क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 2 गोल दागे और इसके साथ ही रोनाल्डो 6 विश्व कप टूर्नामेंट में गोल करने वाले पहले खिलाड़ी हो गए हैं। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Anuja Kumar. National security advisors and senior security officials from the BRIC nations called for stronger cooperation to address a widening range of global security challenges, including terrorism, cyber threats, during a high-level meeting hosted by India in the national capital. The 16th BRICS National Security Advisors meeting, held under India's chairship of the grouping led by India's NSA, Ajit Doval, brought together top security representatives from member countries to discuss both traditional and emerging threats confronting the international community. According to India's Ministry of External Affairs, the discussions focused on evolving security risks that increasingly transcend national borders. Prime Minister Narendra Modi received a telephone call from the Emir of Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani. He expressed condolences over the loss of lives of Indian nationals in the accident at Ras Laffan Industrial City in Qatar on Sunday and conveyed his wishes for the speedy recovery of those injured. Mr. Modi thanked the Qatari leader for his words of sympathy for the affected families and appreciated the prompt medical assistance extended to the injured. The two leaders also reaffirmed their commitment to ensuring the well-being and safety of their citizens and reiterated their solidarity and support for each other. India has strongly criticized Pakistani Defense Minister Khwaja Asif's remarks over the situation in Pakistan-occupied Kashmir, saying these remarks are desperate attempts by the neighboring country to cover up its own failings and deflect attention away from its human rights abuses. Addressing media in New Delhi, Ministry spokesperson Randhir Jaiswal said, New Delhi categorically rejects these fabricated claims with the contempt they deserve.
2: The ongoing protests in Pakistan-occupied Kashmir are a direct consequence of Pakistan's decades-long policy of systemic economic exploitation, denial of fundamental rights, and administrative oppression. We hope the international community will hold Pakistan accountable for its misdeeds and abuses.
1: On India-UAE defense partnership, the spokesperson said India's relationship with UAE in recent several years has seen a major upswing, in which the defense partnership also plays an important role. Union Finance Minister Nirmala Sitharaman has called for stronger multilateral

0: bilateral cooperation to build resilient economies, accelerate sustainable development, and ensure inclusive growth. Addressing the Global Convergence for Growth Summit virtually in New Delhi yesterday, she said that while prosperity and challenges are shared in an interconnected world, the consequences of conflicts and uncertainty fall disproportionately on developing countries and the Global South. Ms. Sitharaman stressed that coordinated global action is essential to address these challenges. Vice Chairperson of Niti Aayog, Dr. Ashok Kumar Lahiri, has said that the total trade of India has grown by 5.4% in the last quarter. He said this while releasing the latest edition of the Trade Watch quarterly report in New Delhi. Dr. Lahiri added that India's exports reached $1.84 trillion and imports grew by 6.5% in the last quarter. India and the United States opened high-level trade talks to salvage and recalibrate a proposed bilateral trade agreement after changes in U.S. tariff policy disrupted a framework negotiated earlier this year. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal met United States Trade Representative Jamison Greer and U.S. Ambassador to India Sergio Gore in New Delhi yesterday. Both sides are aiming to conclude an interim trade pact before 24th of July, when Washington's temporary 10% tariff on imports from trading partners is set to expire. The International Maritime Organization announced an evacuation plan for more than 11,000 seafarers still stranded in the Strait of Hormuz. IMO Secretary General Arsenio Dominguez said in a statement that IMO has secured the necessary safety guarantees and verified safe navigation conditions. In the FIFA World Cup 2026, Portugal crushed Uzbekistan by 5-0 in the Group K at Houston in United States. And that is the end of this news bulletin.
1: मीडियम वेव 268.8 मीटर और एफएम 103.5 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी श्रीनगर की आवाज है। 7:10 हुए हैं। एक वक्फे के बाद समाप्त कीजिए प्रोग्राम पयामे सुब।
2: रेडियो एक ऐसी आवाज जो हर घर, हर गली, हर कूचे तक पहुंचे। अपने कारोबार को दीजिए एक नई पहचान, अपनी तरक्की को दीजिए एक नई उड़ान। रेडियो से इश्तेहार देकर बढ़ाएं अपने बिजनेस की शान। रेडियो तशहीर का सबसे आसान और सस्ता जरिया। राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर।
3: अरे राकेश, चिप्स खाएगा?
4: एक मिनट यार, ये कुछ अजीब टेस्ट कर रहे हैं।
3: अच्छा, जरा पैकेट दिखा। ओए, ये तो एक्सपायर्ड है।
4: क्या
5: ऐसा आपके साथ भी हो सकता है? इसलिए ध्यान रखें, खाने पीने की कोई भी चीज खरीदने से पहले उसकी एक्सपायरी डेट चेक करें। अगर कोई एक्सपायर्ड फूड आइटम्स बेच रहा है तो आप उसकी कंप्लेंट कर सकते हैं 1-800-112-100 पर।
6: याद रखें, सुरक्षित आहार स्वास्थ्य का आधार।
7: इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय ऑफिस ऑफ द कमिश्नर फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन जेएनके।
8: रोहन और रिया की लव स्टोरी का मैच था शुरू, दोनों ने खाया इटालियन क्विजीन, वेटर ने फेंका स्पिन, 4,000 का आया बिल, रोहन का धड़का जोर से दिल, वो अपना वॉलेट गया था भूल, रिया ने किया डिजिटल पेमेंट, बन गई कूल। आप भी QR कोड स्कैन करके UPI से करो पेमेंट, डिजिटल पेमेंट से जीतो लाइफ का हर टूर्नामेंट।
9: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
10: हर लेन देन अब है आसान।

0: अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक
1: मैं
0: ठाक
1: भी
0: हूँ।
1: अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ, खैरियत से हूँ।
0: चलिए प्रोग्राम का आगाज करते हैं मनकबत हुसैन से, पेश कर रहे हैं पीर गुलाम नबी शाह।

0: आकाशवाणी श्रीनगर आप तक पहुंच रहा है एक नए रंग, नए आहंग और नई लय के साथ।
1: बल बल जाऊं मैं तोरे रंग रजवा।
2: जिंदगी से जुड़े हर एक शोबे की मुफीद जानकारी।
3: सब्र रूशित सुलुन।
2: सुनते रहिए हमारी नशरियात
0: दुनिया के किसी भी कोने में, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और वेव्स OTT के जरिए।
4: जहां जाएगा हमें पाएगा।
5: पयाम सु प्रोग्राम आकाशवाणी श्रीनगर से बराह रास्त नश हो रहा है। मैं हूं आपका मेजबान आमिर और मेरे साथ हैं साइका।
6: आमिर, इस शो में, इस पयाम सुब के शो में इस वक्त हम बात कर रहे हैं करबला से मुतालिक।
5: जी,
6: करबला हमें ये भी सिखाती है कि तादाद अहम नहीं बल्कि तर्ज अमल अहम है। 72 के मुकाबले में हजारों थे लेकिन आज नाम सिर्फ उनका जिंदा है जिन्होंने हक का साथ दिया।
5: बेशक।
6: और 8 मुहर्रम का दिन हमें ये भी आमिर सिखाता है, ये भी याद दिलाता है कि जिंदगी आरजी है लेकिन एक बावकार और उसूल पसंद जिंदगी का जिक्र हमेशा बाकी रहता है।
5: सही बात है। देखिए ना, आज की जो गुफ्तगू है इसका निचोड़ ही यही है कि करबला सिर्फ माजी का किस्सा नहीं।

अल्लाह ने मोहम्मद सा नहीं कोई बनाया, अल्लाह ने मोहम्मद सा नहीं कोई बनाया। जिब्रील भी दरमा हुए ये मर्तबा पाया, जब शान अली खुली बरोज़ खुम्मे गदीर, जब

ये आकाशवाणी श्रीनगर है। सुबह के 7:55 हुए हैं। पयाम सुबह प्रोग्राम में जानकारी लीजिए। अब के बाद आज हमारे यहाँ से नष्ट होने वाले बकाया प्रोग्रामों की तफसील दे रहे हैं हमारे साथी आमिर अशरफ।

हबीबुल्ला डार भुसन और साथियों से आप छकरी और उप सुन सकते हैं 11:30 पर, दोपहर 2:30 पर और सपहर 4:30 पर। इनसे आप बितरतीब कलाम शमस फ़कीर, कलाम हबीब मागरे और कलाम सैयद मीरक्षा काशानी रहमतुल्लाह अलैह सुन सकते हैं।

0: बज़्म निस्वां सजेगी 12:40 पर। प्रोग्राम के मेहमान हैं डॉक्टर शहजादा सलीम। प्रोग्राम का इदारिया पेश करेंगी प्रोग्राम की मेज़बान रूबी निसा खान। उमंग, ये स्पॉन्सर्ड तालीमी प्रोग्राम 1:10 पर नशर होता है। चंद फिल्मी नगमे आप तक पहुंचाए जाएंगे 2:15 पर। फौजी भाइयों के लिए फिल्म संगीत पर मबनी ये प्रोग्राम सपहर 3 ब्रॉडकास्ट होता है। पहाड़ी प्रोग्राम आप सुनते हैं 4, गोजरी प्रोग्राम शाम 5 सुना जाता है। गर्मी बाय नहीं दिखद्र, ये प्रोग्राम शाम 6:05 पर सुना जाता है। हालत हाजरा का प्रोग्राम शहरबीन आप तक पहुंचता है शाम 7, रात 8 नशर होता है प्रोग्राम वादी की आवाज़। जिला नामा नशर होगा रात 8:30 और रात 9 आप चंद उर्दू गजलें सुन सकते हैं।
1: समईन, आकाशवाणी श्रीनगर से आप समात कर रहे थे तरतीब तफसील आज अब के बाद हमारे यहाँ से नष्ट होने वाले प्रोग्रामों की। सुबह के 8 रहे हैं, आइए हिंदी में खबरें सुनते हैं आकाशवाणी दिल्ली से।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। ब्रिक्स देशों ने आतंकवाद और साइबर खतरों समेत वैश्विक सुरक्षा की बढ़ती चुनौतियों से निपटने के लिए आपसी सहयोग को और मजबूत करने का आह्वान किया। कतर के अमीर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन पर रास लाफान गैस संयंत्र दुर्घटना में 12 भारतीयों की मृत्यु पर दुख व्यक्त किया। भारत ने पाक अधिकृत कश्मीर की स्थिति पर पाकिस्तान की टिप्पणी की कड़ी आलोचना की, कहा पाकिस्तान मानवाधिकारों के हनन से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहा है। भारत और अमेरिका के बीच प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौते की समीक्षा के लिए नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक, और फीफा विश्व कप में पुर्तगाल ने उज्बेकिस्तान को 5-0 से हराया। इंग्लैंड और घाना के बीच मैच बगैर किसी गोल के बराबरी पर छूटा। और अब समाचार विस्तार से। ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों और वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारियों की दिल्ली बैठक में आतंकवाद, साइबर खतरों और वैश्विक सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए सहयोग बढ़ाने पर बल दिया गया है। बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने की। बैठक में सदस्य देशों ने उभरती सुरक्षा चुनौतियों पर विचार विमर्श किया। विदेश मंत्रालय के अनुसार ऐसे सुरक्षा खतरों पर खास तौर से चर्चा हुई जो अब वैश्विक रूप ले चुके हैं। प्रतिनिधियों ने ऊर्जा, खाद्य सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन और आतंकवादी संगठनों द्वारा नई तकनीक के दुरुपयोग पर भी चर्चा की। बैठक में आतंकवाद रोधी तथा सूचना और संचार तकनीक के उपयोग में सुरक्षा संबंधी कार्य समूहों के कार्यों और उनके परिणामों की भी समीक्षा की गई। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों ने हर तरह के आतंकवाद के खिलाफ साझा कार्रवाई की प्रतिबद्धता दोहराई। बैठक के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और रूस के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार सर्गेई शोइगु के बीच नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक के क्रम में द्विपक्षीय वार्ता हुई है। इस वार्ता में दोनों पक्षों ने विभिन्न क्षेत्रों में आपसी सहयोग को मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। श्री डोभाल ने सुरक्षा से जुड़े नए खतरों और चुनौतियों के प्रति जागरूक रहने की आवश्यकता पर बल दिया।
3: We need to be cognizant of the new security threats and challenges.
4: हमें सुरक्षा से जुड़े नए खतरों और चुनौतियों के प्रति जागरूक रहने की आवश्यकता है। गैर पारंपरिक खतरे राष्ट्रीय सीमाओं से आगे निकल चुके हैं और पारंपरिक जवाबी कार्रवाई से निपटने के लिए उन्होंने अपने बचाव के तरीके भी

0: विकसित कर लिए हैं। नई और क्रांतिकारी तकनीकें, आतंकवाद के छिपे हुए रूप और तेजी से डिजिटल होती दुनिया में साइबर खतरे, ये सभी हमारे लिए एक बड़ा खतरा है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी के साथ टेलीफोन पर बात की। कतर के अमीर ने रविवार को रास लाफान शहर में हुए हादसे में भारतीय नागरिकों की मृत्यु पर दुख जताया और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। प्रधानमंत्री मोदी ने पीड़ित परिवारों के प्रति सहानुभूति व्यक्त करने के लिए धन्यवाद दिया और घायलों को तुरंत चिकित्सकीय मदद पहुंचाने के लिए श्री थानी की सराहना की। प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम एशिया में शांति के प्रयासों में कतर की भूमिका की भी सराहना की। उन्होंने आशा व्यक्त की कि इलाके में शांति और स्थिरता बहाल होगी। इस बीच विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कतर में हादसे पर बताया कि दुर्घटना में मृतकों के शव वापस लाने के प्रयास जारी हैं।
2: रास लाफान परियोजना में जब वहां एक विस्फोट हुआ, उस विस्फोट में 12 भारतीय नागरिक मारे गए हैं। इसके अलावा कुल 66 लोग ऐसे हैं जो घायल हुए हैं, वो लोग सब लोग सुरक्षित हैं और हॉस्पिटल में उनकी मेडिकल ट्रीटमेंट हो रही है। ये 12 लोग के बारे में हम लोग कतर में वहां के सरकार के साथ और इनके परिवारजनों के साथ उनसे बातचीत हो रही है हमारी।
1: भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के हालात पर पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ की टिप्पणियों की कड़ी आलोचना की है। भारत ने कहा है कि ये टिप्पणियां पाकिस्तान की नाकामियों को छिपाने और मानवाधिकारों के उल्लंघन से ध्यान भटकाने की कोशिश है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने संवाददाताओं से कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में विरोध प्रदर्शन इसलिए हो रहे हैं कि पाकिस्तान वहां के लोगों का दशकों से आर्थिक शोषण, बुनियादी अधिकारों का हनन और प्रशासनिक दमन कर रहा है। उन्होंने बताया कि पाकिस्तानी प्रशासन ने निहत्थे नागरिकों के साथ बर्बर व्यवहार किया, जरूरी सामान और दवाओं की आपूर्ति रोक दी गई है और इंटरनेट बंद है। श्री जायसवाल ने बांग्लादेश में देवी देवताओं की मूर्तियों के अपमान की खबरों पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी है।
2: हम लोगों ने देखा कि बांग्लादेश में से कुछ खबर आई कि वहां पर हिंदू भगवान के तस्वीरों के साथ अपवित्र हरकतें हुई, जिसके कारण वहां पर विरोध प्रदर्शन हुआ है। और हम लोग क्या ये उम्मीद है कि बांग्लादेश की सरकार जो वहां पर चरमपंथी लोग हैं उस पर अंकुश लगाएगी और जो वहां पर अल्पसंख्यक समुदाय के लोग रह रहे हैं उसकी सुरक्षा को गारंटी करेगी।
1: खाड़ी क्षेत्र में जारी टकराव पर श्री जायसवाल ने बताया कि भारतीय ध्वज वाले 10 जहाज अब भी फारस की खाड़ी में हैं। उन्होंने कहा कि 17 जून को अमेरिका और ईरान के बीच सहमति पत्र पर हस्ताक्षर होने के बाद 11 जहाज होर्मुज जलडमरू मध्य से भारत पहुंचे हैं।
2: 11 जहाज जो भारत की तरफ आ रहे हैं, इसमें से 3 भारतीय जहाज हैं जो कि क्रूड ऑयल टैंकर्स हैं। इनमें 2,85,000 मेट्रिक टन क्रूड ऑयल है। इसके अलावा एक विदेशी पताका के साथ एक एलपीजी टैंकर जो भारत की तरफ आ रहा है और एक विदेशी पताका के साथ फर्टिलाइजर कार्गो के साथ वो आ रहे हैं। और जो अन्य 10 हमारे जहाज हैं वो भी हमारी उम्मीद है कि जल्द ही वो हॉर्मुज पार करके भारत की तरफ आ जाएंगे।
1: अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन होर्मुज जलडमरू मध्य में फंसे 11,000 से ज्यादा नाविकों को निकालेगा। संगठन के महासचिव आर्सेनियो डोमिंग्वेज ने कहा कि इस अभियान में मदद के लिए जरूरी सुरक्षा की गारंटी ली गई है। इस अभियान में ईरान, ओमान और क्षेत्र के अन्य देशों और समुद्री उद्योग जगत का सहयोग लिया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र के जिनेवा कार्यालय में ईरान के राजदूत अली बहरीनी ने कहा कि होर्मुज जलडमरू मध्य व्यावसायिक जहाजों के लिए बिना किसी टोल के पूरी तरह खुला है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत और अमेरिका ने प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौते को आगे बढ़ाने के लिए उच्च स्तरीय वार्ता शुरू की है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कल नई दिल्ली में अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि जैमिसन ग्रीर और भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर से मुलाकात की। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
3: दोनों पक्ष 24 जुलाई से पहले एक अंतरिम व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इसी तारीख को व्यापारिक साझेदारों से होने वाले आयात पर अमेरिका का अस्थायी 10% टैरिफ समाप्त होने वाला है। 20 फरवरी को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने व्यापक टैरिफ को रद्द कर दिया था। इसके बाद अमेरिकी प्रशासन ने सभी देशों पर

0: 20 फरवरी से 150 दिनों के लिए 10% का अस्थायी टैरिफ लगाया था। द्विपक्षीय व्यापार तनाव कम होने के बाद अमेरिका ने ज्यादातर भारतीय सामानों पर जवाबी टैरिफ को घटाकर 18% कर दिया और पहले से लगे 25% पेनल्टी टैरिफ को हटा दिया। भारत ने भी अमेरिका के कई औद्योगिक और कृषि उत्पादों पर टैरिफ कम करने या समाप्त करने का प्रस्ताव दिया था, जिनमें सूखे डिस्टिलर अनाज, पशुओं के चारे के लिए लाल ज्वार, ट्री नट्स, फल, सोयाबीन तेल, वाइन और स्पिरिट्स आदि शामिल हैं। रिशु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
1: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने, विकास की गति को तेज करने और समावेशी विकास के लिए सभी पक्षों से और अधिक सहयोग आवश्यक है। उन्होंने ये बात कल नई दिल्ली में ग्लोबल कन्वर्जेंस फॉर ग्रोथ सम्मेलन को ऑनलाइन संबोधन में कही। एक रिपोर्ट।
2: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि मौजूदा दुनिया में समृद्धि और चुनौतियां तो साझा हैं, लेकिन संघर्षों और अनिश्चितता का असर विकासशील और पिछड़े देशों पर अधिक पड़ता है। उन्होंने कहा कि इन चुनौतियों से निपटने के लिए साझा वैश्विक कार्रवाई जरूरी है। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि सभी देशों की घरेलू जरूरतें अलग अलग होती हैं और लगातार बने रहने वाले वैश्विक असंतुलन पर ध्यान दिया जाना चाहिए। वित्त मंत्री ने कहा कि भारत की विकास दर मुख्य रूप से घरेलू मांग के कारण है। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया की सबसे तेज गति से बढ़ रही अर्थव्यवस्था है और मध्यम अवधि में इसके सकल घरेलू उत्पाद की विकास दर लगभग 7% रहने का अनुमान है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की अध्यक्षता में आयोजित इस सम्मेलन में विकसित और उभरती अर्थव्यवस्था वाले देशों ने हिस्सा लिया। इनमें भारत, ब्राजील, चीन, केन्या, दक्षिण कोरिया जैसे G7 देशों और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रतिनिधि शामिल थे। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
1: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सरकार अल नीनो के संभावित दुष्प्रभाव से निपटने के लिए खरीफ फसल के लिए एहतियाती तैयारियां कर रही है। श्री चौहान ने नई दिल्ली में कहा कि जुलाई में भी मॉनसून के कमजोर रहने की आशंका है।
3: ओवरऑल अभी तक 43% बरसात कम हुई है, हमारी खरीफ की फसल उस पर इसका असर पड़ सकता है। 315 जिले ऐसे होंगे जहां वर्षा कम रहने की संभावना है। इनमें से 111 जिले हमारी उच्च प्राथमिकता वाले जिले होंगे, क्योंकि इनमें सिंचाई 25% से कम है। मध्यम प्राथमिकता वाले, मतलब जहां 25-50% सिंचाई की व्यवस्थाएं हैं, ऐसे 76 जिले हैं। और 128 जिले निम्न प्राथमिकता वाले, इसलिए वहां सिंचाई के लिए डैम और बाकी चीजों की व्यवस्था है।
1: सरकार ने कहा है कि एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित है और इसकी निरंतर निगरानी की जा रही है। निगरानी में तेल कंपनियां, वाहन निर्माता, ईंधन परीक्षण एजेंसियां और अन्य पक्ष शामिल हैं। सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि सोशल मीडिया पर इस बारे में चल रही खबरें भ्रामक हैं, निराधार हैं। E20 पेट्रोल की शुरुआत के बाद से एथेनॉल मिश्रण के कारण इंजन की खराबी या वाहन में किसी तकनीकी खराबी की कोई व्यापक शिकायत सामने नहीं आई है। लखनऊ में कोचिंग सेंटर में आग लगने की घटना को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के कोचिंग संस्थानों के नियमन को मजबूत करने और अवैध कोचिंग सेंटर्स के विरुद्ध अभियान की शुरुआत की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि पूरे राज्य में आग से बचाव के उपायों की जांच मिशन मोड में की जाएगी। फीफा फुटबॉल विश्व कप में ग्रुप के में पुर्तगाल ने उज्बेकिस्तान को 5-0 से हरा दिया है। पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 2 गोल दागे और इसके साथ ही रोनाल्डो 6 विश्व कप टूर्नामेंट में गोल करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। उन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया। ग्रुप एल के एक अन्य मैच में कनाडा के टोरंटो में क्रोएशिया और पनामा के बीच मैच चल रहा है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे मोबाइल ऐप newsonair पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
4: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित हिंदी समाचार पत्रों के मुख्य पृष्ठों पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों से पद्म सम्मान ग्रहण करने वाली हस्तियों की तस्वीरें और होर्मुज को पार कर भारत की ओर आगे बढ़ रहे 11 ईंधन वाहक जहाजों की खबरें सबसे ऊपर छाई हैं। दैनिक भास्कर ने CUET परीक्षा परिणाम में सर्वाधिक अंक पाने वाली देवीना गहलोत का चित्र प्रकाशित करते हुए खबर को शीर्षक दिया है 100 परसेंटाइल वाले 20 20% बढ़े, प्रीमियम संस्थानों में दाखिला कठिन होगा। नवभारत टाइम्स ने परीक्षा में सफल रहे कुछ छात्रों के चित्र के साथ

0: इस समाचार को शीर्षक दिया है। दिल्ली विश्वविद्यालय के दाखिले में सीयूईटी के बाद भी 100% की रेस। देशबंधु ने मौसम के मिजाज को पहले पन्ने पर जगह दी है। खबर को शीर्षक दिया है, दिल्ली एनसीआर में मौसम ने ली करवट और 12 दिन की देरी से मुंबई पहुंचा मानसून। जबकि दैनिक भास्कर का कहना है, मानसून 3 दिन देरी से मुंबई पहुंचा। पत्र ने दिल्ली एनसीआर में अभी हफ्ते भर और गर्मी और उमस बने रहने का अनुमान प्रकाशित किया है। जनसत्ता ने संकट के बीच शीर्षक से प्रकाशित संपादकीय में कहा है कि पश्चिम एशिया में हालात पूरी तरह सामान्य नहीं हो पाने की वजह से देश में बढ़ती महंगाई के बीच अब इसका असर औद्योगिक उत्पादन पर भी दिखने लगा है। पत्र की राय में मौजूदा संकट के लिए भले ही वैश्विक परिस्थितियां जिम्मेदार हो, लेकिन इसके समाधान के लिए कारगर कदम उठाने के बजाय इसका बोझ जनता पर डाल देने को उचित नहीं ठहराया जा सकता। वहीं राजस्थान पत्रिका ने कृषि क्षेत्र में भारत की उपलब्धि को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। वैज्ञानिकों की 7 साल की मेहनत रंग लाई, सुपरफूड ग्रेन ओट्स में भारत बन रहा आत्मनिर्भर।
1: और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। ब्रिक्स देशों ने आतंकवाद और साइबर खतरों समेत वैश्विक सुरक्षा की बढ़ती चुनौतियों से निपटने के लिए आपसी सहयोग को और मजबूत करने का आह्वान किया। कतर के अमीर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन पर रास लाफान गैस संयंत्र दुर्घटना में 12 भारतीयों की मृत्यु पर दुख व्यक्त किया। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की स्थिति पर पाकिस्तान की टिप्पणी की कड़ी आलोचना की। कहा, पाकिस्तान मानवाधिकारों के हनन से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहा है। और फीफा विश्व कप में पुर्तगाल ने उज्बेकिस्तान को 5-0 से हराया। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी का ये श्रीनगर स्टेशन है, मीडियम वेव 268.81 मीटर और FM 103.5 MHz पर। पेश है तारीख के आईने में आज का दिन।

0: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं असदुल्ला। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। ब्रिक्स मुल्कों ने दहशतगर्दी और साइबर खतरों समेत आलमी सलामती को दरपेश बढ़ते हुए बहुत से खतरात से निमटने के लिए मजबूत तर तआवुन के लिए कहा है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को रासुल्लाफान गैस प्लांट धमाके में 12 भारतीयों की हलाकत पर कतर के अमीर की तरफ से ताज़ियती कॉल मौसूल हुई। भारत ने पाकिस्तान के ज़ेर कब्ज़ा कश्मीर के बारे में पाकिस्तान की रायज़नी की सख्त मजम्मत की है। उसने कहा है कि पाकिस्तान इंसानी हकूक की पामालियों से तवज्जो हटाने के लिए ये सब कुछ कर रहा है। भारत और अमरीका ने मुजवजा दो तरफा तजारती माहदे को ताज़ा शक्ल देने के लिए नई दिल्ली में आला सतह की तजारती बातचीत शुरू की। और फीफा आलमी कप में पुर्तगाल ने उज्बेकिस्तान को 5-0 से हराया। इंग्लैंड और घाना के दरमियान मैच बराबरी पर खत्म हुआ। अब खबरें तफसील से। ब्रिक्स मुल्कों के कौमी सलामती के मुशीरों और सीनियर सिक्योरिटी अफसरान ने दहशतगर्दी और साइबर खतरा समेत सलामती को दरपेश बहुत से आलमी चैलेंजों से निमटने के लिए मजबूत तर तआवुन के लिए कहा है। भारत की तरफ से ये आवाज़ कौमी राजधानी में मुनाकिदा एक आला सतह की मीटिंग में उठाई गई। भारत के कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल की क्यादत में इस ग्रुप की भारत की सदर नशीनी के तहत मुनाकिदा ब्रिक्स मुल्कों के कौमी सलामती के मुशीरों की 16वीं मीटिंग में रुकन मुल्कों के सलामती के सरकर्दा नुमाइंदे यकजा हुए, जिसका मकसद बैनुल अक्वामी बिरादरी को दरपेश रिवायती और उभरते हुए खतरात से निमटना था। भारत की वजारत खारजा के मुताबिक बातचीत में सलामती को दरपेश उभरते हुए उन खतरात पर तवज्जो मरकूज की गई जो कौमी सरहदों से बाहर भी लाहक होते जा रहे हैं। मंदुबीन ने तवानाई और सबके लिए खुराक की फराहमी से लेकर आबो हवा से मुतालिक अदम इस्तेहकाम और दहशतगर्द तंजीमों के हाथों उभरती हुई टेक्नोलॉजीज के बेजा इस्तेमाल तक के मामलात पर तबादले ख्याल किया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और कतर के अमीर शेख तमीम बिन हम्माद असानी ने मुख्तलिफ शोबों में बाहमी तआवुन को मजीद मुस्तहकम बनाने के अपने अज़्म को दोहराया है और एक दूसरे के साथ करीबी राबता रखने से इत्तेफाक किया है। दोनों रहनुमाओं ने अपने शहरियों की खुशहाली और हिफाजत को यकीनी बनाने के अज़्म को भी दोहराया और एक दूसरे की यगानगत और मदद के अपने अहद को ताज़ा किया। जनाब मोदी ने कल एक टेलीफोन बातचीत के दौरान कतर के अमीर से इतवार को कतर के रास लफान सनती शहर में एक हादसे के दौरान भारतीय बाशिंदों की हलाकत पर ताज़ियत का इजहार किया और जख्मियों की जल्द सेहतियाबी की दुआ की। जनाब मोदी ने मुतासिरा कुनबों के तई हमदर्दी जाहिर करने पर कतर के रहनुमा का शुक्रिया अदा किया और जख्मियों के जल्द इलाज के लिए फौरी मदद फराहम करने को सराहा। मगरबी एशिया की सूरत हाल पर बातचीत के दौरान वजीर अजम मोदी ने अमन के लिए जारी कोशिशों में कतर के तामीरी रोल की तारीफ की।
1: रास लफान परियोजना में जब वहाँ एक विस्फोट हुआ, उस विस्फोट में 12 भारतीय नागरिक मारे गए हैं। इसके अलावा कुल 66 लोग ऐसे हैं जो घायल हुए हैं, वो लोग सब लोग सुरक्षित हैं और हॉस्पिटल में उनकी मेडिकल ट्रीटमेंट हो रही है। ये 12 लोग के बारे में हम लोग कतर में वहाँ के सरकार के साथ और इनके परिवारजनों के साथ उनसे बातचीत हो रही है हमारी।
0: भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की सूरत हाल पर पाकिस्तान के वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की रायजनी की सख्ती से मजम्मत की है।

0: उन्होंने कहा है कि ये रायजनी अपनी नाकामियों को छुपाने और इंसानी हकूक की पामाली से तवज्जो हटाने की पड़ोसी मुल्क की नाकाम कोशिशें हैं। नई दिल्ली में नामानिगारों से बात करते हुए वजारती खारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत इन फर्जी दावों को उतने ही वाजह तौर पर मुस्तरद करता है जिसके ये हकदार हैं। भारत और मुत्तहदा अरब इमारात के दरमियान दिफा की शराकत दारी पर तर्जुमान ने कहा कि हालिया बरसों में इमारात के साथ भारत के ताल्लुकात में बड़ा इजाफा हुआ है जिसमें दिफा से मुतालिक शराकत दारी का एक अहम रोल है। वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमन ने मुस्तहकम मईशतों की तामीर करने, मुस्तकिल तरक्की की रफ्तार में तेजी लाने और सबकी शमूलियत वाली तरक्की को यकीनी बनाने के लिए कसीर मुल्की मजबूत तरतआवुन के लिए कहा है। कल नई दिल्ली में तरक्की से मुतालिक सरबराह कॉन्फ्रेंस के आलमी इज्तिमा से वर्चुअल वसीले से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि बाहम मरबूत इस दुनिया में खुशहाली और चैलेंजेस मुश्तरक हैं, लिहाजा तनाज़ात और गैर यकीनी के नताइज तरक्की पजीर मुल्कों और आलमी जुनूब पर गैर मुतनासिब तरीके से मुरतब होते हैं। मोहतरमा सीतारमन ने जोर देकर कहा कि इन चैलेंजों से निमटने के लिए मरबूत आलमी कार्रवाई लाजिम है। भारत की इक्तिसादी तरक्की का खास तौर पर जिक्र करते हुए वजीर खजाना ने कहा कि मुल्क की तरक्की बुनियादी तौर पर घरेलू मांग पर मबनी है जिसे आमतौर पर मार्केट की तय करदा शरह मुबादला की मदद हासिल है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत दुनिया की सबसे तेज रफ्तार तरक्की करती हुई बड़ी मईशतों में शामिल है जिसकी घरेलू मजमूई पैदावार की शरह तरक्की के बारे में पेशगोई की गई है कि ये औसत मुद्दत में तकरीबन 7% रहेगी जो काफी ज्यादा है। इस समिट में जिसकी सदारत फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रों ने की, आगे बढ़ती हुई और उभरती हुई मईशतों के रहनुमा यकजा हुए जिनमें भारत, ब्राजील, चीन, केनिया, जुनूबी कोरिया जैसे G7 ममालिक और बैनुल अक्वामी मालियाती फंड के रहनुमा शामिल हैं। नीति आयोग के नायब चेयरमैन डॉ अशोक कुमार लहरी ने कहा है कि आखिरी सेमाही में भारत की मजमूई तिजारत में 5.4% की शरह से तरक्की हुई है। उन्होंने नई दिल्ली में ट्रेड वॉच क्वार्टरली रिपोर्ट के ताजा एडिशन के इजरा के दौरान ये बात कही। डॉक्टर लहरी ने मजीद कहा कि आखिरी सेमाही में भारत की बरामदात 1.84 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच गई और दरामदात में 6.5% का इजाफा हुआ है। भारत के अहम मादनियात से मुतालिक मिशन में खातिरखाह तेजी आई है। कानों की वजारत ने उमूमी तौर पर अहम 56 और दिफाई एतबार से अहम धात ब्लॉकों और दरियाफ्त करने के लाइसेंस वाले 11 ब्लॉकों की कामयाब नीलामी की है। वजारत ने 10 अहम और दिफाई एतबार से अहम कान ब्लॉकों को 7वें मरहले की नीलामी के तहत कामयाबी के साथ नीलाम किया है। नीलाम किए गए इस तरह के ब्लॉकों की कुल तादाद 56 हो गई है जबकि अभी तक 88 ब्लॉकों की पेशकश की गई है। नीलामी की यह शरह 63% है। वजारत ने बताया कि ऐसा पहली बार है कि मरकज ने गुजरात, उत्तराखंड और तेलंगाना में अहम मादनियात के ब्लॉकों की नीलामी की है। यह खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। भारत और अमेरिका ने एक मुजवजा दो तरफा तिजारती माहिदे को जदीद और कतई शक्ल देने के लिए आला सतह की तिजारती बातचीत शुरू की है। ये बातचीत अमेरिका की महसूल से मुतालिक पॉलिसी में तब्दीली की वजह से इस साल के शुरू में तय किए गए एक फ्रेमवर्क में रुकावट की वजह से की जा रही है। तिजारत और सनत के मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने कल नई दिल्ली में अमेरिका के तिजारत के नुमाइंदे जेमिसन ग्रीर और भारत में अमेरिका के सफीर सर्गियो गौर से मुलाकात की। एक रिपोर्ट।
1: दोनों मुल्कों का मकसद 24 जुलाई से पहले एक उबूरी तिजारती माहदे की तकमील करना है जब तिजारती शराकत दारों से दरामद किए जाने वाले सामान पर अमेरिका के आरजी 10% महसूल की मुद्दत खत्म हो जाएगी। 20 फरवरी को अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने इन बेहद महसूलात को खत्म करने का हुक्म दिया था। इसकी वजह से अमरीकी इंतजामिया को सभी मुल्कों पर तिजारती कानून की 122वीं शिक के तहत 150 दिन के लिए 10% आरजी महसूल लागू करना पड़ा था। यह सिलसिला 24 फरवरी को शुरू हुआ था जो 24 जुलाई को खत्म हो जाएगा। दोतरफा तिजारती कशीदगी में कमी आ जाने के बाद अब अमरीका में ज्यादातर भारतीय अशिया पर दोतरफा तिजारती महसूल में कमी करके इसे 18% कर दिया है और इससे पहले के 25% महसूल को खत्म कर दिया है। भारत ने भी बहुत सी अमरीकी सनती और ज़रई अशिया पर महसूलात में कमी करने या इन्हें हटाने की तजवीज़ पेश की है। न्यूज़ डेस्क की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असलम बेग।

0: इससे पहले जनाब गोयल ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वो भारत अमेरिका दो तरफा तिजारती माहदे पर नतीजा खेज बातचीत के बारे में पुरुम्मीद हैं। इस दौरान जनाब गोर ने भी सोशल मीडिया पर एक पैगाम भेजा है। उन्होंने कहा कि भारत और अमेरिका एक ऐसे दो तरफा मजबूत तिजारती माहदे को कतई शक्ल देने की जानिब फैसला कुन तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, जिससे दोनों मुल्कों के लिए नए इकतसादी मौके पैदा होंगे और ख़ासतौर पर अमरीका भारत इकतसादी शराकतदारी में गहराई पैदा होगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि बकौल उसके एक तारीखी अमन माहदे के हिस्से के तौर पर ईरान इस बात पर रजामंद हो गया है कि वो कभी न्यूक्लियाई हथियार हासिल नहीं करेगा। इस माहदे के सबब अबनाए हुरमुज में कशीदगी का खात्मा हो गया है। पेंसिल्वेनिया के शहर मेकनगी में मैन ट्रक्स मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री में जनाब ट्रंप ने कहा कि ईरान को न्यूक्लियाई हथियार हासिल करने से रोकना इस्लामी जमहूरिया की जानिब उसकी इंतजामिया की पॉलिसी का असल मकसद है। जनाब ट्रंप ने ये बात जोर देकर कही कि ईरान की फौजी सलाहियत में शदीद कमजोरी आ गई है। उन्होंने कहा कि ईरान की मईशत और दिफा के शोबे को भी जबरदस्त नुकसान पहुंचा है। अमरीका के वजीर खारजा मार्को रूबियो ने कहा है कि जब तक मगरबी एशिया खित्ते में ईरान की हिमायत याफ्ता ग्रुप हमले जारी रखेंगे और मिलिटेंट सरगर्मियों में मसरूफ रहेंगे, पायदार अमन इस्तेहकाम कायम नहीं हो सकता है। खलीज फारस के खित्ते के अपने दौरे के हिस्से के तौर पर अबू ज़हबी पहुंचने पर जनाब रूबियो ने जोर दिया कि लेबनान में जंगबंदी पर बातचीत ईरान के साथ जारी मुज़ाकरात से अलग है। उन्होंने मजीद कहा कि उन्होंने हाल ही में लेबनान के सदर जोसेफ ऑन और अमरीका के नायब सदर जेडी वेन से बात की है और ये कि अमरीकी अहलकार इस वक्त लेबनान में मसरूफ अमल हैं। समंदर से मुतालिक बैन अल-अक़वामी तंजीम आईएमओ ने उन 11,000 से ज्यादा जहाजों को निकालने के मंसूबे का ऐलान किया है जो आबनाए हुरमुज में अब भी फंसे हुए हैं। आईएमओ के सेक्रेटरी जनरल अर्सेनियो डोमिगेज ने एक बयान में कहा है कि उनकी तंजीम ने इन लोगों को निकालने की कार्रवाई में मदद के मकसद से हिफाजत के लिए दरकार जमानतों और महफूज जहाज रानी की तौसीक शुदा शराइत की यकीन दहानी कर ली है। तमिलनाडु की हुकूमत ने वेट्री तमजीगम विजन दस्तावेज को मंजूरी दी है। इस दस्तावेज की अहम पहल मैटरनल अंकल्स गोल्ड रिंग स्कीम है। इस स्कीम के तहत तमिलनाडु में मुस्तकिल तौर पर रिहाइश पजीर खानदानों के नौजायदा बच्चों को 1 ग्राम सोने की रिंग पेश की जाएगी, बशर्ते कि बच्चे की पैदाइश सरकारी अस्पताल में हुई हो। भारतीय मौसमियात महकमे IMD ने कहा है कि अगले 2 दिन के दौरान जुनूब मगरबी मानसून की पेशकदमी से महाराष्ट्र के, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में मौसम के साजगार रहने का इम्कान है। महकमे ने साहिली कर्नाटक, कोंकण और गोवा में अगले 3 दिन के दरमियान शदीद से इंतहाई शदीद बारिश की पेशगोई की है। फीफा आलमी कप 2026 में पुर्तगाल ने अमेरिका के शहर ह्यूस्टन में ग्रुप के मुकाबले में उज्बेकिस्तान को 5-0 से हरा दिया। 41 साल क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 2 गोल करके पुर्तगाल को उज्बेकिस्तान के खिलाफ 5-0 से जीत दिलाने में मदद की। रोनाल्डो ऐसे पहले खिलाड़ी बन गए हैं जिन्होंने 6 अलग-अलग आलमी कप टूर्नामेंट में गोल किए हैं। उन्हें मैच का बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया गया है। फॉक्सब्रोक के बोस्टन स्टेडियम में इंग्लैंड और घाना के दरमियान खेला गया ग्रुप एल में किसी गोल के बगैर बराबरी पर खत्म हुआ। ये थी खबरें और अब अखबारात के आईने के साथ हैं फहीम अहमद।
1: शुक्रिया असद। कौमी राजधानी दिल्ली से शाया होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपनी शह सुर्खी बनाया है। रोजनामा इनकलाब और प्रताप समेत आज के सभी अखबारों ने IAS 2026 बैच के अफसरान से वजीर आजम नरेंद्र मोदी की मुलाकात की खबर को सफ़े अव्वल पर शाया करते हुए लिखा है कि वजीर आजम ने कहा कि मजबूत अज़्म और अवाम की फलाह बहबूद पर मबनी विकसित भारत 2047 की क़्यादत करें। रोजनामा प्रताप की सुर्खी है अमरीका और ईरान के दरमियान अमन माहदे के बाद आबनाए हुरमुज में जहाज़ों की आमदोरफ्त बहाल, भारतीय परचम बरदार जहाज अपनी अपनी मुकर्ररा बंदरगाहों के लिए रवाना। इसी अखबार की एक और खबर है कि दिल्ली में ब्रिक्स ममालिक के कौमी सलामती के मुशीरों की एक आला सतही मीटिंग में दहशतगर्दी और साइबर खतरात समेत कई अहम मामले पर नतीजा खेज बातचीत हुई। हुकूमत एलनिनो की वजह से मानसून के असरात से निमटने और किसानों की पेशगी मदद के लिए पूरी तरह तैयार है। वजीर ज़राअत शिवराज सिंह चौहान के इस बयान को अखबारों ने खसूसियत के साथ शाया किया है। इम्तिहानात मुनक़िद कराने वाली कौमी एजेंसी NTA ने मुश्तरका यूनिवर्सिटी दाखिला इम्तिहान CUET 2026 के नतायज का किया ऐलान। उम्मीदवार सरकारी CUET पोर्टल के जरिए स्कोर कार्ड तक रसाई हासिल कर सकते हैं।

0: और अब आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। ब्रिक्स मुल्कों ने दहशतगर्दी और साइबर खतरों समेत आलमी सलामती को दरपेश बढ़ते हुए बहुत से खतरात से निमटने के लिए मजबूत तर तआवुन के लिए कहा है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को रासलफान गैस प्लांट धमाके में 12 भारतीयों की हलाकत पर कतर के अमीर की तरफ से ताज़ियती कॉल मौसूल हुई। भारत ने पाकिस्तान के ज़ेर कब्ज़ा कश्मीर के बारे में पाकिस्तान की रायज़नी की सख्त मजम्मत की है। उसने कहा है कि पाकिस्तान इंसानी हकूक की पामालियों से तवज्जो हटाने के लिए ये सब कुछ कर रहा है। भारत और अमेरिका ने मुजवजा दो तरफा तजारती माहदे को ताज़ा शक्ल देने के लिए नई दिल्ली में आला सतह की तजारती बातचीत शुरू की है। और फीफा आलमी कप में पुर्तगाल ने उज्बेकिस्तान को 5-0 से हराया। इंग्लैंड और घाना के दरमियान मैच बराबरी पर खत्म हुआ। इसी के साथ आकाशवाणी से खबरनामा खत्म हुआ।
1: आठ बजकर 45 मिनट हुए हैं। यह आकाशवाणी श्रीनगर है। हमारा अगला ऐलान समाप्त फरमाएं।
2: प्रोग्राम जू और तो जहां और तो वातावान डॉक्टर नसीर यूनानी व पंचकर्मा सेंटर्स लाल चौक अनंतनाग कोट रोड शुपया खानका फैजबना त्राल सिकडाफर चौक ईदगाह श्रीनगर उर्दू बाजार बारामूला मागाम अपोजिट बॉयज हायर सेकेंडरी तो डॉक्टर नसीर यूनानी व पंचकर्मा सेंटर इकबाल कॉलोनी बर्शा नगर नट्टीपोरा श्रीनगर सेल नंबर 9419408011।
3: मोहतरम सामीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम जू और तो जहां और हेचेस तुम्हदिस खदमतस मज हाजिर। सामीन कत्या नी आबन पानस सतर कत्या गई वाव गिलन सत्या मूद नार इंसान क्या चु ताप रस खंड गयस अलाव वोथ वुफाड़ सर्दी रस गयस अलाव लजस तर बहरहाल कम वन अक इंसानस न ज्याद गर्मी वायान तो न ज्यादा सर्दी न ज्यादा खुशकी तो न ज्यादा तरी अथ वो एतदाल बेतदाली जिसमस नबर आ जिसम किस अंदरूनी माहौलस पे सद सोद असर लिहाजा सेहत गो एतदाल जिसमस अंदर ते तो जिसमस नबर ते तो एतदाल गो तवोजुन अंदरमें इखलातन मंज तो नबरिमिस माहौलस मंज लिहाजा यतन इस कथ करो सेहत चाहे समाजी सेहत चाहे माशी सेहत चाहे जिस्मानी सेहत प्रेत कुनी मंज चु तवोजुन जरूरत अल्लाह ताला हन तिछु कुरान शरीफस मंज तवाजुनुक जिक्र बारहा कोरमुत सिर्फ अवकिन जे असि हियन गच्छे कथ फिक्र तरिन। समीन प्रोग्राम ब्रोह पकनाउन ब्रोह बोजु इस केंचन तिमन मरीजन हिन तासुरात यमो अस निश तिम अदवियात तो तिम तदाबीर इस्तेमाल कर यम सिंद जिसमुक अंदरूनी तवोजुन दुरुस्त सपुद तो तिम गई बिल्कुल सेहतियाब।
4: डॉक्टर साहब मैं फातिमा मुझे एक 2 साल हो गया कमर में बहुत दर्द था फर्क मुझे कुछ हो नहीं रहा था लेकिन अब इधर इस्लामाबाद अस्पताल में आई डॉक्टर मजिद साहब से दवाई खाया 1-2 महीने उसका शुक्र है मुझे फर्क हो गया बहुत आज मुझे कोई दर्द शर्द नहीं है डॉक्टर साहब का शुक्रिया मुझे 1-2 साल हो गए थे कमर में दर्द अब बिल्कुल ठीक अब नहीं है मुझे कोई दर्द शर्द।
5: बाजुन रोजम नूराबाद मे नाव अब्दुलरजा कुमार बह गोस फिट इनशा मे प्रोस्टेट मे कब्ज ग मे क्वचन दौद तो ये गई वाले फर्क ये माजिद सब अल्लाह तला कनस रुत रुत कनस रुत कनस बारी तला हर हमेश बीत अगर कंस प्रॉब्लम गए तो सू ये मे गई तकरीबन 2-3 वरी अव आज गो फिट।
6: मे ना गुलाम कैदार रोजान गांधरबल तो मे अंदर मे प्रॉब्लम अत गई मे 30 वरी इलाज कहान तो शुक्र खुदा पे मे बाजन से फल जाए तो मुझे दवा कभी तेज हुई तो तीन दवा नरम पहन तो बस आज शुक्र खुदा मे योर अचानक तो मे नव दवा पे कम मामूली तो कम तम तो रेतस पे मे कह दौन त्रेन दौन तो मे खे गुजर माज उस खेवान पे 10-15 दिन बना पेश वेश जबरदस्त अंदर प्रॉब्लम बना खे चुन कहीं तो शुक्र खुदायस कुन तक पे मैं आराम 3 वह शुक्र खुदायस कुन मे बत खेवान माज तक वन कस्म दिक्कत गाँव क्या मुझे थोड़ा कमजोरी पान बहुत नशी सब बेहतर मे कमजोरी वमजोरी हो तो बस।
3: समीन स्टूडियोस मन तशरीफ फरमा वादी हिंद मारूफ यूनानी तबीब डॉक्टर हकीम नसीर अहमद शाह साहब डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम।
7: वालेकुम सलाम
3: डॉक्टर साहब मरीजन हिंद तासुरात बूझ अस सठा मुतमई।

0: تَمہِ کھۄتہٕ چھِ اَسہِ کَم ریٹہٕ تھامژٕ.
1: بِلکُل.
0: مطلب چاہے أسۍ کیپِنٛگ ہٕنٛز کَتھ کَرو یا باقٕیَن کینٛہہ پرٛوسیٖجَرَن ہٕنٛز کَتھ کَرو. لِہٰذا کٔرِتھ یہِ چھُ ایٚفٲرڈیبٕل, یعنی آسان طٔریٖقہٕ چھُ اَسہِ بَنومُت اَتٮ۪ن کہِ یُتھ پیشَنٛٹ بِچار کَمفٲٹیبٕل تہِ روزِ تہٕ بیٚیہِ گژھِ صحت یاب تہِ گژھِ. صحت یاب تہِ گژھِ تیٚلہِ ییٚلہِ خۄداے سُنٛد منشا آسہِ. گوٚو خۄدایَس تہِ چھُ زارٕ بارٕ کَرُن, پَتہٕ آو اَسہِ نِش, تہٕ اُمید چھِ اِنشاء اللہ رحمٰن رۄبَن آسہِ شفا تھوٚمُت لیٚکھِتھ, شفا تہِ بَنٮ۪س
1: اِنشاء اللہ. سٮ۪ٹھاہ سٮ۪ٹھاہ شُکریہ ڈاکٹر صٲب تُہُنٛد, تُہۍ آیِو یور تہٕ پَنُن قۭمتی وقت دِتُو اَسہِ. اِنشاء اللہ نایہِ ہفتہٕ سَمکھو بیٚیہِ تہٕ بیٚیہِ کَرو کَتھ. وٕنکیٚنَس ووت پروگرامُک وق اَنٛد, ہٮ۪مو اِجازت. السلام علیکُم.
0: السلام علیکُم.
2: پروگرام زو اور تہٕ جہاں اور ٲسۍ تۄہہِ تام واتناوان ڈاکٹر نصیٖر یوٗنانی و پنچکرما سینٹٲرٕس, لال چوک اننت ناگ, کوٹ روڈ شُپیاں, خانقاہ فیضبنا ترال, سکڈافر چوک عیدگاہ سرینگر, اردو بازار بارہمولہ, ماگام اپوزِٹ بوائز ہایر سیکنڈری, تہٕ ڈاکٹر نصیٖر یوٗنانی و پنچکرما سینٹر, اقبال کالونی, بڈشاہ نگر, نٹی پورہ, سرینگر. سیل نمبر 9419408011.
3: आकाशवाणी श्रीनगर की आवाज, सुबह के ठीक 9 बजे हैं. पयाम सु प्रोग्राम में अब आइए आज की सुर्खियां समाप्त करते हैं.
4: पेश की जा रही हैं आज की सुर्खियां.
5: आज की सुर्खियां आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे हैं होंडा, प्याजो, एक्साइड, ईशर, निसान और टीवीएस कंपनियों के बा इख्तियार डीलर, कश्मीर मोटर्स, मौलाना आजाद रोड, श्रीनगर.
3: आदाब. आज बुधवार है, 1448 हिजरी के मुहर्रमुल हराम की 8 तारीख, मुताबिक 24 जून सन 2026 ईस्वी. श्रीनगर से आज शाया हुए उर्दू और अंग्रेजी रोजनामों में नुमाया तौर जगह पाई हुई अहम खबरों की सुर्खियां लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर. आपके मेजबान हैं आमिर अशरफ और साइका सलीम. समीन, अखबारात के सरवरक पर ये शह सुर्खी. जम्मू व कश्मीर यूटी डिजिटल खिदमात की फराहमी में सर फहरिस्त, 1100 से ज्यादा सरकारी खिदमात ऑनलाइन दस्तियाब, 3 दर्जे का पंचायती राज निजाम और डिजिटल खिदमात अच्छी हुक्मरानी का जरिया, पंचायतों को जिद्दत, डिजिटल गवर्नेंस, जवाबदेही और अवामी एतमाद के मराकज में तब्दील होना चाहिए, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा. हम यूनियन टेरिटरी के हर सरहदी गांव को 4G राबता, सड़क तक रसाई, बिजली और मवसलाती ढांचा फराहम करने के लिए कोशां, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने मुहर्रम इंतजामात का लिया जायजा, मौसर खिदमात की फराहमी के लिए तमाम महकमों के दरमियान करीबी तालमेल पर दिया जोर.
6: एक और रोजनामे की सुर्खी है, 2019 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी के विजन को पूरा किया, दफा 370 मनसूखी से ख्वाब मुकम्मल, एक परचम आईन वजीर अजम और सदर हिंदुस्तान की सालमियत के लिए खतरा थे अमित शाह, यात्रा 2026 के लिए नोडल अफसरान का तकर्रुर, पोलैंड के अनजान शहरी ने बोन मैरो अतिया करके कश्मीर के 3 साल बच्चे की जान बचाई,
3: रैनावारी में अलम शरीफ का मुतहता जुलूस अजा बरामद, वादी के दीगर मकामात पर भी जुलूस हाय अजा बरामद,
6: लेह एपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस की कॉल, लद्दाख भर में शटडाउन,
3: पार्लिमानी स्टैंडिंग कमेटी बराए खारजा अमूर ने वजीर आला उमर अब्दुल्ला से मुलाकात की, बॉर्डर मैनेजमेंट, तरक्याती मसाइल और खारजा पॉलिसी पर तबादले ख्याल किया,
6: मरकज पर काबिले एतमाद बातचीत के लिए दबाव.
3: सुर्खियां अभी और भी हैं, हमारे साथ रहिएगा.

0: नगर में मुनअक्द हुई। मीटिंग की सदारत MLA मुजफ्फर इकबाल खान ने की। मीटिंग के दौरान मुख्तलिफ महकमों के जवाबित के अलावा सरकारी कामकाज में मजीद शफाफियत लाने के तौर तरीकों पर भी तबादले ख्याल किया गया। दर्जे हरारत, श्रीनगर में आज रात का कम से कम दर्जे हरारत 16.2 डिग्री जबकि जम्मू में रात का कम से कम दर्जे हरारत 27.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ। खुदा हाफिज।
1: यह चे आकाशवाणी श्रीनगर 9:30 सपद कशिर मौसीकी करो पेश। आगाज़ मज बोजनाओ कलामे नाम सब आवाज़ गुलाम कादिर हाफिज़।

कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर, आवाज जो आपके कारोबार को एक नई उड़ान दे। क्या आप चाहते हैं कि आपकी सोच, आपका कारोबार हर

0: SWR PVC पाइप्स एंड फिटिंग्स। जी हाँ, मून वाटर टंकियां बनाने वाले अब लाए हैं मजबूत, पायेदार और आला तरीन क्वालिटी के मून SWR PVC पाइप्स एंड फिटिंग्स। बस नाम ही काफी है, मून SWR PVC पाइप्स एंड फिटिंग।
1: घर का एसी हो या गीजर, वोल्टेज का हीरो सिर्फ एक BS वॉइस स्टेबलाइजर्स। पावर फ्लक्चुएशन सॉर्टेड, लॉन्ग लाइफ फॉर योर अप्लायंसेस गारंटीड। BS वॉइस, दैट्स बेस्ट सर्विस। कॉल नाउ 9419001960।
2: सूफी सदा ये प्रोग्राम जो प्रत दोह आकाशवाणी श्रीनगर पेठ सुबह 10 बजे पेठ साढ़े 10 बजे तक नश सदान वाली बोजो प्रोग्राम सूफी सदा।

0: रेडियो एक ऐसी आवाज जो हर घर हर गली हर कूचे तक पहुंचे। अपने कारोबार को दीजिए एक नई पहचान, अपनी तरक्की को दीजिए एक नई उड़ान। रेडियो से इश्तेहार देकर बढ़ाएं अपने बिजनेस की शान। रेडियो तशहीर का सबसे आसान और सस्ता जरिया। राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर।
1: सभी तुसु प्रोग्राम बोजान सूफी सदा। यह प्रोग्राम प्रेत दोह आकाशवाणी श्रीनगर पेठ सुबह 10 बजे पेठ साढ़न 10 बजन तम नशर सपदान।

0: मियारी नशरियात की रवायत
1: और आपके एतमाद का नाम आकाशवाणी श्रीनगर
0: अब एक नए अंदाज में
2: बाग लगे इस आंगन को।
1: हर सुबह मालूमात रहनुमाई और बेहतरीन पेशकश के साथ सुनते रहिए
0: पयामे सुबह। मॉर्निंग लाइव शो
1: आकाशवाणी श्रीनगर से हर रोज सुबह 7:10 से 11:30 तक
0: पयामे सुबह।

0: समय शो समाप्त कर रहे हैं। आप लाइव इंटरेक्टिव शो और पयाम सुबह के साथ जुड़े हुए हैं और कौन है आज के इस शो की सीनत आपको अब बता देते हैं। ये तजब सुबह जो है अब हम खोल देते हैं कि आज के इस शो में हमने मधु किया है मशहूर स्पोर्ट्स पर्सन फैसल अली डार साहब को, जो कि एक नेशनल मार्शल आर्ट कोच हैं, जम्मू कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले खिलाड़ी हैं जिन्हें खेलों के ज़ुमरे में आला दर्जे के एज़ाज़ पद्मश्री से नवाजा गया है। यहाँ पर एक और ख़ास बात जो है आपको बताना चाहेंगे कि फैसल अली जो हैं खेलों के ज़ुमरे में पद्मश्री का एज़ाज़ पाने वाले पहले और सबसे कम उम्र शख्स हैं। फैसल अली साहब, आपका पयाम सुबह के इस लाइव शो में आने के लिए, हमारी दावत को कबूल करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया और इस्तकबाल भी।
1: थैंक यू सो मच।
0: यहाँ पर जो है हम सबसे पहले आप हमारे लिसनर्स को बता दें कि कहाँ से आप ताल्लुक़ रखते हैं, कहाँ आपकी ज़िंदगी की शुरुआत हुई, पढ़ाई वगैरह के बारे में आप बता दें।
1: जी, मैं डिस्ट्रिक्ट भांडीपोरा से ताल्लुक़ रखता हूँ, अलिम अदब का जो मशहूर है।
0: जी,
1: अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपनी तालीम भी वहीं से हासिल की है
0: जी,
1: और अभी भी उधर ही हूँ भांडीपोरा में, अपने लोगों के बीच, लोगों के साथ काम कर रहा हूँ पूरे जम्मू कश्मीर में, स्पोर्ट्स के साथ साथ
0: जी
1: और सोशल वर्क्स जहाँ भी मौका मिलता है उस पर भी काम करता हूँ।
0: और आपकी बचपन में पढ़ाई भी वहीं से?
1: बिल्कुल, मेरा भांडीपोरा में ही पूरा स्कूलिंग भी हुई, मेरी कॉलेज की पूरी लाइफ भी उधर ही हुई, स्पोर्ट्स के साथ साथ फिर बाहर गए पूरे इंडिया में और इंडिया से बाहर भी डिफरेंट कंट्रीज में मौका मिला खेलने का
0: जी,
1: देश को रिप्रेजेंट करने का।
0: आपसे हम जानना चाहेंगे कि इब्तदाई तौर पर आपको इस मखसूस से मार्शल आर्ट की तरफ किस चीज़ ने रागब किया?
1: देखिए, आलमोस्ट सभी लोग स्पोर्ट्स के साथ जुड़ना चाहते हैं, खेल कूद में हिस्सा लेना चाहते हैं। मैं भी सेम स्पोर्ट्स में इनिशियली बड़ा इंटरेस्टेड था, बट मैंने चूज़ मार्शल आर्ट्स थोड़ा डिफरेंट स्पोर्ट्स किया
0: जी,
1: कि मुझे लगा कि सब लोग दो तीन स्पोर्ट्स में ही फोकस कर रहे हैं, तो क्यों ना मैं एक ऐसा एक इंडिविजुअल स्पोर्ट्स और एक यूनिक स्पोर्ट्स ट्राई करूं और कोशिश करूं कि इसमें आगे बढ़ूं और अपने इलाके के साथ, अपने फैमिली के साथ, अपने लोगों के बीच इस इलाके को, पूरे देश को, जम्मू कश्मीर को अच्छी रिप्रेजेंटेशन के साथ साथ एक्सप्लोर करने का मौका मुझे मिलेगा
0: जी।
1: दैट्स व्हाई आई चूज़ मार्शल आर्ट्स। अल्हम्दुलिल्लाह फिर आहिस्ता आहिस्ता जर्नी बनती गई, ऊपर वाला भी रास्ता दिखा रहा है तो
0: जी बिल्कुल। और जब

0: आपने ये ट्रेनिंग्स जो है शुरू की है इस प्रोफेशन के साथ, आपका ये रिश्ता जो है कैसे परवान चढ़ता गया?
1: देखिए, मुझे कहीं ना कहीं एक चीज़ मिसिंग लगी। हम सब लोग इंटरेस्टेड होते हैं स्पोर्ट्स खेलने में, इवेंट्स को खिलाने में, बट एक चीज़ मुझे मिसिंग लगी, वो रही ट्रेनिंग। मुझे लगा कि हमें सीखने पे काम करना चाहिए, क्योंकि सब लोग खेलना चाहते हैं
0: जी।
1: किसी के हाथ में बैट, कोई बॉल, कुछ भी, हम स्पोर्ट्स और ग्राउंड्स में जाके एंटरटेन और टाइम पास ही मुझे लगा हर एक एंगल से। पर मुझे लगा कि हमें कहीं ना कहीं पहले ट्रेनिंग पे फोकस करना चाहिए, चीज़ों को सही अंदाज से समझना चाहिए, बेसिक स्ट्रक्चर को समझना चाहिए, जिस चीज़ की वजह से हमारे बच्चे फिर नेशनल इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे जा चुके हैं
0: जी।
1: क्योंकि जब तक हम सही चीज़ें नहीं सीखेंगे, हमारे बच्चे आगे नहीं पहुंच पाएंगे।
0: बिल्कुल।
1: तो फिर मैंने एक एकेडमी बनाई, उस पर फोकस किया, बच्चों को ट्रेनिंग पे लगाया। मैंने कहा आप लोग खेलो बाद में, लेकिन पहले सीखो सही चीज़ें
0: जी।
1: तो अल्हम्दुलिल्लाह वही कारवां बना और मेरी अली स्पोर्ट्स एकेडमी, उसका अभी पूरे जम्मू कश्मीर में नाम है और उससे इंटरनेशनल प्लेयर भी निकले, मेडलिस्ट भी निकले
0: जी।
1: और अब बच्चों का एक कॉन्सेप्ट क्रिएट हो चुका है कि ट्रेनिंग पे हमें फोकस करना चाहिए
0: जी। बिल्कुल। और यहाँ पे हम ये एक और बात आपसे जानना चाहेंगे कि क्या बचपन से ही आपका ये स्पोर्ट्स में, इस वाले स्पोर्ट्स में, मार्शल आर्ट्स में आपका इंटरेस्ट रहा, या आगे चलकर आप कहीं रुके हुए थे तो इस मींस इस कोचिंग में आप आ गए?
1: नहीं, मैं स्पोर्ट्स, क्रिकेट, फुटबॉल, ये चीज़ें तो चलती रहती थी, बट मेरे वालिद जो थे वो बड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में बड़ा इंटरेस्टेड थे। हमारे घर में VCR हुआ करता था और मैं मैगजीन भी कभी कभार पढ़ता था, तो ब्रूस ली को देख के मार्शल आर्ट्स को मैंने चूज़ किया, क्योंकि वो जो फाइटिंग का कॉन्सेप्ट है, स्ट्रीट फाइटिंग का कॉन्सेप्ट था, मेरे जहन पे आया कि मैं एक फ़ाइटर बनना चाहता हूँ। बट आहिस्ता आहिस्ता फिर मुझे ये पता चला कि ये एक ओलंपिक स्पोर्ट्स भी है, इसमें हम आगे बढ़ सकते हैं, अपने बच्चों को आगे ले जा सकते हैं, फिर मैंने उसको एज स्पोर्ट्स एज करियर ही ले लिया।
0: तो कोचिंग कॉन्सेप्ट जो आपका हुआ, ये इस तरह से हुआ कि आपने इसको एज करियर चूज कर लिया, करियर चूज कर लिया। यहाँ पर एक और बात जो है हम आपसे जानना चाहते हैं कि जब से आपने ये ट्रेनिंग्स शुरू की तो कितने सारे बच्चे जो हैं आपसे ट्रेन हुए होंगे, कितने सारे बच्चों का आपने ट्रेन किया?
1: 10,000 से ज़्यादा ऐसे बच्चे होंगे जो मैंने खुद ट्रेन किए होंगे। अब हमारी एकेडमी बन चुकी है जहाँ पर और इंस्ट्रक्टर्स मेरे स्टूडेंट्स बने हैं, जिन्होंने अपने सब यूनिट्स और अपनी एकेडमीज खोली हैं डिफरेंट इलाकों में, पूरे कश्मीर में, जिससे से एक रेवोल्यूशन आया, लोगों को कॉन्सेप्ट समझ आया कि हमें खेलने से पहले सीखने पे काम करना होगा। एक क्लब फॉर्मेशन अब जहन में आ चुकी है लोगों के, यूथ के अंदर, पेरेंट्स के अंदर, टीचर्स के अंदर, एक कम्युनिटी बेस्ड भी लोग अब क्लब्स बनाने लगे हैं, सो दैट कि हम चीज़ों को सही से सीखें। मेरे साथ साथ अब लाखों के बच्चे ट्रेनिंग कर रहे हैं जम्मू कश्मीर के, पूरे देश में अगर आप देखोगे तो ये चीज़ें अब एक प्रोफेशन बन चुका है कि ट्रेनिंग पे हमें काम करना है फिर खेलना है।
0: फैसल साहब, आप ये बताएं हमें कि जदीद तदरीसी तरीकों को शामिल करते हुए उन रिवायात का आप एहतराम जो है अपने इस प्रोफेशन में कैसे करते हैं?
1: बिल्कुल, देखिए जो चीज़ें हमारे
0: जो मॉडर्न टीचिंग मेथड्स हैं वो कैसे आप इसमें इस्तेमाल करते हैं?
1: अभी AI का ज़माना जो है, आप देख सकते हो कि बच्चे कोशिश करते हैं कि जो चीज़ें हमें नेट पर मिलेंगी वही सही है, बट उसको देखने के साथ साथ जो एक एक्सपर्टीज़, एक एक्सपीरियंस हमारे सीनियर्स के अंदर होती है, उन चीज़ों को हमें वो कॉम्बो लेके चलना पड़ेगा। क्योंकि जब तक के आपके पास एक अच्छी मेंटोरशिप नहीं होगी, मोटिवेशन नहीं होगी, आपका हीरो आपके साथ नहीं होगा
0: जी,
1: तब तक ही शायद कोई बच्चा आगे बढ़ पाएगा। नो डाउट कि वी हैव एवरीथिंग ऑन गूगल, और आज के ज़माने में हमारे पास IT सेक्शन में बहुत ऐसा फील्ड है कि हम हर एक चीज़ को अपग्रेड कर सकते हैं, बट जो जर्नी, जो सेंटिमेंट्स और इमोशंस एक एथलीट और एक कोच के साथ जुड़ी होती हैं उनके साथ, वो हम हर जगह पे नहीं ले पाएंगे। तो मैं समझता हूँ कि ठीक है, मॉडर्नाइजेशन को हम साथ लेते हैं, लेकिन हमें एक अच्छे रहबर की, एक अच्छे उस्ताद की, एक अच्छे कोच की ज़रूरत बहुत बहुत ज़्यादा
0: ज़रूरत है। आपसे बात जो है हम जारी रखेंगे, यहाँ पर रुकते हैं एक म्यूज़िकल ब्रेक के लिए।
1: श्योर।

जी समीन, आप बने हुए हैं आकाशवाणी श्रीनगर स्टेशन के साथ और शो समाप्त कर रहे हैं प्याम सुप, और जिसमें इंटरैक्टिव लाइव शो जो है जारी है, जिसमें

0: आज बात हो रही है नेशनल मार्शल आर्ट कोच फैसल अली डार साहब से, और इनसे हम अब जानने की कोशिश कर रहे हैं कि फैसल साहब, क्या बुनियादी सबक है जो आप चाहते हैं कि आप तक आने वाला हर नौजवान या बच्चा जो आपकी क्लास में आ जाता है वो आपसे ले जाए?
1: देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह हर एक जगह पे अगर देखें, पूरे देश में या पूरी दुनिया में, कोच बहुत अच्छे हैं अपने लेवल के और अपने तरीके से सिखाने वाले। बट मैं कहीं ना कहीं एक चीज़ मिस कर रहा हूँ जो मैं चाहता हूँ हमारे बच्चों के इनिशियल स्टेज पे उस पर काम किया जाए, जिसमें पेरेंट्स का बड़ा रोल है। दैट्स मॉरल एजुकेशन, इखलाकी तालीम, जो मुझे लग रहा है कि बच्चे को, जब तक बच्चा वो अखलाकी तौर से तैयार ना हो, अपने बड़ों की रेस्पेक्ट, वो मान सम्मान उसके अंदर ना आए, तब तक शायद ही वो किसी फील्ड में आगे बढ़ सकता है। हम जब तक इस पे काम नहीं करेंगे, बच्चा भले ही घर पे जाके अपने हीरो से मिलता है जो उसका कोच है, उसका टीचर होता है, बट वो उस अंदाज में जाना चाहिए उस क्लास में, उस इंस्टीट्यूट में या किसी क्लब में, जब तक उसके अंदर वो नरमी, वो सिंसियरिटी, डेडिकेशन, वो चीज़ें ना हो, और मॉरली वो तैयार होना चाहिए कि मैं रेस्पेक्ट अपने उस्ताद को, अपने पेरेंट्स को या अपने मोहल्ले में दोस्तों को या रिलेटिव्स को देने के लिए वो बच्चे को तैयार रहना है। ये कहीं ना कहीं मुझे कमी जिसकी मुझे लग रही है, क्योंकि ये बुनियाद है हर एक चीज़, जो बुराइयाँ आज के समाज में आप देख रहे हैं।
0: जी जी बिल्कुल,
1: इस चीज़ से शुरुआती ये शुरुआत हो रही है, क्योंकि हमारे बच्चे अगर अल्लाह ना करे बदतमीज़ हैं, किसी उनका तरीका ठीक नहीं, उनका अप्रोच, लहजा ठीक नहीं है, तो हर एक जो बुराइयां हैं अभी, जो सोशल इवल्स है उसकी, मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं ये चीज़ें, ये हम इस पर हमें काम करना है, और जब तक इस ये चीज़ ठीक नहीं होगा शायद ही हम किसी फील्ड में आगे बढ़ सकें। आप निकलते हैं कुछ बच्चे जिनके संस्कार हम बोलेंगे इनिशियल स्टेज पर ही फैमिली के द्वारा अच्छे होते हैं, बट कॉमन चीज़ें हम देख रहे हैं स्कूल्स में, इंस्टीट्यूशंस में, क्लब्स में, बेसिक मैंने देखा कि इसी वजह से बच्चा कहीं ना कहीं
0: पीछे
1: रह जाता है। तो ये चीज़ें जब तक ठीक नहीं होगी शायद ही हम किसी फील्ड में आगे बढ़ेंगे।
0: तो इन बातों का बहुत ख्याल रखते हैं कि बच्चों में सबसे पहले जो है अदब, एटिकेट्स मिल जाए,
1: ये पहले, ये इम्पोर्टेंट है
0: जी। ऐसे अब ट्रेनिंग्स पे आते हैं हम, ऐसे बहुत से तुलबा हैं जो हम ये कहेंगे कि मुख्तलिफ तरीकों से सीखते हैं, जैसा कि सीखने की सलाहियत अलग रहती है हर बच्चे की, आप खुद भी जानते होंगे, तो आप अपने जो इंस्ट्रक्शंस जो हैं आपके, या आपके जो इंस्ट्रक्टर्स हैं, या अगर आप खुद सिखाते हैं, तो तेज विजुअल लर्नर और किसी ऐसे बच्चे के मुताबिक किस तरह से जो है आप तैयारी करते हैं जिसको स्टेप बाय स्टेप सिखाने की ज़रूरत होती है, जो आपके पास जब बच्चे आते हैं तो ट्रेनिंग्स के लिए?
1: देखिए, ऊपर वाले ने अल्हम्दुलिल्लाह हर एक बच्चे के अंदर एक टैलेंट दिया होता है, एक बच्चा सितारा होता है
0: जी,
1: बट उसको तराशने के लिए एक उस्ताद की ज़रूरत है। लेकिन हम अक्सर एक गलती करते हैं एज ए पेरेंट या कोई गार्डियन होता है बच्चे का, कि भाई चलो आप ये स्पोर्ट्स करो या इस फील्ड में जाओ।
0: हाँ जी।
1: हम जज नहीं कर सकते डायरेक्टली बच्चे को कि आप इस स्पोर्ट्स में, मतलब हम कुछ चीज़ें ठोसते हैं बच्चे के ऊपर, ज़बरदस्ती करते हैं
0: जी।
1: इंटरेस्ट भले ही बच्चे का हो या ना हो, लेकिन विदाउट काउंसलिंग उसके अंदर जो कैपेबिलिटीज़, जो एबिलिटी उसके अंदर है, उसको पहचानना, समझना बहुत इंपॉर्टेंट है
0: जी।
1: क्योंकि हम कहीं ना कहीं ज़बरदस्ती भी करते हैं कुछ चीज़ों में, जल्दबाजी भी करते हैं, क्योंकि बच्चे के अंदर बहुत उससे बेहतर कुछ ऐसी चीज़ होती है जो हम वक्त पे नहीं समझ पाते हैं।
0: हाँ जी।
1: हम बच्चे को किसी और फील्ड में डालते हैं, किसी और स्पोर्ट्स में डालते हैं, और स्किल और टेक्निक के थ्रू डालते हैं, जिस चीज़ की वजह से वो अच्छी वाली क्वालिटी रह जाती है
0: जी।
1: और वो बच्चा अपने हीरो को खुश करने के लिए, क्योंकि उसके दो ही हीरो है, एक तो उसका उस्ताद और उसका फैमिली
0: जी,
1: या तो फादर या मदर, उनको खुश करने के लिए बोल रहा है कि मैं क्लास गया, मैंने अटेंड किया
0: जी, अपने इंटरेस्ट से नहीं होता,
1: नहीं होता है, नहीं बोल पाता है, वो दबा दबा जाता है। तो इस पे हमें समझने की कोशिश करनी है कि अगर बच्चा हमारे पास आए, इनके साथ हमें कुछ वक्त गुजारना है, पहले एक अर्ली एज में इनके साथ हमें टाइम देना है, इनको समझना है ये एक्चुअली इनमें क्या कैपेबिलिटी है, इनमें क्या ऐसी चीज़ है जिसको हम मोल्ड करके उस प्लेटफॉर्म को, उस चीज़ को एक्सप्लोर करें। क्योंकि हम अगर कोई, मैं अच्छा मार्शल आर्टिस्ट हूँ, मैं अच्छा
0: आप सिखाते हैं, अच्छे इंस्ट्रक्टर
1: हैं, इट डजेंट मीन कि मेरे जैसा ही ये बच्चा बनेगा
0: जी,
1: ज़रूरी नहीं है। देखिए, एक मिसाल देता हूँ, तेंदुलकर इतना बड़ा क्रिकेटर बना, ऊपर वाले ने उनको वो चीज़ें दी थी, बाई नेचर भी कुछ चीज़ें होती
0: हैं,
1: तो उनका बेटा वैसा नहीं बना, ज़रूरी नहीं है, बट मे बी उनके बेटे के अंदर कुछ ऐसी और चीज़ भी हो सकती है।

0: जो उससे बेहतर हो सकती है, बट उस चीज़ को समझने की ज़रूरत है हम जैसे कोच की, टीचर्स की, पेरेंट्स की, कि भाई हम ये हम स्टडीज़ में भी करते हैं बच्चों के साथ ज़बरदस्ती कि भाई मैं डॉक्टर बना, मैं इंजीनियर बना, आपको भी बनना है। बेटा उसे बेहतर भी बन सकता है, उसे डिफरेंट फील्ड में बहुत सारे ऐसे ऑप्शन हैं जहाँ जा सकता है। तो ये गलतियाँ हम करते हैं, मैं इन चीज़ में बिलीव नहीं करता हूँ। मैं बिलीव करता हूँ कि मैं बच्चों को फ्री छोड़ता हूँ इसका इंटरेस्ट देख के, और इसके अंदर वाकई वो चीज़ें हैं, तब जाके मैं इसको आहिस्ता आहिस्ता फिर प्रोफेशनलिज्म में क्रिएट करता हूँ कि अब इसको ग्रूम करेंगे। स्टार्टिंग में इसके ऊपर आप जबरदस्ती करोगे वो तो बिल्कुल गलत है।
1: तो वही आपसे जानना चाहते हैं कि बिगनर्स जब होते हैं उनके लिए किन कॉम्प्लेक्स बातों का या किन चीज़ों को तोड़ने की जरूरत होती है, किस मेथडोलॉजी को आप अपनाते हैं, कि किन बातों को अडेप्ट करते हैं, कि क्योंकि जैसा कि हमने अभी भी कहा कि अलग अलग स्टूडेंट्स की जो है लेवल्स अलग अलग होती हैं, सलाहियतें अलग अलग होती हैं, तो फिर क्या किन चीज़ों का आप ख्याल रखते हैं उस वक्त?
0: मैं सबसे पहले जिस पे काम करता हूँ वो है बच्चे का न्यूट्रिशन का डाइट
1: जी,
0: क्योंकि अगर आप देखोगे आज की डेट में मैक्सिमम पेरेंट्स इसी चीज़ से परेशान हैं, जो बच्चे घर से निकलते हैं स्कूल्स के लिए या किसी चीज़ के लिए अक्सर शिकायत हो रही है कि मेरा बच्चा कुछ खाता नहीं
1: जी। हाँ,
0: ये कॉमन चीज़ें बन चुकी है। और जब बच्चा अच्छा खा ही नहीं पा रहा है तो क्या करेगा, वो किस फील्ड में अच्छा जाएगा,
1: वो परफॉर्म भी अच्छा नहीं करेगा,
0: नहीं करेगा, उसका ब्रेन डेवलप नहीं होगा, उसकी बॉडी, उसके मसल्स, वो उसके अंदर स्टेमिना, वो फ्लेक्सिबिलिटी, वो एंडोरेंस, वो चीज़ें आपको कुछ देखने को मिलेगी नहीं, तो वो किसी भी फील्ड में अच्छा नहीं कर सकता।
1: बिल्कुल, हमारे बच्चे आजकल रोबोट्स की तरह बन गए हैं।
0: हाँ, वो डिप्रेशन बच्चे के अंदर आप देखोगे, बच्चा शिकार हुआ किसी बीमारी का, ला ना करें, मतलब ऐसी छोटे छोटे बच्चों में वो बीमारियाँ आई है जो हमने कभी, जिनका नाम भी हमने नहीं सुना है, और रीज़न उसका है डाइट
1: जी।
0: डाइट के साथ साथ इनिशियली जो बेसिक एक्सरसाइज हैं, जो बेसिक एक्सर्शन है बच्चे के लिए, सो दैट इज, क्योंकि दुनिया में इंसान आया है एक्सर्शन के लिए। अगर एग्जैक्टली देखोगे कि जब तक ये अपनी बॉडी को नहीं समझ पा रहा है कि मैंने अपनी बॉडी को कितना ग्रो किया है
1: जी,
0: मेरे अंदर कितना स्टेमिना है, मैं क्या चीज़ समझ पा रहा हूँ, कौन सी एबिलिटीज़ मेरे अंदर है, जब तक इंसान को, उस पेरेंट को ही पता नहीं मेरा बच्चा क्या कर रहा है, तो हम उसको किस फील्ड में डालेंगे। तो मैं पहले काम करता हूँ इन दो चीज़ों पर, एक तो मैंने बोला मॉरल एजुकेशन, पेरेंट्स के साथ, लोगों के साथ आना जाना, दोस्तों के साथ, उस्ताद के साथ, उनका बिहेवियर, उसके साथ साथ उनका फिर खाना, अच्छा
1: जी।
0: ये दो चीज़ें हो गई, ऑटोमेटिकली बच्चा फ्रेश हो जाता है, एक्टिव बन जाता है
1: जी।
0: फिर उनको आप कोई भी स्किल दे दो
1: जी,
0: वो इंटरेस्ट के साथ ही करेगा, हेल्दी कॉम्पिटिशन देगा
1: जी।
0: ये चीज़ें मैं मेरा देखो, बाद में आपको स्किल डेवलप और अपग्रेड ही करनी है। कोई चीज़ अगर किसी कोच ने दुनिया में लाई है, आहिस्ता आहिस्ता वो अपग्रेड ही होती है, डिफरेंट स्किल होती है, लेकिन चीज़ को अपग्रेड करना हमारा काम है। मैं, मेरे बाद कोई और कोच आएगा वो चीज़ को अपग्रेड करेगा, लेकिन बेसिक पहले बच्चे को तैयार उस लेवल पे लेकर, डायरेक्टली उसको वो चीज़ें मत दो कि भाई आपको ये पंच ऐसे ही आना चाहिए, नहीं, पहले वो देखो क्या उसकी बोन्स उतनी स्ट्रांग है, क्या उसका वो मसल इतना स्ट्रांग है, क्या वो अच्छे से देख पा रहा है, चीज़ों को समझ सुन पा रहा है। बच्चों के अंदर डिप्रेशन है, तो पहले मैं इन चीज़ों में काम करता हूँ।
1: बहुत खूब, और आपसे मज़ीद बात भी जारी रखेंगे, आपसे भी जानना चाहेंगे। मौसीकी हम सब सुनते हैं, तो क्या आप भी सुनते हैं, कोई आपकी पसंद का अगर कोई नगमा है जो हम आपके लिए प्ले करें?
0: बिल्कुल, मेरी फैमिली के लिए एक गाना जो मेरी पूरी फैमिली सुनती है, मेरी छोटी बेटी भी है, सब लोग मिलजुल के, मेरी बहन, मेरी मदर, मेरी वाइफ
1: जी,
0: मेरा बेटा, मेरे फादर, सब लोग मिलजुल के बैठते हैं तो ये गाना सुनते हैं। तो प्लीज़,
1: कौन सा आप सुनना चाहते हैं?
0: ये गाना है राही नई नई,
1: ज़रूर सुनवाएंगे आपके साथ साथ हमारे सारे लिसनर्स भी इस नगमे को सुनेंगे।
0: थैंक यू।

0: जी सामिन, आप बने हुए हैं लाइव इंटरैक्टिव शो के साथ, और इसमें अभी जो है हम बात कर रहे हैं एक खिलाड़ी से, नेशनल मार्शल आर्ट कोच के साथ, जो जम्मू कश्मीर के एक मरकजी इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं, और जिन्हें ख़ास बात जिनकी ये है कि जिन्हें खेल के ज़ुमरे में आला दर्जे का एज़ाज़ यानी कि पद्मश्री के एज़ाज़ से नवाजा गया। और यहाँ पर ये भी आपको बताना चाहेंगे कि वो इस ज़ुमरे में आने वाले, ये एज़ाज़ पाने वाले J&K में सबसे यंगेस्ट, सबसे छोटे कम उम्र जो है हैं, और जिनको ये एज़ाज़ जो है मिला। फैसल साहब, आपको चुना गया पद्मश्री के लिए, तो कैसे तासुरात रहे? क्या कभी आपने ऐसा सोचा था कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के हाथों इस एज़ाज़, इस अवार्ड को आप पाएंगे, और कैसा रहा, क्या क्या उस वक्त के वो तासुरात रहे, और इस बारे में हमारे लिसनर्स को आप बता दें।
1: देखिए, जब इंसान का जो ख्वाब होता है
0: जी,
1: जो मिशन होता है
0: जी,
1: जब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है
0: जी,
1: तो फिर वो जुनून में तब्दील हो जाता है। तो ये जुनून 2003 से मेरे साथ जुड़ा है। मैं अपने लोगों के लिए, अपने उन एथलीट्स के लिए,

0: के लिए काम करना चाहता था, जिनको कभी प्लेटफॉर्म नहीं मिला, जो कल्चर क्रिएट नहीं था, जो चीज़ें हमें फेस करनी होती थी, आपको पता है, एक नरेशन के अगेंस्ट कश्मीर में हम काम करते आए, जो भी कोई पॉजिटिविटी की चीज़ें होती थी, एक डर हमेशा साथ रहता था
1: जी।
0: उस डर को साथ लेके हम कोई काम कर पाते थे।
1: हाँ जी।
0: तो आप इस काम में इतना बह जाते हो, आपको अंदाज़ा नहीं रहता कितने साल गुजर गए और आप कहाँ पहुँचे। 5 स्टूडेंट्स से शुरुआत की
1: जी,
0: हज़ारों में स्टूडेंट्स हो गए, इंटरनेशनल 18 प्लेयर
1: जी
0: जो अपने डिस्ट्रिक्ट से दिए मैंने, मेडलिस्ट, वर्ल्ड चैम्पियनशिप मेडलिस्ट। फिर आपको कुछ याद ही नहीं रहता कि बाकी दुनिया क्या कर रही है
1: जी,
0: क्योंकि आपके साथ एक चैलेंज, आपको पैरेलल आपका एक चैलेंज चल रहा है और आप चाहते हो कि मैं इसको, इससे आगे कैसे निकलूं, अपने लोगों के साथ एक कारवां ऐसा बनाऊं सो दैट आने वाली जनरेशन को बेनिफिट मिले।
1: जी।
0: मेरे पद्मश्री से पहले 4 नेशनल अवार्ड ऑलरेडी है, जो उसमें 2 प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने मुझे दिए।
1: जी।
0: नशा बात मुक्त अभियान का भी एक नेशनल अवार्ड है मेरा। और मैंने टूरिज्म पे, स्पोर्ट्स पे भी जो काम किया उस पे भी है। तो लेकिन सिंसियरिटी और ऑनेस्टली मैं बोलना चाहूँगा, जब मुझे पद्मश्री के रिलेटेड कॉल आया मॉर्निंग
1: जी,
0: मुझे अंदाज़ा नहीं था कि मैं जिनसे बात कर रहा हूँ ये किस चीज़ के बारे में बोल रहे हैं और ये कौन सा अवार्ड है।
1: जी,
0: क्योंकि इंसान जब डूब जाता है अपने मिशन के अंदर
1: जी,
0: फिर याद ही नहीं था कि
1: और किसी बात की फिक्र नहीं
0: फिक्र
1: रहती
0: नहीं
1: फिर।
0: तो मेरे लिए एक सरप्राइज था मॉर्निंग में जब कॉल आया मुझे। तो जब मैं कॉल के बाद वहाँ से मुझे बोला गया कि आप अभी किसी को बोलेगा, हमने आपको जस्ट ये मुबारकबाद देने के लिए बोला कि यू हैव बीन चूजन फॉर पद्म अवार्ड, तो शाम को ये ऑफिशियली अनाउंस होगा। मैं जाके अंदर फिर उसके बाद फ़ोन पे देख रहा हूँ कि पद्म अवार्ड होता क्या है,
1: क्या है ये।
0: जब मैं देख रहा हूँ इसमें सचिन तेंदुलकर, सुनील गावस्कर, MS धोनी, ऐसे बड़े स्टार्स
1: हैं, स्टार्स हैं,
0: मुझे कैसे ये। फिर मैंने शुक्र ऊपर वाले का किया और मैंने कहा चलो मैं तो अवार्ड के लिए नहीं करता आया हूँ और मैं अभी भी कर रहा हूँ काम, और मैं वही काम वैसा ही कर रहा हूँ जो करता आया हूँ अभी भी बच्चों के बीच। फिर ये जर्नी, फिर इंसान में एक बड़ी चेंज आती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है और लोग समझते हैं कि
1: हम आपसे पूछना चाहते थे कि इस अवार्ड के बाद क्या मन फिर बना लिया आपने, क्योंकि एक खास रिकग्निशन आपको मिली JNK में, क्योंकि पहला ऐसा अवार्ड, एक ऐसा एजाज जो स्पोर्ट्स में अभी तक किसी को नहीं मिला था। कैसी फीलिंग रही और फिर क्या एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको आप पर आ गई?
0: इंसान के अंदर अकाउंटेबिलिटी आ जाती है ऑटोमेटिकली, आप रिस्पॉन्सिबल अपने आप को समझते हो और लोगों को एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती हैं और कोशिश करते हैं हम कि और हमसे बेहतर हो। जो कंट्रीब्यूशन के तौर मैंने बताया कि हमारी आने वाली जनरेशन, जो अभी करंट सिचुएशंस हैं पूरे देश में, जम्मू कश्मीर में स्पेशली, कश्मीर में बोलूँगा, जो ड्रग मैनेज है अभी
1: जी,
0: तो ये दिशा डाइवर्ट नहीं बोलूँगा, इसके ब्रांच बन गए जो हम स्पोर्ट्स पे काम करते हैं और स्पोर्ट्स के बीच में हमें ये बड़ा चैलेंज, जो अभी पूरे भारत सरकार के जो द्वारा नशा बात मुक्त अभियान जो चल रही है, रिसेंटली ऑनरेबल LG साहब ने भी 100 डेज का एक प्रोग्राम किया, सब लोग कलेक्टिव एफर्ट दे रहे हैं कि चाह रहे हैं कि हमारे बच्चे आगे बढ़े और ये नशा बीच में जो आ गया इसने कहीं ना कहीं एक हर्डल क्रिएट की है और इस चैलेंज को पार करने के लिए स्पोर्ट्स इज द ओनली मीडियम जो मुझे लगता है
1: जी,
0: जो बच्चे को, वंस एक एथलीट जब स्पोर्ट्स में अपना फिजिक, अपनी टेक्निक, अपना नाम बनाता है, वो कभी भी गलत काम की तरफ नहीं जाएगा, इंटरेस्ट के साथ जुड़ता है। तो अब ये डबल मिशन हमारा हो गया है कि हम जितना हो सके हमारे बच्चों को हम कोशिश करेंगे इस तबाही से बचाने की सो दैट हमारे बच्चे देश के साथ आगे बढ़े।
1: तो यही हम आपसे जानना चाहते हैं कि अब आप इस मिशन पर भी काम कर रहे हैं, नशा मुक्त भारत के लिए भी जो है आप एक मिशन चला रहे हैं, एक आपका, आपने एक जिम्मेदारी ली है अपने ऊपर कि ये इसमें काम करना है। आपसे जानना चाहेंगे कि बच्चों को आपने जब स्पोर्ट्स में लगा दिया है, इन बच्चों को एक राह दी है, एक समत दी है आपने, तो क्या वो बच्चे इस गलत आदत से, हम इस बुरी आदत से जो है दूर रह रहे हैं, आप इसमें कामयाब हो रहे हैं?
0: देखिए अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे ऐसे एथलीट्स, ऐसे स्टार्स अभी हमारे साथ भी हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, जो कहीं ना

0: मुलव्वस हो चुके थे, इस तबाही में इन्वॉल्व हो
1: जी
0: चुके थे,
1: जी
0: बट उन उनके लिए हमें कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें समझने की ज़रूरत है। वो पेशेंट होते हैं, उनको केयर के साथ साथ उनके साथ जिस तरीके से अप्रोच कुछ लोग करते हैं वैसा नहीं करना है। हमें उनको अपना समझ के उनको अपने साथ लेके आगे बढ़ना है। अगर हम इनको रास्ते में छोड़ेंगे तो दे बिकेम पेडलर्स। जब एक विक्टम होता है वो समझता है अब तो मुझे सोसाइटी ओन ही नहीं कर रही है,
1: जी
0: अब बेहतर है कि मैं अपने साथ किसी और को भी ले डूबूँ, क्योंकि उसका एक एक नेटवर्क बन जाता है, एक चेन बन जाती है उनकी। उस चेन को तोड़ने के लिए हमने काम किया, हमने बहुत सारे यूथ को, इवन गर्ल्स को जो इन्वॉल्व हो चुकी थी,
1: जी
0: उनको स्पोर्ट्स में जोड़ा और उनको अपने साथ रखा, उनको टाइम ही नहीं दिया उस फील्ड में जाने की, उस नेटवर्क्स के साथ जुड़ने की। और जब उनका इंटरेस्ट, उनकी जो वो एंग्जाइटी, ड्रग्स वाली एंग्जाइटी थी, उसको कन्वर्ट हमने स्पोर्ट्स में की।
1: जी
0: जब एक एथलीट मेडल आता है, उसको जब शोहरत मिलती है, उसको जब ऑनर मिलता है, रिगार्ड मिलता है, उसको एनकरेजमेंट मिलती है, डेफिनेटली उसकी एंग्जाइटी और बढ़ती है रिगार्डिंग स्पोर्ट्स। तो वो चीज़ें हमने कन्वर्ट की कहीं ना कहीं, और उसके अच्छे कॉन्सिक्वेंस, अच्छे रिजल्ट्स निकल के आए। और अब कहीं ना कहीं आप देखिए पूरा देश जुट चुका है स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए, और रीज़न ये है कि हमारा बच्चा इस बिद्दत से दूर है।
1: जी, मार्शल आर्ट्स के ज़रिए खेलों को आप फ़रोग देते हैं और नौजवानों को मंशियात की लत से दूर करने की कोशिशों के लिए, हम जानना चाहेंगे क्या किसी एजाज से आपको नवाजा गया?
0: बिल्कुल, मेरे दो नेशनल, हमारी एकेडमी को भी एक ऑर्गेनाइजेशन नेशनल अवार्ड मिला है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट की तरफ से,
1: जी,
0: और एज इंडिविजुअल भी मुझे उसका एक नेशनल अवार्ड मिला है। और हम अब अवार्ड्स की बात नहीं, क्योंकि अवार्ड्स ऑटोमेटिकली आपके जब आप अच्छा काम करोगे, आपको कोई रिकमेंडेशन की जरूरत
1: नहीं है,
0: आपको कोई रिकॉग्निशन की जरूरत, क्योंकि आप जब लोगों के साथ ग्राउंड रूट से जुड़े हो, आपको एग्जैक्टली पता है कि लोगों के बीच क्या हालात है, फैमिलीज क्या सफ़र कर रही है, हमारी बहनें, हमारी माएँ, हमारे दोस्त, हमारे एल्डर्स, वो क्या सफ़र कर रहे हैं। जब वो दर्द आप फील करते हो, ऑटोमेटिकली ऊपर वाला आपको अवार्ड से नवाता है।
1: बेशक,
0: तो हम अवार्ड्स के लिए अगर करेंगे तो मुझे नहीं लगता फिर अवार्ड कोई मिलेगा। आप अच्छा काम करते जाओ, मैं शॉर्ट में बोलूंगा डू गुड हैव गुड, अब अच्छा करो, आपको डेफिनेटली ऊपर वाला
1: अच्छा मिलेगा ही,
0: बिल्कुल
1: ऊपर वाला आपको जरूर नवाजेगा अच्छी अच्छाई से ही। तो एक और बात हमारे जहन में आ रही है कि क्या आप वर्कशॉप्स भी लगाते हैं, आप ऐसा करते हैं यूथ, ताकि यूथ जो है हमारा खेलों को ज्वाइन करें?
0: मैं इसी पे मैं बोलना चाहता था, जब मैंने ट्रेनिंग पे आपको इनिशियली बताया कि मैंने एकेडमी क्यों बनाई, क्योंकि सब लोग खेलना चाहते हैं। ट्रेनिंग पे मैंने कहा कि सब लोग खेलना चाहते हैं और एक एज निकल जाती है खेलते खेलते, और वो उस स्किल को डेवलप, अपग्रेड नहीं कर पाते, क्योंकि वो सीखने पे काम ही नहीं करते। वी नीड सर्टिफाइड कोच, सर्टिफाइड स्किल्स, अपग्रेडेशन होनी चाहिए हर एक चीज़ में, सो दैट बच्चा बड़े अपनी एज के साथ साथ एक अच्छे बड़े प्लेटफॉर्म पे भी जाए।
1: प्लेटफॉर्म पे भी आ जाए।
0: तो फिर मैंने एकेडमी का कॉन्सेप्ट इसलिए बनाया कि स्पोर्ट्स एज करियर, क्योंकि यहाँ पर आप देखिए मॉरली वो रिस्पेक्ट पेरेंट्स के द्वारा, टीचर्स के द्वारा, स्कूल्स में या सोसाइटी उतना ओन नहीं करती आई है स्पोर्ट्स को।
1: नहीं, पहले तो नहीं था, लेकिन अब रुझान बढ़ गया है।
0: वही बता रहा हूँ, क्योंकि जब रोजगार बच्चे को मिला
1: जी,
0: कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशंस में,
1: रिकॉग्निशन में
0: आपको एडमिशंस मिलने शुरू हुए, कोई फायदा मिला, जॉब्स लगे, तो डेफिनेटली एक इंस्पिरेशन मिल जाती है और फैमिलीज, और बच्चों के लिए, और पेरेंट्स के लिए, तो उस चीज़ को फिर लोग फॉलो करने लगे। तो आहिस्ता आहिस्ता अब देखो रिसेंटली जॉब भी लगे हैं स्पोर्ट्स कोटे में लोगों को, तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं स्ट्राइक करती है। जब अच्छी चीज़ें होती है उसका रिजल्ट भी अच्छा निकल आता है बाद में, और फिर लोग उस चीज़ को फॉलो करते हैं। तो वो वर्कशॉप्स और ये सेमिनार्स तो एकेडमी हम करते ही हैं, और हर जगह पे जाते हैं जहाँ पर स्पोर्ट्स की वो अवेयरनेस नहीं है, क्योंकि अवेयरनेस की बड़ी ज़रूरत है। पेरेंट अवेयर नहीं है, टीचर अवेयर नहीं है, सोसाइटी अवेयर नहीं है कि कितने बेनिफिट्स है स्पोर्ट्स के साथ साथ। फिजिकल फिटनेस तो है ही, करियर तो है ही, लेकिन आप आज के डेट में देखो कि भारत सरकार कितना फ़ायदा देती है एक एथलीट को अगर वो अच्छा खेलता है और प्रोफेशनली आगे बढ़ता है।
1: फैसल साहब, आपसे ये हम जानना चाहते थे कि आप अभी जो है किसके तहत जो है तरबियत कर रहे हैं? हम यही कहेंगे कि इंस्ट्रक्टर्स भी जो हैं ताहयात सीखते रहते हैं, जब तक रहते हैं वो सीखते रहते हैं। तो जैसे सीनियर मास्टर्स या कोचेस के तहत आप अपनी सलाहियतों को और निखारते रहते हैं, या कुछ और बात है जिससे आप अपनी सलाहियतों, खुद की सलाहियतों को भी निखारते
0: हैं? देखिए, मैं खुद, अब हम जाते हैं जितने भी मेरे उस्ताद हैं, मेरे मास्टर्स हैं, हम खुद को अपग्रेड करते हैं, क्योंकि मैंने बताया ना कि आज की जो एडवांसमेंट हर एक चीज़ में आई, स्पोर्ट्स में आई, जो टेक्नोलॉजी आई, तो हम अपने आप को अपग्रेड

0: के बाद बाद हमारे इंस्ट्रक्टर्स को अपग्रेड करते हैं, हम
1: जी
0: सेमिनार्स वर्कशॉप्स कराते हैं सो दैट हमारे बच्चे अपडेट रहें, जो इन्फॉर्मेशन, जो रूल्स रेगुलेशंस, जो चीज़ें एडवांसमेंट आती है स्पोर्ट्स में, स्पोर्ट्स साइंस की बात करेंगे, आईटी के सेक्शन की बात करें, स्पोर्ट्स में अब कौन सा ऐसा फील्ड है जो आज की डेट में ये लोग काम नहीं करते, तो वास्ट बड़ा बड़ा फील्ड ये है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे बच्चे अपग्रेड रहें और साथ साथ जो अभी दुनिया पूरी ओलंपिक्स तक जो दुनिया लड़ रही है स्पोर्ट्स के लिए, आप देखिए एक पीसफुल वार होता है ओलंपिक्स, सब लोग कोशिश करते हैं कि हमारी मेडल टेली अच्छी हो, तो इट मीन्स कि सब लोग काम कर रहे हैं चीज़ों पे, एक एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्शन लगा है पीछे, तो हम भी कहीं ना कहीं जुड़े हैं अपने बच्चों को, अपने इंस्ट्रक्टर्स को अपग्रेड करने के साथ साथ, सो दैट हमारे आने वाली जनरेशन भी साथ साथ अपग्रेड होती रहे।
1: आपके इस तरबियती और तदरीसी सफ़र के दौरान आपको भी यकीनन कई मुश्किलात का सामना हुआ होगा।
0: बिल्कुल।
1: तो आप से हम जानना चाहेंगे कि किस मुश्किल तरीन कंडीशन या किसी जहनी चैलेंज पर काबू पाना पड़ा, अगर आपको ऐसे हालात से कभी गुजरना पड़ा तो आप हमारे लिसनर्स को ये बता दें।
0: देखिए सबसे बड़ा चैलेंज मैंने आपको इनिशियल भी बताया, अभी मैं बता रहा हूँ, जो चीज़ें आप अक्सर सुनेंगे एक एथलीट के लिए या किसी भी सक्सेसफुल इंसान, वो आपको ये बताएगी कि मेरा फैमिली सपोर्ट नहीं था, मेरी ये फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स थी, मेरा इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा वैसा नहीं था। बट मैं ये बोलूँगा जो कल्चर हमें क्रिएट करना पड़ा एक ऐसी कंजर्वेटिव सोसाइटी में जहाँ पर हर एक चीज़ को नेगेटिव एंगल से देखा जाता था,
1: जी।
0: हमारे बच्चों को दबाया गया, जो टैलेंटेड बच्चे थे जो बहुत कुछ अच्छा कर पाते थे, दैट वॉज अ बिग चैलेंज। वो थ्रेट परसेप्शन, वो नेगेटिव एक ऐसा हमारे साथ चला जिसको हम भूल कभी नहीं पाएंगे। उस दौर से हम निकले हैं, उस चीज़ से हम निकले हैं, अल्लाह बचाए कि वैसा दौर हमारे बच्चों को ना देखना पड़े, क्योंकि अब हमारे बच्चे बड़े सपने देख रहे हैं, बड़े इवेंट्स में जाना चाहते हैं, बड़ा मिशन, बड़े
1: बड़ा
0: गोल्स
1: करना चाहते हैं,
0: लेकिन ये चीज़ जब बीच में आती है तो वो उससे बड़ा कोई चैलेंज है नहीं मेरे लिए।
1: फैसल साहब, बच्चों को आपने स्पोर्ट्स में लगा दिया, उन बच्चों को एक राह दी, एक समत दी है कि अब ये बच्चा जो है, उम्मीद है हमें यही कि भटकेगा नहीं, हमारा बच्चा जो है भटकेगा नहीं। वी आर प्राउड ऑफ यू।
2: सुनाए के महफिल दे ताली पे ताली, वरना अपना नाम नहीं है बन्ने खां भोपाली। मुन्ने मियां बधाई बनो खूब होनहार, दोनों जहां की नेमतें हो आप पे निसार। हाँ बचपन हो खुशगवार, जवानी सदा बहार, अल्लाह करे ये दिन यूं ही

0: साहब, आपसे हम ये जानना चाहते हैं कि क्या आपके फ़ी स्ट्रक्चर के बारे में, चूंकि आपके कई सारे, जो जैसा कि आपने ख़ुद भी फरमाया कि आप कोचिंग सेंटर्स चलाते हैं, कितने ट्रेनिंग सेंटर्स हैं आपके और क्या आपके जो फ़ी स्ट्रक्चर्स हैं वो क्या है?
1: देखिए, जो मैंने चीज़ खुद फेस की है उसी चीज़ की बुनियाद बन चुकी है एकेडमी का फ़ी स्ट्रक्चर।
0: जी,
1: हमारे पास मैक्सिमम वो बच्चे आते हैं जो बहुत पुअर फैमिली से होते।
0: जी,
1: और दूर इलाके से जो बच्चे आते हैं, ऊपर बेल्ट से बच्चे आते हैं जो नहीं कर पाते अफोर्ड। तो हमने शुरुआत ही ली कि हम एक कल्चर क्रिएट करेंगे।
0: जी,
1: जब तक एक कल्चर क्रिएट नहीं होगा वो प्रोफेशन कभी बन ही नहीं सकता।
0: जी,
1: तो हमने 50 रुपीज़ एक साल के लिए बच्चों को फीस करे,
0: बहुत ही मिनिमल फी रखी,
1: और ये तब से स्टार्ट है।
0: सारे बच्चे हमारे जो हैं, जिनको अभी रुझान है, वो जस्ट खेल में आ सकते हैं।
1: जस्ट इसलिए इस बच्चे को लगे कि मैं एक फॉर्म सबमिट कर रहा हूँ, मुझे एक आई कार्ड मिल रहा है, उसको थोड़ा आइडिया आ रहा है कि मैं कहीं जुड़ा हूँ।
0: जी,
1: और जस्ट उसको ये कॉन्सेप्ट देने का कि आप घर जा रहे हो, वापस आ रहे हो, ट्रेनिंग आपको करनी है, आप किसी इदारे में आपकी अटेंडेंस हो रही है, एक उसका कल्चर क्रिएट करने के लिए, एक माहौल बनाने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह हम अभी भी वैसा ही कर रहे हैं। जब तक ये उस प्रोफेशन पे नहीं पहुंचेगा, इस चीज़ की वैल्यू नहीं होगी, तो पेरेंट तब तक उस फी को नहीं बढ़ा पाएगा।
0: जी जी, बहुत खूब। यहाँ पे एक और बात जो है हम आपसे जानना चाहते हैं, चूंकि मार्शल आर्ट में फिजिकल कॉन्टैक्ट जो है शामिल है, तो आप इस आर्ट की शिद्दत को बरकरार रखते हुए एक महफूज चोट से बचाव के माहौल को कैसे मेंटेन करते हैं, क्या प्रोटोकॉल्स हैं ताकि आपका जो वहाँ का माहौल है वो सेफ रहे?
1: देखिए, मैक्सिमम पेरेंट्स के ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि आप इट्स अ कॉम्बैट स्पोर्ट्स, कि आप बच्चों को इंजरीज हो जाएंगी तो मेरे बच्चे को लगेगी, मैक्सिमम ये सवाल होते हैं। सारे दोस्तों को और उन पेरेंट्स को मैं बताना चाहूँगा कि जब एक ट्रेनिंग होती है, ट्रेनिंग के स्पेशल गेयर्स होते हैं जिसमें हम बच्चों को ट्रेन कराते हैं, और जो कंपटीशन होता है उसमें अपने गेयर होते हैं, और जो चीज़ें आप फिल्मों में या किसी मूवीज़ में या किसी ऐसे कोई वीडियोस में देखते हो वैसा कुछ है नहीं। और एक एज क्राइटेरिया के हिसाब से रूल्स एंड रेगुलेशंस बने हैं डिफरेंट स्पोर्ट, क्योंकि मार्शल आर्ट्स एक कॉम्बैट स्पोर्ट्स है। अब इसमें डिफरेंट गेम्स हैं, अगर आप देखोगे ताइक्वांडो है, किक बॉक्सिंग है, वुशू है, पंचैक्सल आर्ट है, कराटे है
0: जी।
1: तो ये बहुत सारे मार्शल आर्ट, तो हर एक मार्शल आर्ट्स का अपना अपना जो रूल बुक बना है, अपने अपने तरीके से खेला जाता है।
0: बिल्कुल। एक और बात आपसे हम जानना चाहते हैं कि जैसे स्टूडेंट हमारे जो हैं ब्लैक बेल्ट जैसे आला सतह पर पहुंच जाता है, तो आप किस तरह से मुतमईन होते हैं कि इस बच्चे को जो है अब महारत के अगले दर्जे की तरफ हमें इसको ले जाना है?
1: देखिए, हर एक मार्शल आर्ट्स में तो ये ग्रेडिंग, बेल्ट ग्रेडिंग होती नहीं। ये कुछ ही मार्शल आर्ट्स हैं जिसमें बेल्ट ग्रेडिंग का कॉन्सेप्ट है।
0: जी,
1: क्योंकि अगर आप एज स्पोर्ट्स देखोगे, स्पोर्ट्स में तो जो क्राइटेरिया बनाया है पूरे देश में या इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की बात करें, तो हर जगह पे ये चीज़ें लागू नहीं होती है। अगर हम ट्रेनिंग की बात करेंगे, ट्रेडिशनली जो चीज़ें होती थी, एक बेल्ट हासिल करने के लिए एक बच्चा बड़ा खुश होता था कि मैं इस ग्रीन बेल्ट को, येलो बेल्ट को, ब्राउन बेल्ट को, ब्लैक बेल्ट को हासिल करूँ, तो तब वो एक वो लगन होती थी एक एथलीट को ये बेल्ट हासिल करने के लिए।
0: जी।
1: अब सब लोग चाहते हैं कि मेडल्स आए, हमारा जॉब लगे, हमें कहीं फायदा हो। जो ट्रेडिशनली चीज़ें होती थी मार्शल आर्ट्स में, अब वो प्रोफेशनली कन्वर्ट हो चुकी हैं और लोग चाहते हैं कि हमारा रोजगार बने।
0: जी।
1: वो लगन अलग थी, अब वैसा हर एक जगह पे नहीं होता है। बहुत कम मार्शल आर्ट्स में ग्रेडिंग्स होती हैं और बहुत कम लोग उस चीज़ को फॉलो करते हैं।
0: यहाँ पे हम ये कहना चाहेंगे कि क्योंकि वक्त हमारे पास बहुत कम बचा है, आपसे एक मखसूस सा मैसेज जो है हमारे यंगस्टर्स के लिए या बिलखसूस बच्चों के लिए, अगर वो इस खेल में, किक बॉक्सिंग में दिलचस्पी रखते हैं, तो क्या कहना चाहेंगे?
1: मैं पूरे एक ही सिर्फ मार्शल आर्ट्स की बात नहीं करूँगा, मैं सारे यूथ को बोलना चाहूँगा, आप लोग खेलो, किसी भी स्पोर्ट्स को खेलो और कोशिश करो सही से एक स्पोर्ट्स को खेलने की। और उसमें तीन चीज़ों की ज़रूरत है, कंसिस्टेंसी, डेडिकेशन और सिंसियरिटी। जब तक आप लोग उसमें नहीं करोगे काम, शायद ही आप उसमें आगे बढ़ोगे। और कुछ करो इंडिविजुअल स्पोर्ट्स में पकड़, उस इंडिविजुअल स्पोर्ट्स को पकड़ने की, जिससे आपको फ़ायदा मिले, आपकी फैमिली को बेनिफिट मिले, और मॉरली आपको अपने पेरेंट्स के साथ सिंसियर रहना होगा। थैंक यू सो मच।
0: बहुत खूब। फैसल अली डार

साहब आप हमारे इस लाइव शो में तशरीफ़ लाए, शुक्रगुजार हैं हम आपके कि बहुत ही शॉर्ट नोटिस पे हमारी दावत जो है आपने कबूल की, यहाँ पर आप आए और आप से बात करके हमें बहुत अच्छा लगा और आपने बहुत सारी कारामद बातें यहाँ पर हमारे सुनने वालों को बिलखसूस खेल शायकीन को जो है बताई, जिससे वो इस्तेफादा उठा सकते हैं अगर खेलों में रुझान रखते हैं तो इस उन्हें और मदद जो है हासिल हो सकती है। प्याम सुबह में आने के लिए, हमारी दावत को कबूल करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों इस शो का वक्त जो है अब इख्तिताम को पहुंच चुका है, हमें दीजिए इजाजत, अब जुड़ते हैं नाहिदा के साथ।

0: हो सकती है। पैगाम सुब में आने के लिए, हमारी दावत को कबूल करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स अ लॉट। तो दोस्तों, इस शो का वक्त जो है अब इख्तिताम को पहुंच चुका है। हमें दीजिए इजाजत, अब जुड़ते हैं नाहिदा के साथ।
1: समीन, आप समाप्त कर रहे थे प्रोग्राम पयाम सुबह। यह आकाशवाणी श्रीनगर है, हमारे अगले लान का इंतजार कीजिए। यह आकाशवाणी श्रीनगर मीडियम वेव जत 68.8 मीटर एफएम अखत 3.5 मेगाहर्ट्ज़ पर समीन बलो छकर तुरु बोजो फनकार हबीबुल्ला डार वसंत सती यमन निश बोजो तो कलामी शमस फकीर।

मैं कनकलता। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के कश्मीर मुद्दा उठाने पर कड़ी आपत्ति व्यक्त की है। पाकिस्तान पर संयुक्त राष्ट्र मंच का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाते हुए भारत ने कहा कि सह अध्यक्ष के रूप में निष्पक्ष रहने के बजाय पाकिस्तान ने पद

0: का दुरुपयोग किया है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने सहअध्यक्ष के तौर पर पाकिस्तान के आचरण की आलोचना की। पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि आसिम इफ्तिखार अहमद की टिप्पणियों के जवाब में पी हरीश ने जम्मू कश्मीर पर भारत के लंबे समय से चले आ रहे रुख को दोहराया। उन्होंने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर पूरी तरह से भारत का आंतरिक मामला है। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के हालात पर पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ की टिप्पणियों की कड़ी आलोचना की है। भारत ने कहा है कि टिप्पणियां पाकिस्तान की नाकामियों को छिपाने और मानवाधिकारों के उल्लंघन से ध्यान भटकाने की कोशिश है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने संवाददाताओं से कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में विरोध प्रदर्शन इसलिए हो रहे हैं कि पाकिस्तान वहां के लोगों का दशकों से आर्थिक शोषण, बुनियादी अधिकारों का हनन और प्रशासनिक दमन कर रहा है। खाड़ी क्षेत्र में जारी टकराव पर श्री जायसवाल ने बताया कि भारतीय ध्वज वाले 10 जहाज अब भी फारस की खाड़ी में हैं। उन्होंने कहा कि 17 जून को अमेरिका और ईरान के बीच सहमति पत्र पर हस्ताक्षर होने के बाद 11 जहाज होर्मुज जलडमरू मध्य से भारत पहुंचे हैं।
1: 11 जहाज जो भारत की तरफ आ रहे हैं, इसमें से 3 भारतीय जहाज हैं जो कि क्रूड ऑयल टैंकर्स हैं। इनमें 285,000 मेट्रिक टन क्रूड ऑयल है। इसके अलावा एक विदेशी पताका के साथ एक एलपीजी टैंकर जो भारत की तरफ आ रहा है और एक विदेशी पताका के साथ फर्टिलाइजर कार्गो के साथ वो आ रहे हैं। और जो अन्य 10 हमारे जहाज हैं वो भी हमारी ये उम्मीद है कि जल्द ही वो हॉर्मुज पार करके भारत की तरफ आ जाएंगे।
0: अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन होर्मुज जलडमरू मध्य में फंसे 11,000 से ज्यादा नाविकों को वहां से निकालेगा। संगठन के महासचिव आर्सेनियो डोमिंग्वेस ने कहा कि इस अभियान में मदद के लिए जरूरी सुरक्षा गारंटी ली गई है। इस अभियान में ईरान, ओमान और क्षेत्र के अन्य देशों और समुद्री उद्योग जगत का सहयोग लिया जाएगा। ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों और वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारियों की दिल्ली बैठक में आतंकवाद, साइबर खतरों और वैश्विक सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए सहयोग बढ़ाने पर बल दिया गया है। बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने की। बैठक में सदस्य देशों ने उभरती सुरक्षा चुनौतियों पर विचार विमर्श किया। विदेश मंत्रालय के अनुसार ऐसे सुरक्षा खतरों पर खासतौर से चर्चा हुई जो अब वैश्विक रूप ले चुके हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों ने हर तरह के आतंकवाद के खिलाफ साझा कार्रवाई की प्रतिबद्धता भी दोहराई। ईरान के तेहरान में भारतीय दूतावास ने सुरक्षा स्थिति में सुधार को देखते हुए भारतीय नागरिकों के लिए एक नया परामर्श जारी किया है। दूतावास ने कहा कि बदलते घटनाक्रमों के बावजूद भारतीय नागरिकों को अगली सूचना तक सभी गैर जरूरी यात्राओं से बचना चाहिए। देश में रह रहे भारतीय नागरिकों और बहुत आवश्यक होने पर ईरान यात्रा करने वालों को अत्यधिक सावधानी और सतर्कता बरतने तथा स्थिति पर लगातार नजर रखने की सलाह दी गई है। ताजा जानकारी और आगामी परामर्श के लिए दूतावास की आधिकारिक वेबसाइट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लगातार नजर रखने को कहा गया है। आज पासपोर्ट सेवा दिवस है। ये दिन 24 जून 1967 को पासपोर्ट अधिनियम के लागू होने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इस अवसर पर विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर ने कहा है कि पासपोर्ट सेवा कार्यक्रम के दूसरे चरण का क्रियान्वयन चिप आधारित ई पासपोर्ट की शुरुआत, नए पासपोर्ट सुरक्षा केंद्रों और पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र की स्थापना तथा रिकॉर्ड स्तर पर पासपोर्ट जारी करने से यात्रा सुगम हो रही है। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि सेवा, सुशासन और नागरिक सुविधा के संकल्प के साथ इंडिया पोस्ट द्वारा संचालित डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र के माध्यम से पासपोर्ट सेवाएं देश के सुदूर क्षेत्रों तक भी पहुंच रही हैं। फीफा फुटबॉल विश्व कप में ग्रुप के में पुर्तगाल ने उज्बेकिस्तान को 5-0 से हरा दिया है। पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 2 गोल दागे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani. The news are read by Abhishek Mukhopadhyay. India strongly objected to Pakistan raising the Kashmir issue at the United Nations Forum, accusing Islamabad of politicizing the platform, also slammed it for misusing its position as co-chair instead of being unbiased, as Bihu

जी दोस्तों, आपने ये नगमा सुना, गोल्डन वर्ड्स थे ये ज़िंदगी के बारे में, जिसको ज़िंदगी गुजारने का फ़न सीखा और उसको गुजारने का तरीका सीखा, वो इंसान मुझे लगता है कि काफ़ी रिलैक्स फील करता है। और अगला गीत आपको सुनवाते हैं ज़िद्दी फिल्म से, हसरत जबर के बोल है, SD बर्मन की मौसीकी है और मोहम्मद रफ़ी की खूबसूरत मखमली आवाज़।

0: समयन आप फिल्म में नगमे समात कर रहे थे और आखिर पर आपने सुना राजेंद्र कृष्ण का लिखा हुआ गीत रवि की मौसीकी में, और इस नगमे को आवाजें दी थी आशा भोसले और मोहम्मद रफी ने। फिल्म का नाम था ये रास्ते हैं प्यार के। ये आकाशवाणी श्रीनगर है, मीडियम वेव 268.81 मीटर और FM 103.5 MHz पर। अब हमारे यहाँ से खबरें नष्ट होंगी।
1: आदाब, ये आकाशवाणी श्रीनगर है। दिन के 12:30 हुए हैं। खबरों का बुलेटिन लेकर मैं आरिफ हुसैन। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा है कि वजीर अजम नरेंद्र मोदी की सरबराही में जम्मू कश्मीर में गवर्नेंस का निज़ाम गुज़श्ता चंद बरसों के दौरान इनकलाबी तब्दीलियों से गुजरा है। SKICC श्रीनगर में पंचायती राज वजारत और जम्मू कश्मीर इंतजामिया के बाहमी इशराक से मुनाकिदा वर्कशॉप

0: सेवा से समृद्धि से खिताब करते हुए मनोज सिन्हा ने कहा कि साल 2020 में महज 35 खिदमात ऑनलाइन दस्तियाब थीं, जबकि 2023 में इनकी तादाद 1100 तक पहुंच गई और इस तरह से जम्मू कश्मीर ने नेशनल ई सर्विस डिलीवरी रैंकिंग में पहला नंबर हासिल किया।
1: तीन वर्ष में मुझे याद है 1100 से ज्यादा सेवाएं यहाँ लोगों को मिलने लगी थी और अनेक बड़े राज्यों को जम्मू कश्मीर ने पीछे छोड़ दिया था। ई सर्विस डिलीवरी की रैंकिंग में नंबर वन जम्मू कश्मीर हो गया मध्य प्रदेश को पीछे छोड़कर। सामान्य नागरिक की सुविधा के लिए ब्लॉक दिवस, थाना दिवस, बैक टू विलेज, ऐसे अनेक कार्यक्रम प्रारंभ हुए थे जिससे आम आदमी को सहूलियत हो सके, उसकी सुनवाई हो सके।
0: भारतीय क्रिकेट टीम के एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजर राजेश धर ने लोक भवन श्रीनगर में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के साथ मुलाकात की। जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन की वर्किंग कमेटी मेंबर कीर्ति धर ने भी उनके साथ थी। इस दौरान जम्मू बेस्ड रिजर्वड कैटेगरी एम्प्लॉयज एसोसिएशन कश्मीर के चेयरमैन विपिन कुमार और अनिल गुप्ता की सरबराही में श्री अमरनाथ जी यात्रा

0: सुनवाई हो सके।
1: भारतीय क्रिकेट टीम के एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजर राजेश धरन कोर लोक भवन श्रीनगर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा सत मुलाकात। जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन के वर्किंग कमेटी मेंबर कीर्ति धर तिम सत दौरान कोर जम्मू बेस्ड रिजर्वड कैटगरी एम्प्लॉज एसोसिएशन कश्मीर चेयरमैन विपिन कुमार तो अनिल गुप्ता सरबरही मज श्री अमरनाथ जी यात्रा वेलफेयर एसोसिएशन के एक वफदन लेफ्टिनेंट गवर्नर मुलाकात। तलीम हज वजीर सकीना युतवन आला तलीम महकम कन अफसर हिदायत दुम डिग्री कॉलेजन अंदर ज्यादा खुद ज्यादा तलब इलम दाखिल यकीनी बनाने सीन तम तकनीकी अहमियत मजमून पर्नान जोन वजीरन वो कॉलेजन मज जारी दाखिल अमल जायज हन बापत बुलान आम अकिस मीटिंग दौरान जलब इलम पापरजी सरकार चन गोड़ अनवारन मज शामिल अत दौरान आला तलीम महकमन जम्मू कश्मीर कन कॉलेजन अंदर तदरीसी वरी सतवह सतवह बापत अंडर ग्रेजुएट तो इंटग्रेटेड पी जी कोर्सन मज दाखिल खातर स्पॉट राउंड ऐलान कोरमुत अम सकन दाखिल दुम राउंड मुकम्मल सपदन पत बाकी सीट पुरवन यथ जम्मू कश्मीर कन कॉलेजन हंद डायरेक्टर डॉक्टर शेख एजाज बशीरन तलब इलम तलकीन कोरमुत तम तुलन स्पॉट राउंड पूर फायद। मुहर्रमुल हराम के आठवीं तारीख के नस्बत आज वादी मज आजादारी हंद जुलूस कड़ान अलम शरीफुक सारे खोत बोड जुलूस श्रीनगर के गुरु बाजर पे डलगेट कुन बरामद कर मुख्तलिफ जिलों पे आमित आजादार बार तदाद शरीक शिरकत करान अकीदत मंद मरसिया खानी तो नवा खानी कर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तो करबला कन शहीदन खराज अकीदत करान इंतजामियान जुलूस जबर पे तो अमन सान मुनद कर बापत हिफाजत माकूल इंतजाम कर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अहतमाम सपुद जम दरमीनी दर्ज तो लौकटन कारखानदारन बापत अख जानकारी कैंप मुनद यथ मज अखत शेठ एम एस एम ई कारखानदारों शिरकत कर अत मौक पे वो तकरीर कर वालों जोकच सनस मुल्क किस इकतदी याद मज अहम रोल नख वालान। इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऊंचपोर कश्मीर के सेंटर फॉर मेंटल हेल्थ एंड वेलनेस के अहतमाम सपुद यूनिवर्सिटी अंदर अके पोस्टर कम्पटिशन सन्ज नशा मुक्त भारत अभियान तहत अमे मुकाबल मौजू से नो टू ड्रग्स फॉर ए बेटर टुमारो अत प्रोग्राम तुल यूनिवर्सिटी हंद रजिस्ट्रार प्रोफेसर शमी मोहम्मद शाहन दास यल जन यूनिवर्सिटी मज मजकूर अभियान नोडल अफसर जी एन डॉक्टर जी एन इतु तथ मौक पे मौजूद तकरीर कर वालों कर् मुनशियात के इस्तेमाल के मुजर असरों नश शरीक जानयाब प्रोग्राम किस अखरस पे आए पोस्टर कम्पटिशन कन फातहन इनाम दिन श्रीनगर डिप्टी कमिश्नर अक्षय लावरून वोनमुत हथियारबंद फौज के जवान मुल्क सालमियत डंजि थान बापत बेलोस खदमत अंजाम दिख मुख्तलिफ कस्म कुर्बानी दिवान तम श्रीनगर जिल सैनिक वेलफेयर बोर्ड किस सुसतमिस यौमित आसीस किस सिलसिलस मज मुनद अकिस तकरीब खिताब करान अक्षय लावरू यम मजकूर बोर्ड सदर तोन जिल इंतजामिया सबक फौजन तो शहीद फौजन हजन आशन हज पापरजी बापत वाद बंद। गांधरबल डिप्टी कमिश्नर जतिन किशोरन हज जिल अफसर हज अख मीटिंग तलब कर मरदमशुमारी हंदिस गोडनिकस मरहल किस पेशरफ्त साम तमो दरकती मनसूब तरतीब दिनस मज मरदमशुमारी हज अहमियत वतलावान यमल कामयाबी सान अंद वातान हिदायत अत वो खबर यह बुलेटिन अंद खुदा हाफिज।
2: मीडियम वेव 268.8 मीटर और एफएम 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी श्रीनगर है। पेश है प्रोग्राम बज़्म-ए-निस्वां।

के कश्मीर मुद्दा उठाने पर कड़ी आपत्ति व्यक्त की है। पाकिस्तान पर संयुक्त राष्ट्र मंच का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाते हुए भारत ने कहा कि साध्यक्ष के रूप में निष्पक्ष रहने के बजाय पाकिस्तान ने पद का दुरुपयोग किया है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने साध्यक्ष के तौर पर पाकिस्तान के आचरण की आलोचना की। पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि आसिम इफ्तिखार अहमद की टिप्पणियों के जवाब में पी हरीश ने जम्मू कश्मीर पर भारत के लंबे समय से चले आ रहे रुख को दोहराया। उन्होंने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर पूरी तरह से भारत का आंतरिक मामला है। ईरान के तेहरान में भारतीय दूतावास ने सुरक्षा स्थिति में सुधार को देखते हुए भारतीय नागरिकों के लिए संशोधित परामर्श जारी किया है। दूतावास ने कहा कि बदलते घटनाक्रमों के बावजूद भारतीय नागरिकों को अगली सूचना तक सभी गैर जरूरी यात्राओं से बचना चाहिए। देश में रह रहे भारतीय नागरिकों और बहुत आवश्यक होने पर ईरान यात्रा करने वालों को अत्यधिक सावधानी तथा

0: सतर्कता बरतने और स्थिति पर लगातार नजर रखने की सलाह दी गई है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो 3 दिन की खाड़ी क्षेत्र की यात्रा पर हैं। इसका उद्देश्य ईरान के साथ हुए नए संवाद और समझौते के बाद प्रमुख अरब सहयोगियों को विश्वास दिलाना है। 4 महीने से चल रहे पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने के लिए अमेरिका ने ईरान के साथ नया समझौता किया है। यात्रा से पहले श्री रूबियो ने कहा कि उनकी यात्रा का उद्देश्य ईरान और अमेरिका की बातचीत में खाड़ी देशों की राय को महत्व देना है। उन्होंने कहा कि किसी भी समझौते के अंतर्गत ईरान को होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले जहाजों पर टोल लगाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। उन्होंने टोल वसूली को अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ बताया। आज पासपोर्ट सेवा दिवस है। ये दिन 24 जून 1967 को पासपोर्ट अधिनियम के लागू होने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इस अवसर पर विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि पासपोर्ट सेवा कार्यक्रम के दूसरे चरण का क्रियान्वयन चिप आधारित ई पासपोर्ट की शुरुआत, नए पासपोर्ट सुरक्षा केंद्रों और पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र की स्थापना तथा रिकॉर्ड स्तर पर पासपोर्ट जारी करने से यात्रा सुगम हो रही है। भारी उद्योग मंत्री एचडी कुमार स्वामी ने इस्पात उद्योग से भविष्य के विकास के लिए डिजिटलीकरण अपनाने को कहा है। आज नई दिल्ली में इस्पात क्षेत्र में डिजिटलीकरण पर आयोजित चिंतन शिविर में उन्होंने ये बात कही। इस्पात क्षेत्र के मजबूत प्रदर्शन का उल्लेख करते हुए श्री कुमार स्वामी ने कहा कि देश वर्ष 2018 से विश्व के दूसरे सबसे बड़े इस्पात उत्पादक के रूप में अपनी मजबूत स्थिति बनाए हुए है। प्रवर्तन निदेशालय मुंद्रा बंदरगाह से 3000 किलोग्राम मादक पदार्थ आयात मामले से जुड़े धनशोधन मामले में दिल्ली के 5 स्थानों पर तलाश अभियान चला रहा है। निदेशालय के अधिकारियों ने बताया कि ये तलाशी हरप्रीत सिंह तलवार, शम शुदरुन और उनके सहयोगियों से जुड़े परिसरों पर की जा रही है। अधिकारियों ने बताया कि मादक पदार्थ से प्राप्त धन का कथित तौर पर दिल्ली के नाइट क्लबों में निवेश किया गया था। आवास और शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सेंट्रल विस्टा कॉरिडोर के लिए केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन पर निर्माण कार्य का शुभारंभ किया। संवाददाताओं से बात करते हुए उन्होंने इस क्षण को ऐतिहासिक बताया और कहा कि ये परियोजना आवागमन को सुगम बनाएगी।
1: बहुत ही ऐतिहासिक मूवमेंट है जब देश की राजधानी जहां से पूरी सरकार चलनी है सेंट्रल विस्टा और यहां के कर्मचारी और यहां के जितने भी कार्यालयों में काम करने वाले सब लोग उनको एक ऐसी सुविधा प्रदान करने के लिए अष्टमी पूजन अथवा ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी आज ये की गई है और ये जब कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद दिल्ली के बहुत से छोर आपस में जहां जहां मेट्रो लाइन चलती है उनको ये जोड़ेगी। अब ये जो लाइन है ये आर के आश्रम से लेकर के और इंद्रप्रस्थ तक जिसके अंदर 9 स्टेशन्स है।
0: घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में लगभग 0.7% की वृद्धि दर्ज की गई। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 603 अंक के उछाल के साथ 76,804 पर जबकि निफ्टी 154 अंक बढ़कर 23,978 पर कारोबार कर रहा था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Abhishek Mukhopadhyay. India strongly objected to Pakistan raising the Kashmir issue at a United Nations forum, accusing Islamabad of politicizing the platform, also slammed it for misusing its position as co-chair instead of being unbiased as behooves the position. The remarks were made by India's permanent representative to the UN in New York, P. Harish, in response to comments by Pakistan's permanent representative, Asif Iftikhar Ahmed. Responding to Pakistan's intervention, Mr. Harish criticized the conduct of the co-chair and reiterated India's long-standing position on Jammu and Kashmir. He added that Union territory of Jammu and Kashmir is a matter strictly internal to India. National security advisors and senior security officials from the BRICS nations called for stronger cooperation to address the widening range of global security challenges, including terrorism and cyber threats, during a high-level meeting hosted by India in the national capital. Speaking at the meeting, National Security Advisor Ajit Doval stressed the need for collective deliberation and cooperation.

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
0: आप सभी श्रोताओं को आपके साथी अजीत का नमस्कार, जय जोहार, जय हिंद। श्रोताओं आइए सबसे पहले सुनते हैं आज का सुविचार जो हमें भेजा है जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलव दास, जयदास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतीम बाई मानिकपुरी जी ने। लिखते हैं, शांत रहना कमजोरी नहीं, ये समझदारी की निशानी है, क्योंकि हर जवाब

शब्दों से ही नहीं लेकिन व्यवहार से भी दिया जाता है। इतने सुंदर विचार के लिए आप सबको उमंग कार्यक्रम की ओर से हमारा आभार। और आइए सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है मगरपारा बिलासपुर से वसीम जाटव, अकरम जाटव, आफताब जाटव, महताब जाटव, मिराज जाटव और अल्ताफ जाटव। भटीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता, कमला देवी गुप्ता, पंकज, आयुषी और मीहू। जेल रोड कानपुर से सरफुद्दीन फातिमा थापा, वसीम अकरम बेलदार और डब्ल्यू सोनम कुटरिया। भदोही उत्तर प्रदेश से राजेश कुमार विद्यार्थी और उनकी छोटी बहन कोमल। तो श्रोताओं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। जैसा कि हम हर बार कहते हैं इस बार भी कहेंगे कि जुड़े रहिए आपके प्रिय कार्यक्रम उमंग से। और आइए अब चलते हैं आज की श्रृंखला ये भी जानिए कि अगली कड़ी में। श्रोताओं जहां तक गुफाओं की बात है, लगभग सभी अजंता और एलोरा की गुफाओं से परिचित हैं, लेकिन उमंग कार्यक्रम में हमारा उद्देश्य है उन जानकारियों को उपलब्ध कराना जो लोक संज्ञान में कम है लेकिन पुरातत्व और इतिहास की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। जी तो श्रोताओं कल हमने बात की थी भीम बैठका की गुफाओं के बारे में, आज हम बात करेंगे कुटुम्बसर की गुफाओं के बारे में। कुटुम्बसर की गुफाओं को भारत की सबसे लंबी प्राकृतिक गुफाओं में गिना जाता है। तो आइए जानते हैं कि ये गुफाएं कहाँ स्थित हैं। श्रोताओं ये गुफाएं स्थित हैं छत्तीसगढ़ राज्य के कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में, जगदलपुर से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर। ये गुफाएं भूमि से लगभग 35 से 40 मीटर नीचे हैं। ये अत्यंत प्राचीन गुफाएं हैं, लेकिन श्रोताओं जब भी हम ऐसे स्थानों की बात करते हैं तो ये जिज्ञासा जरूर मन में आती है कि इनकी खोज कैसे हुई। तो आपको बता दें कि कुटुम्बसर गुफा का जनजातीय नाम गोपनसर था। सन 1951 की बात है, कुछ स्थानीय चरवाहे एक साही का पीछा कर रहे थे। पीछा करते करते वे एक ऐसी जगह पर पहुंचे जहां ढेर सारी झाड़ियां थीं, पत्थर भी थे। जब उन्होंने झाड़ियों को थोड़ा हटाया तो क्या देखते हैं कि वहां एक बहुत बड़ी गुफा का प्रवेश द्वार है। जी चरवाहे उस गुफा की बनावट देखकर हैरान रह गए क्योंकि वहां चट्टानों के आकार विचित्र थे। वे अद्भुत आकार के थे, जैसे किसी ने उन्हें तराश कर बनाया हो। तो आइए जानते हैं कि उन पत्थरों को तराशने वाला कौन था। श्रोताओं यही तो खास और बड़ी अनोखी बात है कुटुम्बसर की गुफाओं के बारे में। जब विशेषज्ञ यहाँ पर आए तो उन्होंने पता लगाया कि चट्टानों को तराशने वाली प्रकृति ही थी। यहाँ पानी हमेशा टपकता रहता है। पानी के लाखों वर्षों से टपकते रहने के कारण इन चट्टानों को आकार मिला। यहाँ की चट्टानें चूना पत्थर से बनी है। श्रोताओं इन गुफाओं में कुछ आकृतियां तो ऐसी हैं जो किसी पशु, मुख्य रूप से हाथी, बाघ, विशाल मानव आकृति और शिवलिंग की तरह भी दिखाई देती हैं। जरा सोचिए श्रोताओं, कैसे इन आकृतियों को प्रकृति ने लाखों वर्षों से पानी की बूंदें टपकाकर बनाया, अद्भुत है ना। जी किसी ने लिखा है कि यदि प्रकृति को शिल्पकार के रूप में देखना है तो कुटुम्बसर की गुफाओं में जरूर जाइए। इन गुफाओं के ऊपर भूमि में कई भूमिगत जल के झरने हैं जहां से निरंतर पानी की बूंदें गिरती रहती हैं। वैज्ञानिकों ने इन गुफाओं में अनेक दुर्लभ जीवों के जीवाश्म भी ढूंढे हैं। एक बात और आपको बता दें श्रोताओं कि इन गुफाओं के अंदर हमेशा घुप अंधेरा रहता है। वहां जाने के लिए पर्यटक गाइड्स और शक्तिशाली बैटरियों वाले लैंप्स लेकर ही जाते हैं। अंदर पानी बहता रहता है, लेकिन एक बड़ी रोचक बात है इन गुफाओं की। आपको बताएं क्या है वो? वो ये कि यहां के पानी में जो मछलियां पाई जाती हैं वे अंधी होती हैं, देख नहीं पाती। यहां के अन्य जलज प्राणी भी देख नहीं सकते। लेकिन एक सवाल है श्रोताओं कि भला ऐसा क्यों है, ना ये बड़ी अजीब बात। जी हां श्रोताओं, वैज्ञानिकों के अनुसार यहां हमेशा अंधकार रहता है। इससे संभवतः मछलियों और जलज जीवों की आंखें तो हैं लेकिन उनमें देखने की क्षमता का विकास नहीं हुआ, या फिर धीरे धीरे देखने की क्षमता समाप्त हो गई। एक सिद्धांत यह भी है कि पीढ़ी दर पीढ़ी अंधकार में रहने के कारण उनकी आंखें पूर्ण विकसित नहीं हुई, लेकिन दूसरी इंद्रियां अधिक विकसित हो गईं। मछलियां पानी में कंपन, स्पर्श और रासायनिक संकेतों जैसे गंध इत्यादि के माध्यम से रास्ता और भोजन तुरंत पहचान लेती हैं। इसलिए श्रोताओं कुटुम्बसर की मछलियों को दुनिया भर में ब्लाइंड केव फिशेस के नाम से भी जाना जाता है। और हां इन गुफाओं की एक और बड़ी खास बात है, यहां के कुछ भागों में यदि फुसफुसा करके भी कुछ कहा जाए तो बड़ी दूर तक ये आवाज सुनाई पड़ती है। श्रोताओं यहां पर कार्यकर्ता इको या गूंज का सिद्धांत। श्रोताओं ये कहा जा सकता है कि ये गुफाएं वैज्ञानिकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यहां के जंतु विकासवाद और

0: विज्ञान के अध्ययन में महत्वपूर्ण है। तो श्रोताओं, ये थी जानकारी भारत की एक और रहस्यपूर्ण और अनोखी गुफा कुटुम्बसर के बारे में। अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। हमारा आज का प्रश्न है, कुटुम्बसर की गुफाओं में फुसफुसाकर बोलने पर भी आवाजें साफ साफ क्यों सुनाई देती हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए, कुटुम्बसर की गुफाओं में फुसफुसाकर बोलने पर भी आवाजें साफ साफ क्यों सुनाई देती हैं? आप हमें हमारे IVRS नंबर 8804405559 पर या ईमेल पर यानी audio@ciet.nic.in पर इस प्रश्न का उत्तर भेज सकते हैं। और हाँ, एक्स, इंस्टा, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं। और आइए अब सुनते हैं आज के हमारे ज्ञान और मनोरंजन से भरपूर शैक्षिक कार्यक्रम। तो सबसे पहले सुनते हैं कार्यक्रम लीव्स ऑन द ट्री आर फॉलिंग। श्रोताओं, अंग्रेजी का ये सुंदर गीत पतझड़ और वसंत के मौसमों के बीच की प्रकृति की सुंदरता का वर्णन करता है और विशेषकर संदेश देता है कि हमें प्रकृति का अवलोकन करके उनके सौंदर्य की प्रशंसा करनी चाहिए। ऐसा करके हम प्रकृति से बहुत कुछ सीख सकते हैं। द लीव्स ऑन द ट्रीज।
1: चिल्ड्रन, हैव यू एवर सीन द लीव्स ग्रोइंग इन द ट्री? द न्यू टेंडर लीव्स स्पर्टिंग आउट फ्रॉम द ब्रांचेस लाइक द फ्लावर्स ब्लॉसमिंग? Yes, we want to see them as the flowers blossom and leaves grow. But we never see them growing closely. Here is a song which makes you feel that you notice the growing of leaves and blossoming of flowers. Come on, let's sing the song to know and notice. But before we sing it, let's recite the song. Repeat after me, all right?
2: Yes!
1: The leaves on the trees are turning green, turning green, turning green.
2: The leaves on the trees are turning green, turning green, turning green.
1: The leaves on the trees are turning green, grow, grow, grow.
2: The leaves on the trees are turning green, grow, grow, grow.
1: Very nice. The flowers on the trees are beautiful, beautiful, beautiful.
2: The flowers on the trees are beautiful, beautiful, beautiful.
1: The flowers on the trees are beautiful, busy, busy bees.
2: The flowers on the trees are beautiful, busy, busy bees.
1: The leaves on the trees are falling down, falling down, falling down.
2: The leaves on the trees are falling down, falling down, falling down.
1: The leaves on the trees are falling down, yellow, red and brown.
2: The leaves on the trees are falling down, yellow, red and brown.
1: Yes, and now the leaves on the trees have fallen down, fallen down, fallen down.

0: इस खूबसूरत गीत के बाद आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम। हमारा अगला कार्यक्रम है फादर डॉक्टर कामिल बुल्के। ये कार्यक्रम हिंदी साहित्य के प्रकांड विद्वान डॉक्टर कामिल बुल्के के जीवन और उनके द्वारा हिंदी साहित्य को दिए गए योगदान के बारे में, विशेषकर तुलसी साहित्य में उनके द्वारा लिखे गए शोध की विस्तार से जानकारी देता है।
1: यूरोप के पश्चिमी भाग में एक छोटा लेकिन खूबसूरत देश है बेल्जियम। बेल्जियम में एक प्रांत है फ्लैंडर्स। इस प्रांत में एक छोटा सा शांत और सुंदर शहर है रम्स कपेला। 1 सितंबर 1909 को अडोल्फ और मारिया बुल्के के घर में एक बालक का जन्म हुआ। माता पिता ने बड़े प्रेम से उसका नाम रखा कामिल बुल्के।
2: कामिल का अर्थ होता है पूजा की वेदी और बुल्के का अर्थ है सुगंधित पुष्प। और सच में जैसा कि नाम था, उन्होंने अपने नाम को शत प्रतिशत चरितार्थ किया। बचपन से ही उनकी गहरी रुचि अध्यात्म और साहित्य में दिखाई देने लगी थी। माता पिता अक्सर उनके बारे में बातचीत किया करते।
3: मारिया, क्या तुम्हें नहीं लगता कि कामिल का अध्यात्म की ओर कुछ ज्यादा ही झुकाव है?
2: मुझे तो अब ये लगने लगा है कि यदि ऐसा ही रहा तो एक दिन वो चर्च में सन्यासी बन जाएगा।
3: मुझे भी ऐसा ही लगता है।
2: स्कूली शिक्षा के बाद उन्होंने ल्यूवेन विश्वविद्यालय से सिविल इंजीनियरिंग में बीएससी डिग्री प्राप्त की और 1930 में स्पष्ट दिव्य अनुभूति प्राप्त होने पर शिक्षक और पुरोहित बनाने वाले जेसुइट समाज में शामिल हो गए।
1: 6 नवंबर 1935 को 17 दिनों की समुद्री यात्रा के बाद वो बंबई आ गए, जो अब मुंबई है। उन्होंने भारत को अपने कर्म स्थली के रूप में चुना।
2: उन्होंने भारत भूमि को नमन किया। ये गोस्वामी तुलसीदास जी की भूमि है। दरअसल अपनी पढ़ने की आदत के कारण बेल्जियम में ही उन्होंने तुलसीदास जी की कई चौपाइयों का जर्मन अनुवाद पढ़ा था।
1: उनमें से एक चौपाई से वो बहुत प्रभावित हुए। चौपाई थी, धन्य जन्मु जग तीतल तासु, पितहि प्रमोद चरित सुनि जासु।
2: अर्थात उस बेटे का जीवन धन्य है जिसका यश और कीर्ति सुनकर पिता आनंदित होता है। इन पंक्तियों से वे इतने प्रभावित हुए कि कवि तुलसीदास जी के अनन्य भक्त बन गए। उन्होंने लिखा था,
4: विश्व साहित्य में माता और पुत्र के संबंधों की

0: बहुत सारी चर्चा मिल जाएगी, लेकिन पिता पुत्र के संबंधों की ऐसी व्याख्या और ऐसा ऊंचा आदर्श मुझे सिर्फ भक्त कवि तुलसीदास जी की रामायण में ही मिला।
1: भारत आने पर उन्होंने जो देखा उसने उनके संपूर्ण जीवन के चिंतन और दर्शन को एक नया आयाम दे दिया। उन्होंने अपने भारत आगमन के समय को याद करते हुए अपनी एक पुस्तक एक ईसाई की आस्था राम कथा और हिंदी में लिखा है,
0: 1935 में मैं जब भारत पहुंचा मुझे ये देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि रास्ते में सभी संकेत पट्टों पर सूचनाएं और स्थानों के नाम अंग्रेजी में थे। मैंने ये जाना कि अनेक शिक्षित लोग अपनी सांस्कृतिक परंपराओं से अनजान थे और इंग्लिश में बोलना गर्व की बात समझते थे। मैंने विचार किया कि मैं हिंदी भाषा में सिद्धता को प्राप्त करने का पूरा प्रयास करूंगा। हिंदी स्थानीय और जनजातीय भाषाओं में जो ज्ञान प्रणाली और सीखने की सामग्री अंतर्निहित है उनके संरक्षण और पुनरुत्थान से ही हमारा विकास संभव है।
1: मुंबई से वे दार्जिलिंग गए और अल्प प्रवास के बाद अंततः गुमला आ गए जो आज के झारखंड राज्य में है। उन्होंने गुमला के सेंट इग्नेसियस विद्यालय में 3 साल तक गणित और भौतिकी पढ़ाया और हिंदी की कक्षा में अपने ही विद्यार्थियों को सहपाठी बनाकर हिंदी सीखने लगे। गणित पढ़ाने के बाद वे हिंदी की कक्षा में सबसे पीछे बैठ जाते थे और पूरी तन्मयता से हिंदी सीखते थे।
2: हिंदी के मूल रूप को समझने के लिए धीरे धीरे उन्होंने ब्रजभाषा और अवधी भी सीखी।
1: रांची आकर वे कुछ समय के लिए सन 1938 में झारखंड के ही एक शहर हजारीबाग गए और सेंट कोलंबस कॉलेज में पंडित बद्रीदत्त शास्त्री के निर्देशन में संस्कृत और स्वामी तुलसीदास की 2 प्रमुख रचनाओं रामचरितमानस और विनय पत्रिका का गहन अध्ययन करने लगे।
2: फिर उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्वतंत्र परीक्षार्थी के रूप में स्नातक की उपाधि प्राप्त की और उच्च अध्ययन के अभिप्राय से वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय पहुंचे और वहां के हिंदी विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर धीरेंद्र वर्मा से मिले।
3: आइए आइए फादर बुलके, आपका स्वागत है।
0: जी डॉक्टर धीरेंद्र, आपके स्वागत से मैं अनुग्रहित और कृतार्थ हुआ। मेरी हार्दिक अभिलाषा है कि मैं हिंदी में अपना स्नातकोत्तर अध्ययन इलाहाबाद विश्वविद्यालय से करूं।
3: ठीक है, लेकिन उम्मीदवार की कुछ परीक्षा तो लेनी ही होगी।
0: जी मैं प्रस्तुत हूं।
3: तो फादर, मैं चाहता हूं कि आप तुलसीदास जी की विनय पत्रिका के 2 पदों की इसी समय सप्रसंग व्याख्या करें। ये लीजिए।
0: जी अवश्य।
1: फादर कामिल बुलके ने कुछ ही देर में उन पदों की लिखित व्याख्या कर दी। इस यूरोपीय श्वेत वर्णीय ईसाई पुरोहित को डॉक्टर वर्मा ने प्रारंभ में नौसिखिया समझा था, लेकिन जब उन्होंने व्याख्या पढ़ी तो
4: ओह अद्भुत। तो फादर, अब विलंब कैसा? आप इसी समय से विश्वविद्यालय के हिंदी संकाय में अध्ययन के लिए आमंत्रित हैं।
0: धन्यवाद डॉक्टर धीरेंद्र, ये मेरा सौभाग्य होगा। जी।
1: स्नातकोत्तर अध्ययन के बाद फादर कामिल बुलके ने फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने डॉक्टर धीरेंद्र वर्मा की प्रेरणा से

0: डॉक्टर माता प्रसाद के निरीक्षण में शोध कार्य किया।
1: इससे जुड़ी एक बड़ी रोचक घटना है। फादर कामिल बुल्के चाहते थे कि उनका शोध हिंदी में प्रकाशित हो, लेकिन उन दिनों सभी शोध अंग्रेजी में ही हुआ करते थे।
0: उन दिनों इलाहाबाद विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर अमरनाथ झा थे। फादर कामिल बुल्के ने इसके लिए विश्वविद्यालय के कुलपति से मिलने का समय मांगा।
2: क्या मैं अंदर आ सकता हूँ कुलपति?
3: आइए आइए फादर बुल्के। मुझे बताया गया है कि राम कथा पर आपका शोध बहुत अच्छा बन पड़ा है। आपने इसमें बहुत से नए आयाम भी जोड़े हैं।
2: जी कुलपति महोदय, मैं अपने शोध पत्र को प्रकाशित करने के बारे में ही आपसे विमर्श करने आया हूँ।
3: जी जी,
2: मैं चाहता हूँ कि मुझे अपने शोध पत्र को देवनागरी में प्रकाशित करने की अनुमति दी जाए।
3: मगर

0: पुलकिनी इसके लिए विश्वविद्यालय के कुलपति से मिलने का समय मांगा।
1: क्या मैं अंदर आ सकता हूँ कुलपति?
2: आइए आइए फादर बुलके। मुझे बताया गया है कि राम कथा पर आपका शोध बहुत अच्छा बन पड़ा है। आपने इसमें बहुत से नए आयाम भी जोड़े हैं।
1: जी कुलपति महोदय, मैं अपने शोध पत्र को प्रकाशित करने के बारे में ही आपसे विमर्श करने आया हूँ।
2: जी जी,
1: मैं चाहता हूँ कि मुझे अपने शोध पत्र को देवनागरी में प्रकाशित करने की अनुमति दी जाए।
2: मगर फादर, आप जानते हैं कि विश्वविद्यालय के नियमानुसार शोध पत्र सिर्फ अंग्रेजी में ही प्रकाशित किए जा सकते हैं।
1: कुलपति महोदय, जैसा कि आपको ज्ञात है, मेरा शोध का विषय ही राम कथा की उत्पत्ति और विकास है।
2: जी,
1: मैं दृढ़ता से विश्वास करता हूं राम कथा और तुलसी की आत्मा के विराट सौंदर्य के दर्शन केवल और केवल उनकी मातृभाषा में ही हो सकते हैं।
2: जी, मैं आपकी भावनाओं का सम्मान करता हूं फादर पुलके।
1: तो मैं आपकी इस प्रतिक्रिया को एक सकारात्मक उत्तर के रूप में देखने की अपेक्षा करता हूं।
2: जी,
0: तो फिर क्या था? विश्वविद्यालय की अकादमिक परिषद की सभा बुलाई गई और लंबे विचार विमर्श के बाद नियमावली में विधिवत परिवर्तन किया गया। फादर का ये अनुरोध मान लिया गया। भारत के शोध परिदृश्य में ये एक महत्वपूर्ण घटना थी, क्योंकि इसके द्वारा देवनागरी में शोध प्रबंध लिखने का रास्ता सबके लिए साफ हो गया और आदिवासी भाषाओं में भी पीएचडी स्तर तक पढ़ाई होनी शुरू हो गई।
3: उन्होंने राम और राम कथा के बारे में अपने शोध ग्रंथ में लिखा है।
1: देखिए, राम वाल्मीकि कथा के मिथकीय पात्र नहीं हैं, बल्कि वे तो इतिहास पुरुष हैं, जिनकी व्याप्ति सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में है। रामायण सिर्फ धार्मिक साहित्य ही नहीं है बल्कि जीवन जीने के तरीके का दस्तावेज है।
0: उनके शोध की विशेषता ये है कि उन्होंने रामायण से संबंधित किसी भी विषय को छोड़ा नहीं है। हिंदी के अतिरिक्त उन्होंने तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, बांग्ला, कश्मीरी, सिहली आदि भाषाओं के साहित्य में भी उपलब्ध राम कथा की गहन छानबीन की है।
3: उन्होंने तेलुगु में रचित श्री रंगनाथ रामायण और महर्षि कंबन द्वारा तमिल में रचित कंब रामायण को भी संदर्भित किया। चार भागों में विभक्त 600 पृष्ठों में छपी उनकी ये थीसिस एक प्रतिनिधि शोध ग्रंथ साबित हुई और भारत सहित पूरे विश्व में विभिन्न भाषाओं में प्रकाशित हुई। इसके बाद सारी दुनिया फादर बुलके को जानने लगी।
0: अब जहां भी राम कथा होती, फादर कामिल बुलके का नाम वक्ताओं की सूची में सबसे ऊपर होता। उन्होंने देश भर में राम कथा पर व्याख्यान दिए। वे कहा करते थे,
1: सब हैं नचावत राम गोसाई, मोहे नचावत तुलसी गोसाई।
0: सन 1950 में उन्हें बहुत सम्मान पूर्वक भारत की नागरिकता प्रदान की गई। इसी वर्ष वे रांची के सेंट जेवियर कॉलेज के हिंदी और संस्कृत विभाग के अध्यक्ष बना दिए गए और आजीवन उसी पद पर रहे। वे हमेशा अपने विद्यार्थियों को उनकी अपनी भाषा में ही बातचीत करने हेतु प्रोत्साहित करते थे।
3: सबसे मशहूर अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश लिखने वाले फादर कामिल बुलके ही हैं। 30 वर्षों की उनकी हिंदी साधना का जीवंत दस्तावेज उनका शब्दकोश माना जाता है।
0: उन्होंने इसमें 40,000 शब्द जोड़े और उसे प्रशासनिक, वैज्ञानिक और तकनीकी दृष्टि से अद्यतन करते रहे। फादर कामिल बुलके बहुभाषाविद थे। वो अपनी मातृभाषा फ्लेमिश के अतिरिक्त अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, लैटिन, ग्रीक, संस्कृत

0: और हिंदी पर भी संपूर्ण अधिकार रखते थे। इन भाषाओं के ज्ञान के कारण ही उन्हें शब्दकोश बनाने में बहुत सहायता मिली। उन्होंने लिखा था,
1: जब मैं अपने जीवन पर विचार करता हूं तो मुझे लगता है ईसा मसीह, हिंदी और तुलसीदास ये वास्तव में मेरी आध्यात्मिक साधना के तीन प्रमुख घटक हैं और मेरे लिए इन तीन तत्वों में कोई विरोध नहीं है बल्कि गहरा संबंध है। मैं ईसा मसीह का परम भक्त हूं, हिंदी मेरा अनुराग है और गोस्वामी तुलसीदास मेरी प्रेरणा।
0: कामिल बुल्के की हिंदी सेवाओं के लिए 1974 में भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया। जब लोग उन्हें फादर कहते तो वे किंचित संकोच से बोल उठते,
1: फादर अंग्रेजी शब्द है, यदि मुझे कामिल बाबा कहो तो सचमुच मुझे बहुत अच्छा लगेगा।
0: 17 अगस्त 1982 को दिल्ली में इस अद्भुत शोध शिल्पी, राम कथा अनुरागी, बहुभाषाविद और हिंदी भाषा के अनन्य सेवक का निधन हो गया। उनकी मृत्यु शैया पर मात्र 2 पुस्तकें थीं, बाइबल और गोस्वामी तुलसीदास जी की विनय पत्रिका। उन्हें दिल्ली में ही दफनाया गया।
2: 36 साल बाद वर्ष 2018 में पद्म भूषण फादर कामिल बुल्के का पार्थिव अवशेष दिल्ली से उनकी कर्मभूमि रांची लाया गया। उनके अवशेष को पूरे सम्मान के साथ रांची सेंट जेवियर कॉलेज में दफनाया गया।
0: महान शब्द शिल्पी और हिंदी साहित्य के इस पुरोधा फादर कामिल बुल्के बाबा को हमारा आभार सहित शत शत नमन।
3: डॉक्टर कामिल बुल्के, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम, और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने साथी अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
4: उमंग उमंग उमंग उमंग।
5: समय आप समाप्त कर रहे थे NCERT का तैयार करदा स्पॉन्सर्ड तालीमी प्रोग्राम उमंग। ये आकाशवाणी श्रीनगर है।
6: कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर, आवाज जो आपके कारोबार को एक नई उड़ान दे। क्या आप चाहते हैं कि आपकी सोच, आपका कारोबार हर दिल में जगह बनाए? तो देर किस बात की, राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर के साथ और अपने बिजनेस को दीजिए एक नई उड़ान, एक नई पहचान।
5: मीडियम वेव 268.8 मीटर और FM 103.5 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी श्रीनगर है। आई समीन संतोष आनंद के बोल सुनते हैं। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की मौसिकी है, लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजें हैं। फिल्म का नाम है रोटी कपड़ा और मकान।

जी दोस्तों, ये था फिल्म रोटी कपड़ा और मकान का नकमा। संतोष आनंद के बोल थे, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की मौसीकी थी, लता मंगेशकर, मुकेश और साथियों की आवाज़ें थी। और अब अगला गीत सुनते हैं, ये है फिल्म रोजा से, पीके मिश्रा के बोल है, ए आर रहमान की मौसीकी है।

0: दोस्तों ये आकाशवाणी श्रीनगर है, मीडियम वेव 268.8 मीटर और FM 103.5 मेगाहर्ट्ज पर। 1:50 हो रहे हैं। अब हम आकाशवाणी दिल्ली से उर्दू खबरें और ठीक 2 बजे मिड डे न्यूज रिले करेंगे, जरा सा इंतजार कीजिए।
1: आदाब, ये आकाशवाणी है, खबरों के साथ मैं फैसल खान। भारत ने अक़्वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल में पाकिस्तान की जानिब से कश्मीर का मामला उठाने पर सख्त एहतजाज किया है और इल्ज़ाम लगाया कि पाकिस्तान मुआविन सदर की अपनी पोजीशन का गलत इस्तेमाल कर रहा है। तेहरान में भारतीय सफारतखाने ने भारतीय शहरियों के लिए नए सिरे से एडवाइजरी जारी की है और ये भी कहा कि वह ईरान का गैर ज़रूरी सफ़र करने से गुरेज जारी रखें। भारतीय मौसमियात महकमे ने आज कोंकण और गोवा में बहुत शदीद बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है और अरुणाचल प्रदेश के हिस्सों में शदीद बारिश के बाद अचानक सैलाब के पेश नज़र आसाम में हाई अलर्ट कर दिया गया है। हॉकी इंडिया ने आइंदा माह शुरू होने वाले बरतानिया के दौरे के लिए 24 रुकनी जूनियर खवातीन टीम का ऐलान किया है और फीफा आलमी कप में आज मैक्सिको में कोलम्बिया ने DR कोंगो को 1-0 से हराकर प्री क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। अब खबरें तफसील से। भारत ने अक़्वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान की जानिब से कश्मीर का मामला उठाए जाने पर यह कहते हुए सख्त एतराज जाहिर किया कि उसने इस प्लेटफॉर्म को सियासत के लिए इस्तेमाल करना जारी रखा है और पाकिस्तान की इस बात के लिए भी शदीद नुक्ताचीनी की है कि उसने मुआविन सदर की अपनी पोजीशन को गलत तौर पर इस्तेमाल किया है, बजाय इसके कि उसे एक इस मुकाम पर रहते हुए इस तरह की हरकत नहीं करनी चाहिए।

0: इस मौके पर वजीर खारजा डॉ एस जयशंकर ने कहा कि दूसरे पासपोर्ट सेवा प्रोग्राम चिप वाले ई पासपोर्ट की शुरुआत नए पासपोर्ट सेवा केंद्र और डाकखाने के पासपोर्ट सेवा केंद्र और रिकॉर्ड तादाद में पासपोर्ट जारी किए जाने से सफर में आसानी पैदा हुई है, आलमी मौकों तक रसाई में तौसी हुई है और शहरियों को बाख्तियार बनाया गया है। भारत के मौसमियात के महकमे ने आज कोंकण और गोवा में तेज से बहुत तेज बारिश होने का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले दो दिन के दौरान साहली कर्नाटक और मध्य महाराष्ट्र में भी इसी तरह के हालात रहने का इम्कान है। महकमे ने इस महीने की 29 तारीख तक आसाम, मेघालय, अंदरूनी कर्नाटक, उड़ीसा, तेलंगाना, मगरबी बंगाल और सिक्किम में मूसलाधार बारिश की पेशगोई की है। मौसमियात के महकमे ने हफ्ते के दिन तक दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में गरज चमक के साथ तेज हवाएं चलने का इम्कान जाहिर किया है। अमेरिका के वजीर खारजा मार्को रूबियो ने खलीजी खित्ते का 3 रोजा दौरा शुरू किया। इस दौरे का मकसद अमेरिका के ईरान के साथ तय पाने वाले समझौते के बाद अपने अरब साथी मुल्कों को फिर से एतमाद में लेना है। अमेरिका, इसराइल और तेहरान के दरमियान 4 महीने से जारी लड़ाई के बाद अमेरिका ने ईरान के साथ समझौता किया है। हॉकी इंडिया ने आइंदा माह शुरू होने वाले बरतानिया के दौरे के लिए 24 रुकनी जूनियर खवातीन टीम का ऐलान किया है। यह दौरा 5 जुलाई से 14 जुलाई तक होगा। नए कोच टिम व्हाइट की निगरानी में टीम स्कॉटलैंड और इंग्लैंड में 7 मुकाबले खेलेगी, जो आइंदा बैन अल-अक़वामी की तैयारी का एक हिस्सा होगा, जिसमें जूनियर एशिया कप भी शामिल है। टीम की कप्तान खैदम शिलेमा चानू करेंगी, जबकि निधि और एंजली हर्षा रानी मिंज 2 गोलकीपर होंगी। नौरोज के इस दौरे का आगाज स्कॉटलैंड की सीनियर खवातीन की टीम के साथ 2 मुकाबलों से होगा। फीफा वर्ल्ड कप में कोलंबिया ने आज मेक्सिको के ग्वाडा लाजारा में ग्रुप के मैच में डीआर कांगो को 1-0 से शिकस्त देकर प्री क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। इससे कबल अमेरिका के शहर ह्यूस्टन में ग्रुप के मुकाबले में पुर्तगाल ने उज्बेकिस्तान को 5-0 से हरा दिया। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। भारत ने अक़्वामे मुत्तहिदा सलामती कौंसिल में पाकिस्तान की जानिब से कश्मीर का मामला उठाने पर सख्त एहतजाज किया है और इल्जाम लगाया है कि पाकिस्तान मुआविन सदर की अपनी पोजीशन का गलत इस्तेमाल कर रहा है। तेहरान में भारतीय सफारतखाने ने भारतीय शहरियों के लिए नए सिरे से एडवाइजरी जारी की है और ये भी कहा कि वो ईरान का गैर जरूरी सफर करने से गुरेज करें। भारतीय मौसमियात महकमे ने आज कोंकण और गोवा में बहुत शदीद बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश के हिस्सों में शदीद बारिश के बाद अचानक सैलाब के पेश नजर आसाम में हाई अलर्ट जारी कर दिया है। हॉकी इंडिया ने आइंदा माह शुरू होने वाले बरतानिया के दौरे के लिए 24 रुकनी जूनियर खवातीन टीम का ऐलान किया है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: Good afternoon, this is Akashvani and I am Abhishek Mukhopadhyay with the Midday News. The headlines. India lodges strong protest against Pakistan over Kashmir issue at UNSC, accuses Islamabad of misusing its position as co-chair. Indian Embassy in Tehran issues revised advisory for Indian nationals to continue to avoid all non-essential travel to Iran. IMD issues red alert for very heavy rainfall over Konkan and Goa today. Assam on high alert after heavy rain accompanied with flash floods hit parts of Arunachal Pradesh. Hockey India announces 24-member junior women's squad for upcoming United Kingdom tour beginning next month. And in FIFA World Cup, Colombia qualifies for round of 32 after beating DR Congo 1-0 in Mexico today. India strongly objected to Pakistan raising the Kashmir issue at a United Nations forum, accusing Islamabad of politicizing the platform, also slammed it for misusing its position as co-chair instead of being unbiased as behooves the position. The remarks were made by India's permanent representative to the UN in New York, P. Harish, in response to comments by Pakistan's permanent representative, Asim Iftikhar Ahmed. Responding to Pakistan's intervention, Mr. Harish criticized the conduct of the co-chair and reiterated India's long-standing position on Jammu and Kashmir.
2: I also refer to the unwarranted remarks.

ये दोस्तों, ये है चोर मचाए शोर फिल्म का नगमा। रविंद्र जैन का गीत संगीत है और आवाजें हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की।

दोस्तों फिल्मी नगमे आप समाप्त कर रहे थे और आखिर पर आपने मौसम फिल्म का नगमा सुना। ये थे गुलजार के बोल, मदन मोहन की मौसीकी थी और लता मंगेशकर और भूपेंद्र की आवाज़ें थी। ये आकाशवाणी श्रीनगर है, हमारे अगले ऐलान का इंतज़ार कीजिए। ये छ आकाशवाणी श्रीनगर मीडियम वेव जहत 68.8 मीटर ते एफ एम 73.5 मेगाहर्ट्ज़ पेट समीन वैल्यू छक्कर तुरह बोझो फनकार छ हबीबुल्ला डार वसंत हिंद सती ये मनिश बुझो तो कला में हबीब मागरे

जय हिंद फौज भाइयों। फौज भाइयों, फिल्म संगीत के प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है। फौज भाइयों, आइए प्रोग्राम के आगाज में आपको सुनवाते हैं द बर्निंग ट्रेन फिल्म का नगमा। साहिर के बोल है, राहुल देव बर्मन की मौसिकी है और आवाज मोहम्मद रफी की।

फौजीबाइयों, ये था प्रोग्राम का पहला नगमा और फिल्म का नाम था द बर्निंग ट्रेन। मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ें थी, राहुल देव बर्मन की मौसीकी थी और साहिर के बोल थे। और अब आपको सुनाते हैं प्रोग्राम का अगला नगमा, ये है राजकमल की मौसीकी में पंकज के बोल, आवाज़ यशुदास की और फिल्म है सावन को आने दो।

दोस्तों, ये था लता मंगेशकर की आवाज़ में फिल्म मनपसंद का नगमा। अमित खन्ना की मौसिकी थी और राजेश रोशन के बोल थे। आइए अब आपको सुनवाते हैं अनवर की आवाज़ में जनता हवलदार फिल्म का ये गीत।

0: क्या किया? पास से शुरू करना था ना, और तुमने कहाँ से किया? नी से?
1: अच्छा बाबा, लो पास से शुरू करती हूँ।

फौजी भाइयों, आपने ये नगमा सुना। ये था गृह प्रवेश फिल्म का नगमा। कन्नू राय की मौसीके थे, गुलजार के बोल थे और आवाज़ें सुलक्षणा पंडित और भूपेंद्र सिंह के थे। आपको बताते चले कि आप इस वक्त आकाशवाणी श्रीनगर से फिल्म संगीत का प्रोग्राम सुन रहे हैं और आप हमें सुन सकते हैं DTH और ऑल इंडिया रेडियो की मोबाइल ऐप पर भी। अगला गीत आपको सुनवाते हैं गोलमाल फिल्म से। आर्य बर्मन की मौसिकी है, गुलजार के बोल हैं और आवाज़ किशोर कुमार की।

0: फौजी भाइयों, आपने ये नगमा सुना। ये था गीतकार असद भोपाली का लिखा हुआ। उषा खन्ना की मौसिकी थी। मोहम्मद रफ़ी और उषा खन्ना ने इसे गाया था और फिल्म का नाम था बिन फिरे हम तेरे। फौजी भाइयों, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में फिर से हाजिर होंगे।
1: कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर, आवाज जो आपके कारोबार को एक नई उड़ान दे। क्या आप चाहते हैं कि आपकी सोच आपका कारोबार हर दिल में जगह बनाए? तो देर किस बात की, राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर के साथ और अपने बिजनेस को दीजिए एक नई उड़ान, एक नई पहचान।
0: फौज भाइयों, वक्फे के बाद आपका प्रोग्राम में एक बार फिर से खैर मकदम करते हैं और एक और गाना हम आपको सुनवाते हैं। ये है फिल्म प्रोफेसर प्यारे लाल से, बोल राजेंद्र कृष्ण के हैं, कल्याण जी आनंद जी की मौसीकी है और आवाज़ें लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की।

जी फौजी भाइयों, ये थे राजेंद्र कृष्ण के बोल। कल्याण जी, आनंद जी की मौसीकी थी, मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ें थी। फिल्म का नाम था प्रोफेसर प्यारेलाल। और अब अगला गीत फिल्म मांग भरो सजना से। आनंद बख्शी के बोल है, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की मौसीकी है और आवाज़ें आशा भोसले और किशोर कुमार की है।

फौज भाइयों, ये है प्रोग्राम का आखिरी गीत। ये हमने लिया है फिल्म कशिश से। अनजान के बोल है कल्याण जी आनंद जी की मौसिकी है और आवाज़ें सुमन कल्याणपुर और किशोर कुमार की।

हमारी आवाज आप तक आकाशवाणी श्रीनगर से पहुंच रही है मीडियम वेव 268.8 मीटर और एफएम 103.5 मेगाहर्ट्ज पर। अब हमारे यहां से उर्दू खबरें नष्ट होंगी।

आदाब, ये आकाशवाणी श्रीनगर है। खबरों के बुलेटिन के साथ मैं संजीव कुमार। पहले अहम खबरों की सुर्खियां। भारत ने पाकिस्तान की तरफ से अक्वामे मुत्तहिदा के सलामती काउंसिल में कश्मीर का मामला उठाने पर जताया एतराज। इस्लामाबाद पर मुआविन सदर होने की पोजीशन का गलत इस्तेमाल करने का लगाया इल्जाम। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के दौरे पर आई पार्लिमानी कायमा कमेटी की लेफ्टिनेंट गवर्नर और वजीर आला से मुलाकात। सेहत के शोबे के बुनियादी ढांचे को रुकूमात के मुनसिफाना इस्तेमाल और मियारी जवाबित के मुताबिक बर वक्त मुकम्मल करने की वजीर सेहत की हिदायत। और मुहर्रमुल हराम की 8वीं तारीख की मुनासिबत से आजादारी के जुलूसों का इनकाद। अब पेश है खबरों की तफसील। भारत ने अक्वामे मुत्तहिदा में पाकिस्तान की जानिब से कश्मीर का मामला उठाए जाने पर सख्त एतराज जाहिर किया है और कहा है कि पाकिस्तान ने इस प्लेटफार्म को सियासत के लिए इस्तेमाल करना जारी रखा है। भारत ने इस बात के लिए भी पाकिस्तान की शदीद नुक्ताचीनी की है कि उसने मुआविन सदर की अपनी पोजीशन को गलत तौर पर इस्तेमाल किया है। अक्वामे मुत्तहिदा में भारत के मुस्तकिल नुमाइंदे पी हरीश ने पाकिस्तान के मुस्तकिल नुमाइंदे आसिम इफ्तिखार अहमद की रायजनी के जवाब में ये बात कही। उन्होंने जम्मू कश्मीर के बारे में भारत के दीरीना मौकिफ को दोहराते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर भारत का अंदरूनी मामला है। ब्रिक्स ममालिक के कौमी सलामती के मशीरों और सीनियर सिक्योरिटी अफसरान ने दहशतगर्दी और साइबर खतरात समेत सलामती को दरपेश बहुत से आलमी चैलेंजों से निपटने के लिए मजबूत तर इश्तराक के लिए कहा है। मीटिंग से खिताब करते हुए भारत के कौमी सलामती के मशीर अजीत धवाल ने उभरते हुए सिक्योरिटी खतरात और डिजिटल दुनिया में दहशतगर्दी के बदलते तौर तरीकों में इजाफे के अजाले के लिए ब्रिक्स ममालिक के दरमियान जामिया बातचीत और इश्तराक की जरूरत पर जोर दिया। पार्लियामेंट मेंबर शशि थरूर की सरबराही में खारजी मामलों से मुतालिक पार्लियामेंट की कायमा कमेटी इन दिनों जम्मू कश्मीर और लद्दाख के दौरे पर है। कमेटी के मेंबरान दोनों यूटीज में सरहदी सलामती और खारजा पॉलिसी के मामलों पर तबादला ख्याल कर रहे हैं। ये कमेटी 25 जून तक जम्मू, श्रीनगर, लेह और कारगिल के दौरे पर है। कायमा कमेटी ने लोकभवन श्रीनगर में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से मुलाकात की और उनसे जम्मू कश्मीर की तामीराती सरगर्मियों के बारे में तबादला ख्याल किया। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने मेंबरान से कहा कि 2019 के बाद जम्मू कश्मीर में अमन अमान के अलावा दूसरी सरगर्मियां भी मामूल के मुताबिक जारी हैं।

0: दौरान कायमा कमेटी के मेम्बरों ने श्रीनगर में वजीर आला उमर अब्दुल्ला से भी मुलाकात करके वजीर आला को अपने दौरे से मुतलिक तफसील दी। वजीर आला और कमेटी मेम्बरान ने जम्मू कश्मीर में तामीराती मंजर नामे के बारे में तफसीली तबादला ख्याल किया। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की सरबराही में जम्मू कश्मीर में गवर्नेंस का निजाम गुज़श्ता चंद बरसों के दौरान इनकलाबी तब्दीलियों से गुजरा है। SKICC श्रीनगर में पंचायती राज वजारत और जम्मू कश्मीर इंतजामिया के बाहमी इश्तराक से मुनाकिदा वर्कशॉप सेवा से समृद्धि से खिताब करते हुए मनोज सिन्हा ने कहा कि जम्मू कश्मीर ने नेशनल ई सर्विस डिलीवरी रैंकिंग में पहला नंबर हासिल किया है।
1: डिजिटल बुनियादी ढांचा पंचायतों तक पहुंचे, धीरे धीरे वो प्रगति आगे बढ़ी और मैं कह सकता हूं कि नागरिक सेवाएं हो या सामाजिक कल्याण से संबंधित कोई विषय हो, टेक्नोलॉजी के उपयोग से जिस प्रभावी ढंग से वो लोगों तक पहुंचाया जा सकता है, मैं समझता हूं कि शायद दूसरी कोई व्यवस्था उतनी कारगर नहीं होगी। 3 वर्ष में मुझे याद है 1100 से ज्यादा सेवाएं यहाँ लोगों को मिलने लगी थी और अनेक बड़े राज्यों को जम्मू कश्मीर ने पीछे छोड़ दिया था। ई सर्विस डिलीवरी की रैंकिंग में नंबर 1 जम्मू कश्मीर हो गया मध्य प्रदेश को पीछे छोड़कर। सामान्य नागरिक की सुविधा के लिए ब्लॉक दिवस, थाना दिवस, बैक टू विलेज, ऐसे अनेक कार्यक्रम प्रारंभ हुए थे जिससे आम आदमी को सहूलियत हो सके, उसकी सुनवाई हो सके।
0: ये खबरें आप आकाशवाणी श्रीनगर से सुन रहे हैं। खबरें आप आकाशवाणी के मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज ऑन AIR और DTH पर भी समाप्त कर सकते हैं। सेहत व तिबी तालीम की वजीर सकीना इत्तू ने रकूमात के मुनसिफाना इस्तेमाल के साथ तिबी निगहदाश्त के सेक्टर में बुनियादी ढांचे के सभी प्रोजेक्टों को तयशुदा जवाबित पर अमल पैरा रहते हुए बर वक्त मुकम्मल करने पर जोर दिया है। वजीर मौसूफ ने आज सुपर स्पेशलिटी अस्पताल श्रीनगर के OPD कॉम्प्लेक्स और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर के मल्टी फैसिलिटी सेंटर पर जारी काम की पेशरफ्त का तफसीली जायजा लिया। उन्होंने साथ ही सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल पहलगाम में जेर तामीर 50 बिस्तरों वाली इजाफी इमारत के काम का भी जायजा लिया। मुहर्रमुल हराम की 8वीं तारीख की मुनासबत से आज वादी भर में आजादारी के जुलूस निकाले जा रहे हैं। आलम शरीफ का सबसे बड़ा जुलूस श्रीनगर के गुरु बाजार से डलगेट की तरफ बरामद किया जा रहा है, जिसमें मुख्तलिफ अजला से आए आजादारों की एक बड़ी तादाद शिरकत कर रही है। अकीदतमंद मरसिया और नवाखानी करके हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और शुहदाए करबला को खराज अकीदत पेश कर रहे हैं। इंतजामिया ने जुलूस के एहसन और पुरअमन इनेकाद के लिए हिफाजत के सख्त बंदोबस्त किए हैं। अनंतनाग जिले के मटन इलाके में नॉर्थ जोन कल्चरल सेंटर और जम्मू कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेजेस की तरफ से श्री गुरु तेग बहादुर के 350वें शहीदी दिवस की मुनासबत से एक खसूसी नुमाइश का इनेकाद किया गया। हमारे नुमाइंदे तसदुक रशीद ने खबर दी है कि नुमाइश के दौरान गुरु तेग बहादुर जी की तालीमात, फलसफे और उनकी अजीम कुर्बानी नीज उनकी जिंदगी को दर्शाने वाली मालामाल मुसविरी को नुमाइश पर रखा गया है। इस मौके पर महकमा सकाफत के प्रिंसिपल सेक्रेटरी ब्रिजमोहन शर्मा ने आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा,
2: देखिए ये भारत सरकार की तरफ से मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा नॉर्थ जोन कल्चर सेंटर है जो पटियाला से, उनकी तरफ से ये एक एग्जीबिशन लगाई है गुरु तेग बहादुर जी की, जो 375वां मार्टिरडम था। पूरे देश में भारत सरकार के आदेशानुसार वो पूरे देश में पूरा एक साल उसको कमेमोरेट किया जा रहा है, उसमें एग्जीबिशन लग रही है देश में। लास्ट नवम्बर से शुरू हुआ था, नवम्बर 2025 से और नवम्बर 2026 तक होगा, ये उसी का एक पड़ाव है कि आज मटन में ये इस तरह से गुरु तेग बहादुर जी की पूरी जिंदगी, उनकी टीचिंग टीचिंग, उनकी प्रीचिंग्स पे पूरा उनकी जो एग्जीबिशन लगाई है, इसलिए लोग श्रद्धालु जहाँ आए हैं और देखे और उनको इसमें उनको इनसाइट मिल रहा है। मैसेज वही है जो सबका है, पीस होनी चाहिए।

0: चारा होना चाहिए, अमन चाहिए और अमन से ही दुनिया चल पाएगी।
1: जम्मू कश्मीर को मनुष्यात की लानत से छुटकारा दिलाने के लिए 100 दिनों पर मुश्तमिल नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान के तहत सरगर्मियां शदमत से जारी हैं। मनुष्यात के खिलाफ एलजी का पैगाम।
2: ड्रग स्मगलिंग से जुड़े तस्कर का पासपोर्ट, उसका ड्राइविंग लाइसेंस, कार आधार नंबर, उसके आर्म्स लाइसेंस, सब कुछ निरस्त कर दिया जाएगा और अगर फरार होगा तो लुकआउट सर्कुलर जारी किया जाएगा। एनडीपीएस एक्ट के तहत उसकी चल अचल संपत्ति भी अटैच की जाएगी, बैंक अकाउंट फ्रीज किया जाएगा और उसके खिलाफ फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन भी प्रारंभ किया जाएगा।
1: इस बिदत पर काबू पाने के लिए दरकार इकदाम और लोगों की जिम्मेदारियों के ताल्लुक से एक सीनियर एडवोकेट आरिज खान ने आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा,
3: मेरा नौजवानों के लिए ये पैगाम है कि वो मंशियात से दूर रहें क्योंकि मंशियात जिंदगी को तबाह कर देती हैं। वालिदैन को भी चाहिए कि वो अपने बच्चों पर नजर रखें कि वो कहाँ जाते हैं और क्या करते हैं और इस बात को भी यकीनी बनाएं कि वो मंशियात इस्तेमाल न करें। उन्हें इन बुरी चीजों से दूर रखें ताकि हमारा मुआशरा इस बुराई से साफ और पाक रह सके। मैं पुलिस हुकाम से भी गुजारिश करता हूँ कि वो मंशियात के खिलाफ सख्त निगरानी रखें ताकि हमारे नौजवान नशावर अशिया से महफूज और दूर रहे।
1: महकमा आला तालीम ने जम्मू कश्मीर के कॉलेजों में तदरीसी साल 2026-27 के लिए अंडर ग्रेजुएट और इंटीग्रेटेड पीजी कोर्सेज में दाखिले की खातिर स्पॉट राउंड का ऐलान किया है। इस अमल के जरिए दाखिले के दूसरे राउंड की तकमील के बाद बाकी मांदा खाली नशस्तों को पुर किया जाएगा। जम्मू कश्मीर के डायरेक्टर कॉलेजेस डॉक्टर शेख एजाज बशीर ने तालिब इल्मों से तलकीन की है कि वो स्पॉट राउंड से भरपूर इस्तेफादा करें। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
4: ये आकाशवाणी श्रीनगर है, मीडियम वेव 268.8 मीटर और एफएम 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। पेश है आज का पहाड़ी प्रोग्राम।

0: आकाशवाणी केंद्र श्रीनगर थी आई दा पहाड़ी प्रोग्राम कहन का मैं तुस्ता मेजबान शब्बीर अहमद शमस तुसी खिदमत बिच हाजिर हाँ और सारियों को अदब तताजीम नाल अस्सलाम वालेकुम अर्ज करदा और उम्मीद है जी तुसी सारे खैर खरीद नाल हो। सामीन दुनिया दा निजाम कुड़ी जने दुई नाल मिलकर बनता है। अज डिप्लोमेसी बिच खवातीन दा आलमी त्याड़ा मनाया जुलदा है। हर साल 26 जून को ए त्याड़ा मनाया जांदा है। सफारतकारी बिच खवातीन दी शराकत और आलमी फैसला साजी बिच सनफी मसावात को फरोग देना होंदा है। मकसद अहमियत डिप्लोमेसी बिच खवातीन दा आलमी त्याड़ा अक्वामे मुत्तहिदा दी जनरल असेंबली सुन अपने 76वें अजलास दे दौरान एक करारदाद दे जरिए कायम कीता, जिस बिच ए त्याड़ा सरकारी तौर ते 26 जून को मनाए दा ऐलान किया गया है। खवातीन दी खुदमुख्तारी शराकतदारी को तस्लीम किया गया है। तसामीन गल्ला और भी कर सन, आओ पहले सुनदे हैं मनकबत इमाम आली मुकाम हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला नु निशान बिच आवाज है सैयद मोहम्मद इकबाल मलंगामी ने।
1: उची आजीम हजरत हुसैन दी ऐजात, उची आजीम हजरत हुसैन दी ऐजात।

0: और उनको इसमें उनको इंसाइट मिल रहा है। मैसेज वही है जो सबका है, पीस होनी चाहिए, भाईचारा होना चाहिए, अमन चाहिए और अमन से ही दुनिया चल पाएगी।
1: जम्मू कश्मीर को मनुष्याती लानत थी छुटकारा दिलाने वास्ते 100 त्याड़ियां उत्तर मुश्तमिल नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान के तहत सरगर्मियां शदोमद नाल जारी हैं। मनुष्यात के खिलाफ एलजी दा सुनिया।
2: ड्रग स्मगलिंग से जुड़े तस्कर का पासपोर्ट, उसका ड्राइविंग लाइसेंस, कार्ड आधार नंबर, उसके आर्म्स लाइसेंस, सब कुछ निरस्त कर दिया जाएगा और अगर फरार होगा तो लुकआउट सर्कुलर जारी किया जाएगा। एनडीपीएस एक्ट के तहत उसकी चल अचल संपत्ति भी अटैच की जाएगी, बैंक अकाउंट फ्रीज किया जाएगा और उसके खिलाफ फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन भी प्रारंभ किया जाएगा।
1: इस बिरुद्ध तक काबू करने वास्ते दरकार एकदम तय, लोगों की जिम्मेदारियों के तालुक नाल एक सीनियर एडवोकेट आरिस खान सुन आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के नाल गल करदिया आख्या।
3: मेरा नौजवानों के लिए ये पैगाम है कि वो मंशियात से दूर रहें क्योंकि मंशियात जिंदगी को तबाह कर देती हैं। वालिदैन को भी चाहिए कि वो अपने बच्चों पर नजर रखें कि वो कहाँ जाते हैं और क्या करते हैं और इस बात को भी यकीनी बनाएं कि वो मंशियात इस्तेमाल न करें। उन्हें इन बुरी चीजों से दूर रखें ताकि हमारा मुआशरा इस बुराई से साफ और पाक रह सके। मैं पुलिस हुकाम से भी गुजारिश करता हूँ कि वो मंशियात के खिलाफ सख्त निगरानी रखें ताकि हमारे नौजवान नशावर अशिया से महफूज और दूर रहें।
1: महकमे आला तालीम सुन जम्मू कश्मीर के कालजों में तदरीसी साल 2026-27 वास्ते अंडर ग्रेजुएट ते इंटीग्रेटेड पीजी कोर्सेज में दाखले की खातर स्पॉट राउंड का ऐलान किया है। इस अमल के जरिए दाखले के दो राउंड के मुकम्मल होने के बाद बाकी मादा खाली नशिस्तों को पुर किया गया सी। जम्मू कश्मीर के डायरेक्टर कॉलेज शेख एजाज बशीर सुन तालबे इलमां की तलकीन की जे ओ स्पॉट राउंड की भरपूर फायदा चाहवन। इसी के नाल ही खबरों का यह बुलेटिन मुकया। दो इजाजत, खुदा हाफिज। یہ آکاشوانی سری نگر میڈیم میں وقت ساتھ سخت شرح کلو ہرٹس تو ایف ایم اکھ 3.5 میگا ہرٹزن پہ سمین 4:30 تو 30 منٹ سپت شکر تو روف پیش صداکار حبیب اللہ ڈار وسنت ستی ان بوزو تھی کلام سید میرک شاہ کاشانی رحمت اللہ علیہ

0: Senin tesu çakır turuf bozan. Yos kalami Said Mirak Shah Kashani. Sadakaris Habibullah Dar Vusan Tatihin Sati. Icha Akashvani Srinagar.
1: Commercial Broadcasting Service Srinagar. आवाज जो आपके कारोबार को एक नई उड़ान दे। क्या आप चाहते हैं कि आपकी सोच आपका कारोबार हर दिल में जगह बनाए? तो देर किस बात की, राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर के साथ और अपने बिजनेस को दीजिए एक नई उड़ान, एक नई पहचान।
0: हमारी आवाज अब तक आकाशवाणी के श्रीनगर स्टेशन से पहुंच रही है। शाम के 5 बज चुके हैं। समाप्त कीजिए आज का गोजरी प्रोग्राम।

जी सजनों, मोहम्मद रफी की आवाज़ में तुम सुन रहे था बैत। सजनों, अगरचे खित्ता जम्मू कश्मीर में बोली जाने वाली गोजरी जबान पर अरबी ते फारसी जबाना का वाजे असरात लभी, मगर इसके नाल नाल गोजरी जबान ने मकामी बोलियां ते जबाना ते में शर्फ फैज हासिल कियो है। मसलन जम्मू खित्ता में डोगरी ते पंजाबी ने, जबकि कश्मीर में बोली जाने वाली गोजरी वर कश्मीरी जबान को सायो रियो है। इतनी फैली हुई जबान वसत ते गहराई संग लबरेज तमाम लिसानी खसूसियात नाल लबरेज, मगर बदकिस्मती यह गल है कि जम्मू कश्मीर का हर खिता हर तहसील में बोली समझी लिखी पढ़ी जाने वाली यह गोजरी जबान किसी मरकजो महवर ते महरूम है और अजा भी बुनियादी मसाइल संग जूझ रही है। तो बुनियादी हकूक की तलबगार है, सरकारी सरपरस्ती वास्ते अपनों दामन वसत फैलाए भी है, तो अठवां शेड्यूल की मांग ना हर बदते तड़े या पुकार ला रही है कि मैना अठवां शेड्यूल में शामिल करो। यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस ते स्कूलों में अपना खाली मुकाम भरने की मतलाशी है, तो अहले गोजरी इन तमाम ख्वाबों की शर्मिंदा ताबीर होने का मुंतजर है। तो इस चीज़ का उड़ीकवान है कि कद ये हक ये हकूक इस जबान हासिल होगा ताजे जम्मू कश्मीर की एक बड़ी जबान जबाना का असली नक्शावर आ सके। तो सजनों, डॉक्टर जमील जाल भी अपनी किताब तारीख उर्दू अदब में रकम तराज हैं कि गुजरात सारा बर आजम में उर्दू जुबान

वो पहलो वाहिद मरकज थो। इस वास्ते जब दखण में उर्दू का नया मरकज उभरिया तो उत का अहले इल्म अदब ने कुदरती तौर पर गोजरी अदब की रिवायत ना अपनायो। या इंसानी फितरत है जे जब इंसान कोई काम शुरू करे तो उसकी नज़र उन लोगों पर जाए जड़ा इससे पहला यो काम कर चुका हुई। दखण में जब उर्दू को चर्चो हुओ और इसने सरकारी दरबार की सरपरस्ती हासिल हुई तो ईत का अदीबा तो शायरों की नज़र गुजरी अदब पर पई। तो यो नजरियो डॉक्टर जमील जालबी को है बड़ो काबिल कबूल। तो मैंने लगे कि मजीद इसके ऊपर तहकीक की गुंजाइश भी है। तो चूंकि गोजरी दू फिर उर्दू को निगलन इतु साबित हो है तो जबान का तारीखी इरतका नजरियात ते गुरेज करता वहां आओ एक सरसरी जायजो गोजरी अदब को भी लिया। गोजरी जबान में कहावत मुहावरा जरबुल मसल लोक गीत लोक कहानी लोक अदब तो शायरी माँ मसनवी गजल नजम यानी कि तमाम असनाफ और इसके अलावा नसरी जखीरों जैसा कि अफसानों नावल ड्रामा वगैरह ये सारो कुछ गोजरी अदब में भी मौजूद है। इतनू लासानी अदब और इतनू लासानी जखीरो गोजरी जबान का दर्जा ना और बुलंद करे। तो गोजरी जबान ना जब तक कोई माकूल कानूनी दर्जो नहीं लगतो तो मुमकिन है तद तक जरा लोग इस जबान के नाल जुड़े वहीं वे इस न बोलनते इस न अपनानते इस न समझनते जरूर कित ना कि एहसास कमतरी को शिकार हो सके। अगर इस जबान ना कानूनी चारा जोई या कानूनी दर्जो हासिल हो जाओ तो इस जबान की जी हकीकी तादाद है बोलने वालों की उस तो बद गए इसमें और इजाफा हो जाएगा। इसमें तहकीक को तनकीद को काम बहेगो इसमें तख्लीक को काम बहेगो इसको अदब को पैमानो और बुलंद वाजिया बहेगो। मगर बदकिस्मती नाल कहना पवे कि हमारा सरकारी ते गैर सरकारी इदारा ते अंजुमन अपना कार्य खैर ते इस बारे अजा उतनो ज्यादा बेहतर काम नहीं कर रही है। बेशक जबान किसी भी कौम की हस्ती ना बरकरार रखें ते अहम फाल ते मुतहर्रिक किरदार अदा करें। जिस कौम की अपनी का जुबान नहीं होती उसको ना ही कोई वजूद होवे ते ना ही हस्ती। बगैर जबान का कोई भी कौम अपनी शनाख्त बरकरार नहीं रख सकती। ते अगे गल बात और भी करूँगा तारी खिदमत में पेश करने योग गीत आवाज़ है दीपाली वातल ते चंचल शर्मा।

जी तम गीत सुन रहा था दीपाली वातल ते चंचल शर्मा की आवाज में। गोजरी जबान का हवाला नाल सिकंदर अयाद तारक एक जगह लिखी, वे लिखी कि मेरे नज़दीक मादरी जबान को दर्जो दूसरी जबाना ते इस वास्ते भी उच्चो है क्योंकि यह जबान माँ का दूध की बत्ती तारा बिचों इंसान का खून शामिल करके परवान चढ़े। तो गोजरी जबान ने जंगलों पहाड़ा मामी अपनों अदब को परवान जड़ो है वो चाड़ियो। हालांकि गोजरी को लिसानी दायरो डोगरी ते कश्मीरी जबाना ते वसी है, ते गोजरी हर उस जगह बोली जाए समझी जाए जित गुजर आबादी गुजर पहलगाम को वै या कंगन को पुंछ को वै या उड़ी को चंबा को वै या शिमला को हजारा को वै या सवात को उसको कल्चर सकाफत ते जबान हमेशा मिली भी हो वै। तो गोजरी जबान की तारीख इतनी ही पुरानी है जितनी के मौजूदा दूजी हिंदुस्तानी जबाना की तारीख है। जित तक गोजरी अदब को सवाल है तो गोजरी तखलीकी अदब को नुकते आगाज अगर हम तलाश करने की कोशिश करें तो हम ज्यादा पीछे नहीं जा सकता क्योंकि इस सिलसिला में कोई इतना बड़ो तहकीकी काम आज तक सामने नहीं आयो। अमीर खुसरो का दौर में गोजरी जबान तकरीबन ऐसी थी जैसी आज है। गोजरी जबान तलबो लहजा ने इस अजीम शायर अमीर खुसरो नामी मुतासर कियो। वो एक मुकाम पर लिखा है कि गुजरी तू के दो हुस्न लताफत चू मही आ देगी दही बरसरे तू चित्र शही अजहर दो बस उनुन दो शुक्री रहजूत हर गा बगोई के दही ल्यू दही ए गोजरी तू हुस्न ते खूबसूरती माँ चन्न की मिसाल है। तो सज्जनों तेरहवीं सदी ते बाद गोजरी का बारा माँ तारीखी ते अदबी वाला जात साफ लबन लग गया ते पतो चलियो जो गोजरी नज्म व नसर की इब्तिदा हो चुकी थी ते सूफी ते बुजुर्ग शोरा का कलाम माँ गोजरी जबान साफ नजर आ रही थी। किसी सूफी बुजुर्ग को एक शेर है जड़ो रमज की ऊंच वर है कि दीन कुमायो दुनिया पिछे दुनिया हथ ना आई पैर कवाड़ो मारियो गाफल अपने हथ। ते देखो कितनी साफ कितना साफ लफ्सा मां गोजरी जबान इतों वाजिया हो रहा है। बिल्कुल इसे गल ना अपना दूजा लफ्सा मां संत शायर तुलसीदास लिखी कि चुन चुन माटी कर बनायो मूर्ख कह कर मेरो ना कर मेरो ना कर तेरो चिड़िया रहन बसेरो। कितनों वाजिया अल्फाज मां इतके हो जा सके कि गोजरी को मुकम्मल यही नक्शो उस दौर मां भी। मौलाना जामी को कौल है कि अगर अल्लाह की जात अबदी हुसन है तो हुसन का उस राज ना पहचानन समझन सोफिया को मकसद हयात रहो है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हक ने बाद उलमाए उम्मत ने रुश्द व हिदायत को सिलसिलो जारी रखियो। ते लड़खड़ाती डूबती कश्ती ना किनारो देने वास्ते अल्लाह का कई कलंदरा ते आरिफा ने मार्फत को सबक जड़ो है वो आम की। सोफी अपना आप न राय हक मां फना कर दे उसका दिल मां काय कदूरत नहीं होती। मार्फत का ये आशक नमाज इश्क वास्ते अपना खून ते वजू करी ते इश्क रब्बानी मां अमर हो जी। हजरत मियां मोहम्मद बख्श असरार मार्फत का बारा मां शेरी लफ्सा मां लिखी कि ए असरार न फूली इत्थे मत कोई मार गवा

इसके नाल ही गोजरी प्रोग्राम को वेलो मुकर नावे गोजरी प्रोग्राम का प्रोड्यूसर है वसीम फारूक वानी अपना मेजबान अल्ताफ निजामी ना अगली मुलाकात तुड़ी दियो इजाजत चलन जी फिर रब रखो।

0: हमारी आवाज आप तक आकाशवाणी के श्रीनगर स्टेशन से पहुंच रही है। मीडियम वेव 268.81 मीटर और FM 103.5 मेगाहर्ट्ज पर 5:50 हो रहे हैं। समाप्त कीजिए गोजरी में खबरें।
1: सामीन आदाब, यो आकाशवाणी श्रीनगर है। खबरनामो लेगा मोहम्मद शरीफ पसवाल हाजिर। पहला कुछ खास खास खबरों की सुर्खी। भारत ने पाकिस्तान की तरफों अकवाम मुतहदा की सलामती कौंसल में कश्मीर को मामलो चाण व जतायो एतराज। इस्लामाबाद वर मामन सदर होन की पोजीशन को गलत इस्तेमाल कर लो लायो इल्जाम। जम्मू कश्मीर ते लद्दाख का दौरा वर आई पार्लिमानी कायमा कमेटी की लेफ्टिनेंट गवर्नर ते वजीर आला ना मुलाकात। सेहत का शोभा का बुनियादी ढांचा न रकम का मुनसफाना इस्तेमाल ते मियारी जाबता के मुताबिक मुकम्मल करनी वजीर सेहत की हदायत। ते महरम उल हराम की 8वीं तारीख की मुनासबत न आजादारी का जुलूसा को इनकाद। पेश है खबरों की तफसील। भारत ने अकवाम मुतहदा में पाकिस्तान की तरफों कश्मीर को मामलो चाया जान व सख्त एतराज जाहिर कियो है। तय क्यों है जी पाकिस्तान ने इस प्लेटफार्म ना सियासत वास्ते इस्तेमाल करनो जारी कियो है। भारत ने इस गल वास्ते भी पाकिस्तान की शदीद नुक्ताचीनी की है जे उसने माउन सदर की अपनी पोजीशन ना गलत तौर पर इस्तेमाल कियो है। अकवाम मुतहदा में भारत का मुस्तकिल नुमाइंदा पी हरेश ने पाकिस्तान का मुस्तकिल नुमाइंदा आसिम इफ्तखार अहमद की राय जनी का जवाब में यह गल कही। उन्होंने जम्मू कश्मीर बारे भारत का दीरीना मौकफ ना दोहराता हुआ क्यों जे जम्मू कश्मीर भारत को अंदरूनी मामलो है। ब्रिक्स मुल्कों का कुम सलामती का मशीरों और सीनियर सिक्योरिटी अफसर ने दहशत गर्दी तय साइबर खतरों समेत सलामती ना दरपेश बहुत सारा आलमी चैलेंजा नाल निबड़न वास्ते मजबूत संजाली वास्ते क्यों है। मीटिंग नाल खिताब करता हुआ भारत का कौमी सलामती का मशीर अजीत दवाल ने उभरता हुआ सिक्योरिटी खतरा और डिजिटल दुनिया में दहशतगर्दी का बदलता तौर तरीकों में वादा का अजाला वास्ते ब्रिक्स मुल्खों के बशकार जामे गलबात ते संजाली की जरूरत पर जोर दितो है। पार्लियामेंट मेंबर शशि थरूर की सरबराही में खारजी मामलों बारे पार्लियामेंट की कायमा कमेटी इन त्याड़े जम्मू कश्मीर ते लद्दाख का दौरा पर है। कमेटी का मेंबर दो यूटीज में सरहदी सलामती ते खारजा पॉलिसी का मामला पर तबादला ख्याल कर रहे हैं। यह कमेटी 5 जून तक जम्मू श्रीनगर लेत है करगिल का दौरा पर है। कायमा कमेटी ने लोक भवन श्रीनगर में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा नाल मुलाकात की ते उन नाल जम्मू कश्मीर की तामीराती सरगर्मियां बारे तबादला ख्याल कियो गयो। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने मेंबरों ना क्यों जे 2019 के बाद जम्मू कश्मीर में अमन व अमान के अलावा दूजी सरगर्मी मामूल के मुताबिक जारी है। इस दौरान कायमा कमेटी का मेंबरों ने श्रीनगर में वजीर आला उमर अब्दुल्ला नाल भी मुलाकात करके वजीर आला ने अपना दौरा बारे तफसील दी। वजीर आला ने कमेटी मेंबरों ने जम्मू कश्मीर में तामीराती मंजरनामा बारे तफसीली तबादला ख्याल कियो। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा है जे वजीर आजम नरेंद्र मोदी की सरबराही में जम्मू कश्मीर में गवर्नेंस को निजाम पिछला कुछ साल के दौरान इनकलाबी तब्दीलियां ते गुजर रहे है। SKICC श्रीनगर में पंचायती राज वजारत है जम्मू कश्मीर इंतजामिया की आपसी संजाली नाल मनकदा वर्कशॉप सेवा से समृद्धि ना खिताब करता हुआ मनोज सिन्हा ने कहा जे जम्मू कश्मीर ने नेशनल ई सर्विस डिलीवरी रैंकिंग में पहला नंबर हासिल कियो है।
2: डिजिटल बुनियादी ढांचा पंचायतों तक पहुंचे, धीरे धीरे वो प्रगति आगे बढ़ी और मैं कह सकता हूं कि नागरिक सेवाएं हो या सामाजिक कल्याण से संबंधित कोई विषय हो टेक्नोलॉजी के उपयोग से जिस प्रभावी ढंग से वो लोगों तक पहुंचाया जा सकता है मैं समझता हूं कि शायद दूसरी कोई व्यवस्था उतनी कारगर नहीं होगी। 3 वर्ष में मुझे याद है 1100 से ज्यादा सेवाएं यहाँ लोगों को मिलने लगी थी और अनेक बड़े राज्यों को जम्मू कश्मीर ने पीछे छोड़ दिया था। ई सर्विस डिलीवरी की रैंकिंग में नंबर 1 जम्मू कश्मीर हो गया मध्य प्रदेश को पीछे छोड़कर। सामान्य नागरिक की सुविधा के लिए ब्लॉक दिवस, थाना दिवस, बैक टू विलेज ऐसे अनेक कार्यक्रम प्रारंभ हुए थे जिससे आम आदमी को सहूलियत

0: सके, उसकी सुनवाई हो सके।
1: से तो तिबी तालीम की जिसकी इतनी रकम का मुनसफाना इस्तेमाल के नाल तिबी देख रेख का सैक्टर में बुनियादी ढांचा का तमाम प्रोजेक्ट ना तयशुदा जाब्तों पर अमल करता हुआ वेला पर मुकम्मल कर जो दी है। वजीर मौसूफा ने आज सुपर स्पेशलिटी अस्पताल श्रीनगर का OPD कम्पलैक्स ते गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर का मल्टी फैसिलिटी सेंटर पर जारी काम की पेशरफ्त को तफसीली जायजा लियो। उन्होंने नाल ही सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल पहलगाम में जेर तामीर 50 बिस्तर वाली इजाफी इमारत का काम वो भी जायजा लियो। अनंतनाग जिला का मटन इलाका में नॉर्थ जोन कल्चरल सेंटर ते जम्मू कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेजेस की तरफों श्री गुरु तेग बहादुर का 350वां शहीदी दिवस की मुनासबत नाल एक खसूसी नुमाइश को इनकाद कियो गयो। मारा नुमाइंदा तसद्दुक रशीद ने खबर दी है जे नुमाइश के दौरान गुरु तेग बहादुर जी की तालीमात फलसफा ते उनकी अजीम कुर्बानी नेज उनकी जिंदगी ना दसन आली मालामाल मसवरी ना नुमाइश में रखियो गयो थो। इस मौके पर महकमा सकाफत का प्रिंसिपल सेक्रेटरी ब्रिज मोहन शर्मा ने आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर नाल गल करता हूं क्यों।
2: देखिए ये भारत सरकार की तरफ से मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा नॉर्थ जोन कल्चर सेंटर है जो पटियाला से, उनकी तरफ से ये एक एग्जीबिशन लगाई है गुरु तेग बहादुर जी की जो 375वां मार्टिरडम था। पूरे देश में भारत सरकार के आदेशानुसार वो पूरे देश में पूरा एक साल उसको कमेमोरेट किया जा रहा है, उसमें एग्जीबिशन लग रही है देश में। लास्ट नवम्बर से शुरू हुआ था, नवम्बर 2025 से और नवम्बर 2026 तक होगा। ये उसी का एक पड़ाव है कि आज मटन में ये इस तरह से गुरु तेग बहादुर जी की पूरी जिंदगी, उनकी टीचर, उनकी प्रीचिंग्स पे पूरा उनकी जो एग्जीबिशन लगाई है, इसलिए लोग श्रद्धालु यहाँ आए हैं और देखे और उनको इस पे उनको इनसाइट मिल रहा है। मैसेज वही है जो सबका है, पीस होनी चाहिए, भाईचारा होना चाहिए, अमन चाहिए और अमन से ही दुनिया चल पाएगी।
1: ये खबर तो हम आकाशवाणी श्रीनगर तो सुन रहे हैं, खबर तो हम आकाशवाणी की मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज ऑन AIR ते DTH पर भी सुन सके। मुहर्रमुल हराम की 8 तारीख की मुनासबत नाल आज वादी में आजादारी का जुलूस कढ़िया गया। आलम शरीफ को सब तो बड़ो जुलूस श्रीनगर का गुरु बाजार तो डलगेट की तरफ बरामद कियो गयो, जिसमें मुख्तलिफ जिलों तो आया हुआ आजादारों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। अकीदतमंदा ने मसीह ते नुआ खानी कर गए हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ते शहदाए करबला ना खराज अकीदत पेश कियो।

0: خاطر سپاٹ راؤنڈ وہ اعلان کی ہوئے ہے. اس عمل کے ذریعے داخلہ کا دوجہ راؤنڈ کی تکمیل کے بعد باقی رہی خالی نشستان پور کی ہو جائے گو. اس کے نال خبرنامو مکیو اگلو خبرنامو 6:05 پر آکاشوانی تو کشمیری میں نشر وے گو. دیو اجازت راب رکھو.
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा. भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान द्वारा कश्मीर मुद्दा उठाने पर कड़ी आपत्ति व्यक्त की है. पाकिस्तान पर संयुक्त राष्ट्र मंच का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाते हुए भारत ने कहा कि सह अध्यक्ष के रूप में निष्पक्ष रहने के बजाय पाकिस्तान ने पद का दुरुपयोग किया है. संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि आसिम इफ्तिखार अहमद की टिप्पणियों के जवाब में जम्मू कश्मीर पर भारत का रुख दोहराया.
2: मैं पाकिस्तानी पक्ष की टिप्पणियों का उल्लेख करता हूं. यह हैरान कर देने वाला है कि ऐसे मंच पर जहां राजनीतिक मुद्दों पर संतुलित और निष्पक्ष चर्चा की उम्मीद की जाती है ऐसी बातें कही गईं. मैं दोहराना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर पूर्ण रूप से भारत का घरेलू मामला है.
1: ईरान के तेहरान में स्थित भारतीय दूतावास ने सुरक्षा स्थिति में सुधार के बावजूद भारतीय नागरिकों को जारी नए परामर्श में अगली सूचना तक सभी गैर जरूरी यात्राओं से बचने को कहा है. बहुत आवश्यक होने पर ईरान यात्रा करने वालों को अत्यधिक सावधानी और सतर्कता बरतने तथा स्थिति पर लगातार नजर रखने की सलाह दी गई है. स्थानीय अधिकारियों के निर्देशों का पालन करने को भी कहा गया है. वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज अमरीकी व्यापार प्रतिनिधि राजदूत जैमिसिन ग्री और उनके प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठकें की. श्री गोयल ने भारत अमरीकी व्यापार वार्ता की प्रगति की समीक्षा की और दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी को और मजबूत करने के अवसरों पर चर्चा की. उन्होंने वार्ता को आगे बढ़ाने के निरंतर प्रयासों की सराहना की. भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने आज नई दिल्ली में सामरिक रक्षा साझेदारी ढांचे के अंतर्गत रक्षा सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए एक बैठक आयोजित की. बैठक की सह अध्यक्षता अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के संयुक्त सचिव अमिताभ प्रसाद और संयुक्त अरब अमीरात के ब्रिगेडियर स्टाफ जमाल इब्राहिम मोहम्मद इब्राहिम अलमारजूकी ने की. चर्चा का मुख्य विषय रक्षा उद्योग सहयोग का विस्तार करना, नवाचार को बढ़ावा देना, विशिष्ट तकनीकों का लाभ उठाना और समुद्री सुरक्षा को मजबूत करना था. गृह मंत्री अमित शाह शुक्रवार को नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे. स्वापक नियंत्रण ब्यूरो द्वारा आयोजित इस बैठक में केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों और मादक पदार्थों से संबंधित कानून प्रवर्तन एजेंसियों के प्रतिनिधि मादक पदार्थों की तस्करी और दुरुपयोग से निपटने के प्रयासों की समीक्षा करने के लिए एक साथ आएंगे. केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत त्रिपुरा में 96 सड़क परियोजनाओं के निर्माण के लिए 211 करोड़ रुपए से अधिक की राशि स्वीकृत की है. इस परियोजना से राज्य में 160 किलोमीटर से अधिक लंबी सड़कों का निर्माण होगा. इन परियोजनाओं से राज्य की 96 बस्तियों को पहली बार हर मौसम में सुगम सड़क संपर्क प्राप्त होगा. राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने देशभर के राष्ट्रीय राजमार्गों पर अवैध पार्किंग और अतिक्रमण हटाने के लिए अभियान तेज कर दिया है. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने बताया है कि ये कार्रवाई सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार की जा रही है. इसका उद्देश्य राष्ट्रीय राजमार्गों को अधिक सुरक्षित, सुगम और यात्रियों के लिए सुविधाजनक बनाना है. प्रवर्तन निदेशालय ने बेंगलुरु और मुंबई में राजेश एक्सपोर्ट्स लिमिटेड से जुड़े 9 ठिकानों पर छापेमारी की है. ये कार्रवाई कल शुरू की गई. ये जांच राजेश एक्सपोर्ट्स लिमिटेड और उससे जुड़े लोगों के खिलाफ विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम के कथित उल्लंघन के मामले में की जा रही है. पश्चिम बंगाल में कोलकाता के तारातला में आज निर्माणाधीन गोदाम ढहने से 3 लोगों की मौत हो गई और 5 लोग घायल हो गए. घायलों का एसएसकेएम अस्पताल में इलाज चल रहा है. मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी स्थिति का जायजा लेने के लिए दुर्घटना स्थल पर हैं. राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, पुलिस, अग्निशमन और आपातकालीन सेवाएं तथा स्थानीय लोग बचाव कार्य में जुटे हुए हैं. यूएस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला डबल्स

0: में त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद ने प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। भारतीय जोड़ी ने स्पेन की पाउला लोपेज और लूसिया रॉड्रिक्स को हराया। मौसम विभाग ने कोंकण और गोवा में आज मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। तटीय कर्नाटक और मध्य महाराष्ट्र में भी अगले दो दिन तक इसी तरह का मौसम रह सकता है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: تہ چھو آکاشوانی ہند سری نگر اسٹیشن ٹیون کورمت میڈیم ویو اخ ساس اک ہت شرہ کلو ہرٹس تو ایف ایم اک ترہ اشاریہ پانچ میگا ہرٹزن پہ پانچ منٹ پہ شہ بجے سمین پیش چک پروگرام گرمی بانہ ہند خطرہ

0: के द्वारा नॉर्थ जोन कल्चर सेंटर है जो पटियाला से, उनकी तरफ से ये एक एग्जीबिशन लगाई है गुरु तेग बहादुर जी की, जो 375वां मार्टिरडॉम था पूरे देश में। भारत सरकार के आदेशानुसार तो पूरे देश में पूरा एक साल उसको कमेमोरेट किया जा रहा है, उसमें एग्जीबिशन लग रही है देश में। लास्ट नवम्बर से शुरू हुआ था, नवम्बर 2025 से और नवम्बर 2026 तक होगा। ये उसी का एक पड़ाव है कि आज मटन में ये इस तरह से गुरु तेग बहादुर जी की पूरी जिंदगी, उनकी टीचिंग, उनकी प्रीचिंग्स पे पूरा उनकी जो एग्जीबिशन लगाई, इसलिए लोग श्रद्धालु जहाँ आए हैं और देखें और उनको इसमें उनको इनसाइट मिल रहा है। मैसेज वही है जो सबका है, पीस होनी चाहिए, भाईचारा होना चाहिए, अमन चाहिए और अमन से ही दुनिया चल पाए।
1: जम्मू कश्मीर जल शक्ति माहौलियात वजीर जावेद अहमद रानहन वन जो उमर अब्दुल्ला सिंह सरबराही वाजिन सरकार जम्मू कश्मीर मज गरस साफ मुनासिब तो काबिल एतमाद चन वोन फराहम करने बापत पुरजम। तम अनंत नाग किस दूर कस्बस मज आज एम जी डी रैपिड सैंड फिल्ट्रेशन प्लांटस दस तुलान। वजीर मौसूफन वन जे चन आब किस बुनियादी ढांचस मज जदीदियत अन्न सी हे लोकन चन आब सलब सलब दस्तियाब थावने यत। अमे ब्रो तुल तमो कज गुंडस मज जल जीवन मिशनस तहत वाटर सप्लाई स्कीम दस। कुलगाम जिलस मज नेशनल टग ऑफ वार चैंपियनशिप शुरू सपजम मुल्क चन सदहन रियासतन से तौलुक थवन वाल टीम हिस्स निभान। चैंपियनशिप तुल कुल हिंद कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी तो एम एल ए डूर गुलाम अहमद मीरन दस। चैंपियनशिप हंद संस्करण वालों दस एथलीटन बापत अमि कस्म प्लेटफार्म फराहम करनस पे दि तमो तम शाबाशी। इब्तिताही तकरीब पे एथलीटन अहम शख्सियतन तो मकामी खेल शायकन हंद बड़ तदाद मौजूद। मौसम भारतीय मौसमियात महकमन आज कोंकण तो गवाहस मज सठा चुरुक रूद पेन बापत रेड अलर्ट जारी करम। इन वालन दोन दोहन दौरान सहरी कर्नाटक तो मध्य प्रदेश मज यथि हालात रोजन इम्कान। महकमन अकतु यमि रेतरस कुनत्रहमस तारीखस ताम आसाम मेघालय अंदरूनी कर्नाटक उड़ीसा तेलंगाना मगरबी बंगाल तो सिक्किमस मज बहर रूद पेशगोई करम। मौसमियात महकमन अकतु बटवारि दोह ताम दिल्ली हरियाणा चंडीगढ़ पंजाब हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड जम्मू कश्मीर तो लद्दाखस मज वुजमलन गगरायन सूद पेन पेशगोई करम तो अ दौरान तेज वाव वथन इम्कान। इजाजत हन ब्रो बूजू खास खास खबरन सुर्खी बे एक फिरे। ब्रिक्स मुल्कन हंदेव कौमी सलामती मुशीरों तो सीनियर सिक्योरिटी अफसरों दहशतगर्दी साइबर खतरन तो बाकी चैलेंजन अंद बुर दिन बापत मजबूत शिरकत पे जोर दुत। तेहरानस मे भारतीय सफारत खानन भारतीय शहरियन बापत नए सर अख एडवाइजरी जारी करम। आज पासपोर्ट खजमतन हंद दोह मनावान चौवहमि जून कुनवुशत सतहठ ईस्वी मजोस अजगी दोह पासपोर्टस मुतलिक कानून बनावन आमुत। तो भारतीय मौसमियात महकमन आज कोंकण तो गवाहस मज चुरुक रूद पेन बापत रेड अलर्ट जारी करम। अत वोत खबरन हुंद ये बुलेटिन अंद कशरन खबरन हुंद ब्याख बुलेटिन सपद वन क्या काल पत आकाशवाणी श्रीनगर पे 7:30 पे नशर। अस दीव इजाजत खुदा हाफिज।
2: कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर, आवाज जो आपके कारोबार को एक नई उड़ान दे। क्या आप चाहते हैं कि आपकी सोच आपका कारोबार हर दिल में जगह बनाए? तो देर किस बात की, राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर के साथ और अपने बिजनेस को दीजिए एक नई उड़ान, एक नई पहचान। कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर, आवाज जो आपके कारोबार को एक नई उड़ान दे। क्या आप चाहते हैं कि आपकी सोच आपका कारोबार हर दिल में जगह बनाए? तो देर किस बात की, राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर के साथ और अपने बिजनेस को दीजिए एक नई उड़ान, एक नई पहचान।
3: इकबाल सब खबर तो बूझ अस
4: बिल्कुल खबर बूझन जरूरी आसान तिकाजी शिश खबर सानि बापत अम सत हेसो शरी लगान आया अस तरक्की हंदिस मैदानस मज सियासत किस मैदानस मज या तलीम हंदिस मैदानस मज वत तो अस क्या वह अमी युकन ला
3: खबर अस कुल हम शिश अत
4: बिल्कुल
3: تو مگر یہ خبر

0: आकाशवाणी श्रीनगर। अपनी घड़ियां मिलाइए, शेरबीन टाइम शाम के 7 बजे हैं।
1: प्रोग्राम शेरबीन आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे हैं खैबर सीमेंट, मजबूती और पायदारी की जमानत खैबर सीमेंट। अपनी तामीरात दिल से बनाइए।

0: दिल से हो, बात वही जो दिल से कही जाए, दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खाइबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है। खाइबर सीमेंट, दिल से बनाओ।
1: सुनो ना,
2: हा?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
2: तो रोका किसने है? हा?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
2: मुझसे।
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
2: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
2: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो,
3: 9018074333।
4: 9018074333।
5: सेहत तक हर इंसान की पहुंच एक बुनियादी हक है, लेकिन आज भी कई लोगों के लिए ये एक मुश्किल सफर है। दूर दराज इलाकों में हॉस्पिटल, लंबी कतारें और सही जानकारी की कमी, ये सब रुकावटें बनती हैं। इन छोटी छोटी रुकावटों की वजह से जरूरी इलाज भी रह जाता है, लेकिन अब इसका हल है जेके सेहत ऐप। ये है आपका डिजिटल साथी जो आपकी सेहत से जुड़ी हर जरूरत का ख्याल रखता है। अपने फोन में गूगल प्ले स्टोर या एप्पल स्टोर खोलिए, सर्च बॉक्स में टाइप कीजिए जेके सेहत ऐप और इंस्टॉल करके रजिस्टर हो जाइए। ये ऐप एंड्रॉइड और आईफोन दोनों पे अवेलेबल है। इस ऐप से डॉक्टर से अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, नजदीकी हॉस्पिटल ढूंढ सकते हैं, ऑनलाइन सलाह और मेडिकल रिपोर्ट्स देख सकते हैं, एम्बुलेंस बुक कर सकते हैं, दवाइयों की अवेलेबिलिटी चेक कर सकते हैं, वैक्सीनेशन रिकॉर्ड्स देख सकते हैं, ब्लड बैंक इन्फॉर्मेशन भी ले सकते हैं और सरकारी हेल्थ स्कीम्स के बारे में भी जान सकते हैं, और साथ ही साथ आप प्राइवेट हेल्थ केयर प्रोफेशनल होम सर्विस भी बुक करवा सकते हैं। इस ऐप में AI सिम्टम चेकर चैटबॉट भी अवेलेबल है। चाहे आप मरीज हो, डॉक्टर, स्टूडेंट या एक आम शहरी, जेके सेहत ऐप सबके लिए है। इट्स सिंपल, सेफ और आपके लिए।
6: इश्यूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय नेशनल हेल्थ मिशन J&K।
7: आज आई मेरी मेडिकल रिपोर्ट, तो मैंने शरीर विटामिन ए तो विटामिन बी कमी द्रामस,
8: तो क्या शक्न फोर्टिफाइड दूध तो फोर्टिफाइड तेलों का इस्तेमाल करान।
7: मगर ये फोर्टिफाइड आसान क्या छो?
8: फोर्टिफाइड दूध तो तेल छो बराबर मकदारस में त्रावने यवा, विटामिन ए छो साने इम्यूनिटी बढ़ावान, तो विटामिन डी छो अड़जे मजबूत करान, दूध तो तेल छो बराबर मकदारस में।
7: मगर ये है सठा द्रो।
8: हाँ ना ना, सुई कमत मज मुशक ते सुई छो बेहतर पोषण दिवान।
9: पनुन तो पन्ने आयाले जिंदगी बनायू सेहत मंद, प्लस एफ अब निशान वोल फोर्टिफाइड फूड पान नयू बाजरस मंद दस्तियाब। फोर्टिफाइड वसाइलन है जानकारी खतर करियो www.ffrc.fssai.gov.in पर ड्राइव तक।
10: इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय ऑफिस ऑफ द कमिश्नर फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन J&K।
11: सेहत जो हर एक इंसान सुंद बुनियादी हक, मगर आज तिचियो सफर वारियन लुकन खतर मुश्किल। दूर दराज इलाकन मंज हॉस्पिटल तो सही मालूमातन हिस कमी, यम चीज

0: पसियों और पत्थरों के गिरने और खराब मौसमी सूरतहाल के बाइस बार बार ट्रैफिक में खलल और सड़क हादसा का बाइस बनने वाले मकाम बाईपास होंगे। शुभम यादव के मुताबिक अगरचे डिगडोल और पंटीहाल के दरमियान दो सुरंगों पर मुश्तमिल टनल मंसूबा अभी मुकम्मल तौर पर तैयार नहीं हुआ है, ताहम यात्रा के पेश नजर दो में से एक टनल को ट्रैफिक के लिए खोला जा रहा है, जिससे सफर का दौरान या कम होगा और ट्रैफिक जाम और हादसा में कमी आने की तवक्का है। एक सवाल के जवाब में शुभम यादव ने कहा कि पिछले साल अप्रैल के महीने में उधमपुर जिला के चिनानी और जखैनी उधमपुर के दरमियान आए सैलाबी रेलों, बादल फटने और पसियों से शहरों को पहुंचे नुकसान की मरम्मत का 90% काम मुकम्मल किया गया है और जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा हर लिहाज से बेहतर की गई है और अमरनाथ यात्रा और दीगर ट्रैफिक बगैर किसी दुश्वारी के चलता रहेगा। जिला रामबन में यात्रा के इंतजाम के हवाले से बात करने पर डिप्टी कमिश्नर रामबन मोहम्मद अलियास खान ने आज शाम शहरबीन को बताया कि जिला इंतजामिया रामबन ने चंद्रकूट में शरी अमरनाथ श्राइन बोर्ड की तरफ से कायम यात्रा निवास के आसपास कई तामीराती काम अंजाम दिए हैं, जबकि चंद्रकूट और लांबर ग्राउंड बानहाल में मुख्तलिफ समाजी और मजहबी जमातों की तरफ से लंगरों के कायम का अमल आइंदा चंद रोज में मुकम्मल होने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि इस दौरान सिक्योरिटी और बचाव एजेंसियों ने अमरनाथ यात्रा के दौरान किसी भी किस्म की हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए अमली मशक मार्क ड्रिल की, जिसमें पुलिस फौज CRPF CISF SDRF फायर सर्विसेज और होम गार्ड की टीमों ने शिरकत की और इस मशक का मकसद तमाम तरह की तैयारियों का जायजा लेना था। अलियास खान ने कहा कि रामबन से गुजरने वाली जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा का हिस्सा यात्रा के हवाले से इंतहाई अहमियत रखता है और इस हिस्से में ट्रैफिक को बिला खलल चलाने और दीगर सिक्योरिटी इंतजाम के तमाम काम मुकम्मल किए गए हैं। उन्होंने कहा कि रामबन के चंद्रकूट और लांबर ग्राउंड बानहाल को यात्रियों के लिए अहम सहूलियात के तौर तैयार किया जा रहा है, जहां जिला इंतजामिया रामबन की तरफ से सेहत सफाई बिजली पानी और तिब्बी इंतजाम जैसी तमाम बुनियादी सहूलियात से मजीद मुतद्दिद लंगर कायम किए जा रहे हैं और जिला रामबन के आम लोग और जिला इंतजामिया रामबन यात्रियों के इस्तकबाल के लिए पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने कहा कि श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड की तरफ से कई साल पहले चंद्रकूट में तामीर किए गए यात्रा निवास में 5000 से ज्यादा यात्रियों के लिए कयाम की सहूलियात मौजूद है, जो शाहरा बंद होने और खराब मौसमी सूरतहाल के सूरत में इस्तेमाल किया जा सकता है और इसके अलावा लंगरों और दीगर मकाम पर भी यात्रियों के ठहरने की सहूलियात रखी गई है।
1: मोहम्मद तस्कीन की रिपोर्ट आपने सुनी। इधर रियासी से जाहिद मलिक की इतला है कि आज चिराल सजरू रोड पर, जो कि महूर इलाके में वाकई है, एक दिलदोज सड़क हादसा पेश आया जिसमें दो अफराद हलाक हो गए, जबकि इस हादसे में चार मजीद अफराद के जख्मी होने की इत्तला है। तमाम जख्मियों को इलाज मुआवजे के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया है। समय अमरनाथ यात्रा के ऐसे इनेकाद के लिए तैयारियों का सिलसिला फकत जम्मू कश्मीर तक ही महदूद नहीं है। मुल्क की जिन रियासतों और जिन सूबों से यात्री कश्मीर आ रहे हैं, वहां तैयारियां जारी हैं। इधर कठुआ से रमेश मरहटा की इतला है कि आज कठुआ पठानकोट रूट पर एक अहम पुल को बहाल किया गया। याद रहे कि पुल बारिशों के दौरान तबाह हुआ था, ताहम पुल की अहमियत को मद्देनजर रखते हुए इसकी बहाली का काम सूरत से अंजाम दिया गया और आज इसे आमदरफ्त के लिए बहाल किया गया। इसी दौरान आज कठुआ में पेश आए एक सड़क हादसे में 23 अफराद के जख्मी होने की इतला है। बताया जाता है कि इनमें से 11 अफराद को बेहतर इलाज के लिए जीएमसी कठुआ अस्पताल मुंतकिल किया गया है। एक मिलीजुली रिपोर्ट के साथ कठुआ से रमेश मरहटा।
2: जम्मू पठानकोट कौमी शाहरा शाहर खड लखनपुर कठुआ में जो पुल पिछली बारिशों में तबाह हो चुका था, अब ये पुल ट्रैफिक की आमदरफ्त के लिए तैयार होकर आज ही इसे खोला गया है। श्री अमरनाथ यात्रा के दौरान बाज़ाबता तौर पे इसी पुल से गाड़ियों की आमदरफ्त को स्मूथ रहेगी। वहीं पर शहरबीन को बावसूख जराय से मालूम पड़ा है कि कटरा अमृतसर हाईवे एक्सप्रेस अब आखिरी मरहले में दाखिल हो चुका है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की पूरी कोशिश है श्री अमरनाथ यात्रा के दौरान इसी हाईवे एक्सप्रेस से ट्रैफिक की स्मूथ आमदरफ्त को यकीनी बनाया जाए, ताकि ट्रैफिक जैम से बचा जा सके और श्री अमरनाथ यात्रा श्रद्धालुओं को सफर के दौरान कोई तकलीफ दरपेश ना हो। वहीं पर जम्मू पठानकोट कौमी शाहरा की अहमियत को देखकर कालीबुड़ी चौक से जीएमसी कठुआ खरोट मोड़ पे एक फ्लाईओवर की तामीर को मंजूरी मिली है, जिसकी लागत का तखमीना 150 करोड़ रुपए बताया जा रहा है। ये फ्लाईओवर 2.2 किलोमीटर तक तामीर किया जाएगा। अभी हाल ही में नितिन गडकरी ने डॉक्टर जितेंद्र

0: सिंह की मुदाखलत के बाद इस फ्लाईओवर की तामीर को मंजूरी दी है। जम्मू पठानकोट कौमी शाहरा पर पिछले साल की तबाहकुन बारिशों से जम्मू कठुआ कौमी शाहरा पर दो अहम पुल को नुकसान पहुंच चुका था, जिसमें सहरखड लखनपुर और चडवाल का पुल काबिल जिक्र है। वहीं पर बनी बसोली में लैंडस्लाइड का खतरा हमेशा रहता आ रहा है। पिछले साल की बारिशों से बनी बसोली राबिता सड़क कई जगह पे ढह चुकी थी, जिस वजह से बीआरओ की मदद से पूरे एक साल के बाद अब बनी बसोली राबिता सड़क ट्रैफिक की आमदरफ्त के काबिल बनाया गया है। दरअसल पिछले साल की तबाहकुन बारिशों से राबिता सड़कों को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा हुआ था। जिला कठुआ के अभी भी कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर सड़कों की तामीर असर नौ की जा रही है। जिला कठुआ में राबिता सड़कों की तामीर और तरक्की के मद्देनजर तमाम तहसीलों को जिला एडमिनिस्ट्रेशन की पूरी टीम सरगर्मी से इन प्रोजेक्ट्स को मुकम्मल करने में जुट गई है, जबकि तहसील बिलावर और बसोली में दूरदराज इलाकों तक पहुंचने के लिए अभी भी राबिता सड़कें नहीं होने से मुकामी लोगों को काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अमृतसर कटरा हाईवे एक्सप्रेस जम्मू कश्मीर में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए मील का पत्थर साबित होगा। अमृतसर से कटरा तक का सफर महज 6 घंटों में तय होगा, जबकि अमृतसर जम्मू का सफर 5 घंटे में तय किया जाएगा। इस हाईवे एक्सप्रेस पर सफर के दौरान मुसाफिर किसी बैनुल अक्वामी सड़क सफर का एहसास महसूस करेंगे। वहीं दूसरी तरफ 3 जुलाई से होने वाली श्री अमरनाथ यात्रा के पहले पड़ाव के मद्देनजर जम्मू कश्मीर में दाखिली दरवाजा कहलाने वाला लखनपुर पर इंतजाम का जायजा लेने के लिए पिछले दिनों डीजी रेलवे पहुंच चुके थे। लखनपुर में डिविजनल जम्मू डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के अलावा मुख्य महकमों के आला अधिकारी अक्सर बेशतर इंतजाम का जायजा लेते रहते हैं। साफ सफाई, पीने का पानी, बिजली की सप्लाई का माकूल इंतजाम, लंगर और हिफाजती इंतजाम जम्मू कश्मीर सरकार की पहली प्रायोरिटी रहेगी। 3 जुलाई को लखनपुर में श्रद्धालुओं का वालेहाना इस्तकबाल किया जाएगा, जिसकी तैयारी में जिला एडमिनिस्ट्रेशन जुट चुकी है, जबकि श्री अमरनाथ यात्रा के पहले पड़ाव के तौर पे लखनपुर कठुआ की अपनी एक खास अहमियत रहती है। यहीं से यात्रा का शुभ आरंभ होता है, फिर बाजाबता तौर पे जम्मू के भगवती नगर में श्री अमरनाथ यात्रा के श्रद्धालुओं को आगे की तरफ जाने की इजाजत मिलती है।
1: कठुआ से रमेश मराठा की रिपोर्ट आपने सुनी, शहरबीन जारी है, हमारे साथ रहिएगा।
2: रेडियो एक ऐसी आवाज जो हर घर हर गली हर कूचे तक पहुंचे। अपने कारोबार को दीजिए एक नई पहचान, अपनी तरक्की को दीजिए एक नई उड़ान। रेडियो से इश्तिहार देकर बढ़ाएं अपने बिजनेस की शान। रेडियो तशहीर का सबसे आसान और सस्ता जरिया। राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर।
3: मोहब्बत वही जो दिल से हो, बात वही जो दिल से कही जाए, दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खाइबर सीमेंट का सर्रा सर्रा दिल से बना है। खाइबर सीमेंट, दिल से बनाओ।
4: सेहत तक हर इंसान की पहुंच एक बुनियादी हक है, लेकिन आज भी कई लोगों के लिए ये एक मुश्किल सफर है। दूर दराज इलाकों में हॉस्पिटल, लंबी कतारें और सही जानकारी की कमी, ये सब रुकावटें बनती हैं। इन छोटी छोटी रुकावटों की वजह से जरूरी इलाज भी रह जाता है, लेकिन अब इसका हल है जेके सेहत ऐप। ये है आपका डिजिटल साथी जो आपकी सेहत से जुड़ी हर जरूरत का ख्याल रखता है। अपने फोन में गूगल प्ले स्टोर या एप्पल स्टोर खोलिए, सर्च बॉक्स में टाइप कीजिए जेके सेहत ऐप और इंस्टॉल करके रजिस्टर हो जाइए। ये ऐप एंड्रॉइड और आईफोन दोनों पे अवेलेबल है। इस ऐप से डॉक्टर से अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, नजदीकी हॉस्पिटल ढूंढ सकते हैं, ऑनलाइन सलाह और मेडिकल रिपोर्ट्स देख सकते हैं, एम्बुलेंस बुक कर सकते हैं, दवाइयों की अवेलेबिलिटी चेक कर सकते हैं, वैक्सीनेशन रिकॉर्ड्स देख सकते हैं, ब्लड बैंक इंफॉर्मेशन भी ले सकते हैं और सरकारी हेल्थ स्कीम्स के बारे में भी जान सकते हैं। और साथ ही साथ आप प्राइवेट हेल्थ केयर प्रोफेशनल होम सर्विस भी बुक करवा सकते हैं।

0: ऐप में AI सिम्टम चेकर चैट बॉट भी अवेलेबल है। चाहे आप मरीज हो, डॉक्टर, स्टूडेंट या एक आम शहरी, JK सेहत ऐप सबके लिए है। इट्स सिंपल, सेफ और आपके लिए।
1: इश्यूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय नेशनल हेल्थ मिशन JK।
2: हाय, नमस्ते, मैं हूँ खुशी, आपकी TB साथी। पूछिए जो पूछना है।
3: TB के सिम्टम्स क्या होते हैं?
2: बताती हूँ।
3: ट्रीटमेंट कितने दिन चलता है?
2: ये भी बताती हूँ।
3: और मेडिसिन लेना भूल जाऊँ तो?
2: रिमाइंड भी करवाती हूँ।
4: अब TB से जुड़ी हर जरूरी जानकारी, सपोर्ट और केयर सब कुछ आपके स्मार्टफोन में TB मुक्त भारत ऐप के साथ। यहाँ मिलेगी TB से जुड़ी हर जानकारी, नजदीकी टेस्टिंग और ट्रीटमेंट सेंटर्स की लोकेशन, ट्रीटमेंट ट्रैकिंग और मेडिसिन रिमाइंडर्स और एक्सपर्ट गाइडेंस भी 24/7 बिल्कुल फ्री और कॉन्फिडेंशियल। आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए TB मुक्त भारत ऐप।
5: TB हारेगा देश जीतेगा, TB हारेगा देश जीतेगा।
2: ज्यादा जानकारी के लिए 1-800-11-6666 पर कॉल करें या अपने नजदीकी राजकीय स्वास्थ्य केंद्र पर संपर्क करें। जन जन का रखे ध्यान, TB मुक्त भारत अभियान।
6: इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय डिस्ट्रिक्ट ट्यूबर क्लोसेस ऑफिसर डोडा, किस्तवाड़ एंड रामबन।
7: जम्मू कश्मीर के हर घर की आवाज शहर भी नाप आकाशवाणी श्रीनगर से मीडियम वेव और FM के अलावा आकाशवाणी कुपवाड़ा और भद्रवाह के साथ साथ DTH और आकाशवाणी के मोबाइल ऐप पर सुन रहे हैं। त्राल से शबीर भट्ट की इतला है कि त्राल के गुरुद्वारा बोर्डिंग हाउस से आज गुरुद्वारा सिंह सभा सहमू तक एक नगर कीर्तन का इनेकाद किया गया, जिसके दौरान श्री गुरु ग्रंथ साहब जी को अकीदत एहतराम से गुरुद्वारा सिंह सभा सहमू तक ले जाया गया। जुलूस में अकीदतमंदों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मुख्तलिफ इलाकों से गुजरने के दौरान मुस्लिम बिरादरी ने अकीदतमंदों का वारहाना खैर मकदम किया। कई मकाम पर शुरका के लिए मशरूबात का इंतजाम भी किया गया था। वजह रहे कि कांग्रेस के नायब सदर सुरेंद्र सिंह चन्नी ने भी इस नगर कीर्तन में शरीक हुए। इधर साबिक MLA दिवसर मोहम्मद अमीन भट्ट ने आज इलाके के मुख्तलिफ देहात का दौरा करके आवाम को दरपेश मसाइल और मुश्किलात का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि चोरट, चौगाम, खारगुंड, बेरीगाम, ब्रंग, लामड़ और मुढ़े के इलाकों में पीने के साफ पानी और आबपाशी की शदीद किल्लत है, जिससे मकामी आबादी को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मोहम्मद अमीन भट्ट ने हुकूमत और मुतल्लिक महकमों से पुरजोर मुतालबा किया कि मुतासर इलाकों में पीने के पानी और आबपाशी के निजाम को फौरी तौर पर बहाल किया जाए और आवाम को बुनियादी सहूलियात फराहम करने के लिए हंगामी इकदाम किए जाएं। दरअसल PDP के सदर और साबिक वजीर आला महबूबा मुफ्ती ने आज वेरीनाग के तारीखी ओमूह मंदिर का दौरा किया, जहां उन्होंने अकीदतमंदों से मुलाकात की और उनके साथ तबादले ख्याल किया। मीडिया से बात करते हुए मौसूफा ने कश्मीरी पंडित बिरादरी से अपील की कि वो कश्मीर वापस आएं और माजी की तरह अम मोहब्बत और बाहमी एतमाद के माहौल में अपनी जिंदगी गुजारें। उन्होंने कहा कि कश्मीर हमेशा से मजहबी रवादारी, भाईचारे और मुश्तरक तहजीब की अलामत रहा है। सरन गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज फॉर वुमेन अनंतनाग ने जिला इंतजामिया अनंतनाग के इश्तराक से श्री अमरनाथ जी की यात्रा एक कसीर जहती तनाजुर के उनवान से दो रोजा बैन अलाक्वामी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया है। कॉन्फ्रेंस में माहिरीन तालीम, महक्कीन, अफसरान और तलबा शरीक हो रहे हैं। मुकर्ररीन ने आज श्री अमरनाथ जी यात्रा की तारीखी, सकाफती, मजहबी और समाजी इकतसादी अहमियत पर रोशनी डालते हुए कहा कि यह यात्रा कश्मीर की मुश्तरक तहजीबी विरासत और बाहमी हमाहंगी की अलामत है। कॉन्फ्रेंस में प्रोफेसर डॉक्टर खालिदा हसन, प्रोफेसर फारूक अहमद मलिक, प्रोफेसर डॉक्टर मुनव्वर आलम खालिद, प्रोफेसर हिमांशु राय और डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग डॉक्टर बिलाल मोहिद्दीन भट्ट समेत मुतअद्दिद शख्सियात ने अपने ख्यालात का इजहार किया। कॉन्फ्रेंस में जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की शिरकत भी मुतवक्के है। कॉन्फ्रेंस के ताल्लुक से जिला तरक्याती कमिश्नर अनंतनाग डॉ बिलाल मोहिद्दीन भट्ट ने मीडिया से बात करते हुए कहा,
8: जो इनिशिएटिव हम लोगों ने लिया है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन अनंतनाग ने और जो डिग्री कॉलेज वुमेन अनंतनाग है उन्होंने किया है, जो हमने इस जो स्ट्रक्चर को इंस्टीट्यूशनलाइज किया इन फॉर्म ऑफ एन कॉन्फ्रेंस, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, जिसमें हमने 100 से ज़ायद रिसर्च पेपर्स को प्रेजेंट किया जाएगा दो दिन में। 300 से ज़्यादा डेलीगेट्स आए हुए हैं और कुछ बहुत बड़ी हस्तियां, हिस्टोरियन, स्कॉलर्स जिनको और इन्वायरमेंटलिस्ट्स यहां पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री से आए हुए हैं। कुछ स्पीकर जो है डिफरेंट कंट्रीज, इंटरनेशनल पब्लिकेशंस भी हमारे पास आई हुई है और ये मिला जुला के एक अच्छा प्रेजेंटेबल दो दिन का जो कॉन्फ्रेंस है। और आज पहला सेशन था, इनॉग्रल सेशन था और इसमें यहाँ पर हम लोगों ने इसको किया और आप देखेंगे कि किस पार्टिसिपेशन जो इसमें रहेगी, ना कि सिर्फ टेक्निकल एस्पेक्ट पे जो स्कॉलर्स अपना प्रेजेंट पेपर करेंगे, पर साथ ही साथ जो स्टेक होल्डर्स है जो इस यात्रा को कंडक्ट करते हैं, चाहे पहलगाम में कोई पिट्ठू वाला हो, कोई घोड़े वाला हो या

0: एसोसिएशन हो, सिविल सोसाइटीज वहाँ की हो, अनंतनाग की हो, पहलगाम की हो, ये सब लोग यहाँ पर आए हुए हैं और साथ ही साथ हमारे साथ जो और भी कम्युनिटीज, डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटीज के जो स्टेक होल्डर्स है वो आए हैं और डिलीबरेट कर रहे हैं इस चीज के इसके ऊपर। मुझे लगता है मिला जुला के दिस विल बी दिस इवेंट जो टू डे इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन द सेक्रेट जर्नी ऑफ श्री अमरनाथ जी है, ये आप हर साल होगा और इंस्टीट्यूशनल तरीके से होगा और ये मैसेज जो है एम्पलीफाई करने के लिए हम लोग इस चीज को और ज्यादा आपके माध्यम से इसको और ज्यादा एम्पलीफाई कर रहे हैं।
1: ये थे जिले तरक्याती कमिश्नर अनंतनाग डॉक्टर बिलाल मोहिद्दीन भट्ट, जिन्होंने आज गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज फॉर वुमेन और जिला इंतजामिया के बाहमी इश्तराक से मुनाकिदा कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। इधर आज 8वें मुहर्रम के सिलसिले में बुगची खान साहब में भी एक जुलूस बरामद हुआ। ये जुलूस में पीडीपी के सीनियर लीडर मंजूर अहमदानी ने भी शिरकत की। काबिनी वजीर सतीश शर्मा ने आज पहलगाम में एक जायजा इजलास के दौरान श्री अमरनाथ जी यात्रा की तैयारियों का जायजा लिया। इजलास में ट्रांसपोर्ट, जरूरी अशिया की फराहमी और दीगर बुनियादी सहूलियात की फराहमी का बगौर जायजा लिया गया। आज जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने स्कॉस्ट कश्मीर की 36वीं यूनिवर्सिटी काउंसिल मीटिंग की सदारत की। इधर जम्मू कश्मीर गुजर बकरवाल कॉन्फ्रेंस के जनरल सेक्रेटरी चौधरी मोहम्मद यासीन पोसवाल ने जल शक्ति महकमे के डायरेक्टर फाइनेंस लतीफ अहमद पोसवाल और ब्लॉक मेडिकल अफसर यारीपुरा डॉक्टर अब्दुल गनी पोसवाल की फूफी जान के इंतकाल पर गहरे रंज का इजहार करते हुए सोगवारा से ताजियत की है। इसके साथ ही शहरबीन का वक्त अब खत्म हो जाता है। प्रोग्राम के मेजबान और एडिटर अशफाक लोन और प्रोग्राम की निगरान समीना शाह को इजाजत दें। खुदा हाफिज।
2: शहरबीन आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताबुन कर रहे थे खैबर सीमेंट, मजबूती और पायदारी की जमानत खैबर सीमेंट। अपनी तामीरात दिल से बनाइए।
3: आप बिजनेस की तरक्की को लेकर है फिक्रमंद? अरे रेडियो पे दे इश्तिहार और बढ़ाएं अपना कारोबार। अब फिक्र की क्या बात जब है कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस का साथ। जी हाँ, अपने कारोबार की उड़ान को दीजिए एक नई पहचान। रेडियो से इश्तिहार देकर बढ़ाएं अपने बिजनेस की शान। राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर, फोन नंबर 9419000025।
4: मून SWR पीवीसी पाइप्स एंड फिटिंग्स। जी हाँ, मून वाटर टंकियां बनाने वाले अब लाए हैं मजबूत, पायेदार और आला तरीन क्वालिटी के मून SWR पीवीसी पाइप्स एंड फिटिंग्स। बस नाम ही काफी है, मून SWR पीवीसी पाइप्स एंड फिटिंग।
5: घर का एसी हो या गीजर, वोल्टेज का हीरो सिर्फ एक BS वॉइस स्टेबलाइजर्स। पावर फ्लक्चुएशन सॉर्टेड, लॉन्ग लाइफ फॉर योर अप्लायंसेस गारंटीड। BS वॉइस, दैट्स बेस्ट सर्विस। कॉल नाउ 9419001960।
6: मोहब्बत वही जो दिल से हो, बात वही जो दिल से कही जाए, दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खाइबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है। खाइबर सीमेंट, दिल से बनाओ।
7: आज आई मेरी मेडिकल रिपोर्ट तो मेरे शरीर में विटामिन ई तो विटामिन बी हिच कमी द्रामस।
8: तो क्या शक्ल फोर्टिफाइड दूध तो फोर्टिफाइड तेलों का इस्तेमाल करान?
7: मगर ये फोर्टिफाइड आसान क्या छो?
8: फोर्टिफाइड दूध तो तेल छो बराबर मकदारस में त्रावने यवा। विटामिन ए छो साने इम्यूनिटी बढ़ावान तो विटामिन डी छो अड़जे मजबूत करान। दूध तो तेल छो बराबर मकदारस में।
7: मगर ये है आज सठा द्रो?
8: हाँ ना ना सुई कमत मज मुशक ते सुई छो बेहतर पोषण दिवान।
9: पनुन तो पन्ने आयाल जिंदगी बनाई सेहत मंद तो प्लस एफ निशान वोल फोर्टिफाइड फूड पान नयो बाजरस में दस्तियाब फोर्टिफाइड वसाइलन हिज जानकारी खतर करियो www.ffrc.fssai.gov.in पर राइट तक।
10: इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय ऑफिस ऑफ द कमिश्नर फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन जेंट।
11: सेहत जो हर एक इंसान सुन बुनियादी हक, मगर आज तो यह सफर वारियन लुकन खतर मुश्किल। दूर दराज इलाकन में हॉस्पिटल तो सही मालूमात हिज कमी, यम चीज छ रुकावट बनान तो जरूरी इलाज छ इत्ती रोजान। मगर वन छ अत हाल JK सेहत ऐप یہ تہد ڈجیٹل ساتھی اس صحت مطابق کن ضرورت خیال تاوان یہ ایپ اینڈرائڈ تو آئی فون دشونی مز دستیاب یت ایپ مزھ ڈاکٹر سز اپوائنٹمنٹ بکنگ نزدیکی ہاسپٹل ٹھانڈ آن لائن صلاح تو میڈیکل رپورٹس ہاؤن اے آئی سمٹم چیکر چیٹ باٹ ایمبولینس بک کریں دواہن ہز اویلیبلٹی چیک کریں ویکسینیشن ریکارڈس چیک کریں بلڈ بینکچ معلومات تو سرکاری ہیلتھ سکیمن ہز زانکاری بیچ ات سائیویٹ ہیلتھ کیئر پروفیشنل

0: होम सर्विस ते अवेलेबल चाहे तुम मरीज डॉक्टर स्टूडेंट या अक साध शहरी छो जेके सेहत छ सारनी सूत सिंपल सेफ ते सिर्फ तोहे खतरा
1: इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय नेशनल हेल्थ मिशन जेएनके।

आदाब, ये आकाशवाणी श्रीनगर है। खबरों के बुलेटिन के साथ मैं संजीव कुमार। पहले अहम खबरों की सुर्खियां। भारत ने पाकिस्तान की तरफ से अक्वामी मुत्तहदा के सलामती काउंसिल में कश्मीर का मामला उठाने पर जताया एतराज। लेफ्टिनेंट गवर्नर

मुकम्मल करने की हिदायत दी है। आज अनंतनाग में यात्रा 2026 के सिलसिले में तैयारियों का जायजा लेने की गरज से बुलाई गई एक मीटिंग की सदारत करते हुए उन्होंने सभी मुतालिका महकमों को बाहमी तालमेल के साथ तमाम इंतजाम वक्त से पहले मुकम्मल करने की हिदायत दी। सेहत व तिबी तालीम की वजीर सकीना इत्तू ने रुकूमात के मुनसिफाना इस्तेमाल के साथ तिबी निगहदाश्त के सेक्टर में बुनियादी ढांचे के सभी प्रोजेक्टों को तयशुदा जवाबित पर अमल पैरा रहते हुए बरवक्त मुकम्मल करने पर जोर दिया है। वजीर मौसुफा ने आज सुपर स्पेशलिटी अस्पताल श्रीनगर के ओपीडी कम्प्लेक्स और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर के मल्टी फैसिलिटी सेंटर पर जारी काम की पेशरफ्त का तफसीली जायजा लिया। उन्होंने साथ ही सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल पहलगाम में जेर तामीर 50 बिस्तरों वाली इजाफी इमारत के काम का भी जायजा लिया। वजीर ज़राअत जावेद अहमद डार ने शोपियां और अनंतनाग अजला के हॉर्टिकल्चर जोन्स में दरख्तों से खुद ब खुद मेवा गिरने के वाकयात का जायजा लेने के लिए आज एक आला सतही जायजा मीटिंग की सदारत की। उन्होंने अफसरों को हिदायत दी कि वो जमीनी सतह पर तमाम तर नुकसान का जायजा लें और इस सिलसिले में मियादबंद तौर पर अपनी रिपोर्टें जमा कराएं। वजीर ने डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर की सरबराही में एक कमेटी तश्कील देने की हिदायत दी ताकि दरख्तों से मेवा गिरने के इस मामले की तफसीली जांच की जा सके। जल शक्ति और माहौलियत के वजीर जावेद अहमद राणा ने कहा है कि उमर अब्दुल्ला की सरबराही वाली सरकार जम्मू कश्मीर के हर घर को साफ मुनासिब और काबिल एतमाद पीने का पानी फराहम करने के लिए पुरअज़्म है। वो अनंतनाग के डूरू कस्बे में आज एमजीडी रैपिड सैंड फिल्ट्रेशन प्लांट का इफ्तिताह कर रहे थे। वजीर मौसुफ ने कहा कि पीने के पानी के बुनियादी ढांचे में जदीदियत लाने से ही लोगों के लिए पीने के पानी की वाफिर फराहमी को यकीनी बनाया जा सकता है। इससे कबल उन्होंने काजीगुंड में जल जीवन मिशन के तहत वाटर सप्लाई स्कीम पर किए जा रहे कामकाज का भी जायजा लिया। ये खबरें आप आकाशवाणी श्रीनगर से सुन रहे हैं। खबरें आप आकाशवाणी के मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज ऑन AIR और DTH पर भी समाप्त कर सकते हैं। महकमा हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम कश्मीर को इसके जदीद GIQR कोड मैनेजमेंट सिस्टम के लिए कौमी सतह पर सुकाच अवार्ड अता किया गया है। इस सिस्टम के जरिए QR कोड को स्कैन करके दस्तकारी मसनूआत बिलखसूस पश्मीना कानीशाल हाथ से तैयार किए गए कालीन व दीगर GI रजिस्टर्ड मसनूआत के खरीदार इन मसनूआत की क्वालिटी और इनकी सदाकत को मालूम कर सकते हैं। इस कामयाबी पर महकमे के डायरेक्टर मुसरत इस्लाम ने मुतलका टेक्निकल टीमों की काविशों को सराहते हुए उन्हें मुबारकबाद पेश की है। आज पासपोर्ट सेवा दिवस मनाया जा रहा है। 24 जून 1967 को पासपोर्ट से मुतालिक कानून बनाया गया था और यह दिन इसी मुनासिबत से मनाया जाता है। वजारत खारजा ने कहा है कि इलाकाई पासपोर्ट दफातर और बैरून ममालिक में काम करने वाले भारतीय मिशनों ने साल 2025 के दौरान 1.5 करोड़ पासपोर्ट इजरा किए हैं। वजारत ने मजीद कहा है कि गुज़श्ता बरस 10 पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र खोले गए हैं और इस साल भी इतनी ही तादाद में ऐसे केंद्र खोले जा रहे हैं। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि एक अहम पेशरफ्त यह भी है कि अब चिप वाले पासपोर्ट की शुरुआत हो गई है जो ज्यादा महफूज और मुतहरिक हैं। अभी तक 1,47,00,000 चिप वाले पासपोर्ट जारी किए जा चुके हैं। मुहर्रमुल हराम की 8 तारीख की मुनासबत से आज वादी भर में आजादारी के जुलूस निकाले गए। आलम शरीफ का सबसे बड़ा जुलूस श्रीनगर के गुरु बाजार से डलगेट की तरफ बरामद किया गया जिसमें मुख्तलिफ अजला से आए हुए आजादारों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। अकीदतमंदों ने मरसिया और नवाखानी करके हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और शुहदाए करबला को खराज अकीदत पेश किया।

इंतजामिया ने जुलूस के एहसन और पुरअमन इनेकाद के लिए हिफाजत के सख्त बंदोबस्त किए थे। इस दौरान 10 मुहर्रम को मनाए जाने वाले योम आशूरा के सिलसिले में भी तैयारियों और इंतजाम को हतमी शक्ल दी जा रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुआविन जनरल सेक्रेटरी और राज्यसभा के मेंबर चौधरी मोहम्मद रमजान ने कहा है कि रियासती दर्जे की बहाली जम्मू कश्मीर के आवाम का आईनी, जमहूरी और जायज हक है। पार्टी हेडक्वार्टर श्रीनगर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के अहदेदारों और कारकुनों से खिताब करते हुए उन्होंने मरकजी सरकार से मुतालबा किया कि जम्मू कश्मीर का

0: रियासत का दर्जा मजीद किसी ताखीर के बगैर बहाल किया जाना चाहिए। चौधरी रमजान ने आवाम को अपोजिशन के मनफी प्रोपगंडा से बाखबर रहने की सलाह दी। प्रदेश बीजेपी के सदर और राज्यसभा मेंबर सत शर्मा की सदारत में पार्टी हेडक्वार्टर त्रिकुटा नगर जम्मू में सिलसिलावार मीटिंगें मुनक्कद हुई, जिनके दौरान डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, स्मृति पखवाड़ा और डिजिटल तरबती प्रोग्रामों के सिलसिले में तैयारियों का जायजा लिया गया। अनंतनाग जिले के मटन इलाके में नॉर्थ जोन कल्चरल सेंटर और जम्मू कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेजेस की तरफ से श्री गुरु तेग बहादुर के 350वें शहीदी दिवस की मुनासिबत से एक खसूसी नुमाइश का इनेकाद किया गया। हमारे नुमाइंदे तसदुक रशीद ने खबर दी है कि नुमाइश के दौरान गुरु तेग बहादुर जी की तालीमात, फलसफे और उनकी अजीम कुर्बानी, नीज उनकी जिंदगी को दर्शाने वाली माला माल मुसविरी को नुमाइश पर रखा गया था। इस मौके पर महकमा सकाफत के प्रिंसिपल सेक्रेटरी ब्रिजमोहन शर्मा ने आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा,
1: देखिए ये भारत सरकार की तरफ से मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा नॉर्थ जोन कल्चर सेंटर है जो पटियाला से, उनकी तरफ से ये एक एग्जीबिशन लगाई है गुरु तेग बहादुर जी की, जो 375वां मार्टिरडॉम था। पूरे देश में भारत सरकार के आदेशानुसार वो पूरे देश में पूरा एक साल उसको कमेमोरेट किया जा रहा है, उसमें एग्जीबिशन लग रही है देश में। लास्ट नवम्बर से शुरू हुआ था, नवम्बर 2025 से और नवम्बर 2026 तक होगा, ये उसी का एक पड़ाव है कि आज मटन में ये इस तरह से गुरु तेग बहादुर जी की पूरी जिंदगी, उनकी टीचर, उनकी प्रीचिंग्स पे पूरा उनकी जो एग्जीबिशन लगाई है, इसमें लोग श्रद्धालु यहाँ आए हैं और देखे और उनको इसमें उनको इनसाइट मिल रहा है। मैसेज वही है जो सबका है, पीस होनी चाहिए, भाईचारा होना चाहिए, अमन चाहिए और अमन से ही दुनिया चल पाएगी।
0: कुलगाम जिले में नेशनल टग ऑफ वार चैंपियनशिप शुरू हो गई है, जिसमें मुल्क भर की 17 रियासतों से आई हुई टीमें हिस्सा ले रही हैं। चैंपियनशिप का इफ्तिताह कुल हिंद कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी और एमएलए डूरू गुलाम अहमद मीर ने किया। उन्होंने चैंपियनशिप का एहतमाम करने वालों को एथलीटों के लिए इस तरह का प्लेटफार्म फराहम करने पर शाबाशी दी। इफ्ताही तकरीब पर चैंपियनशिप में हिस्सा लेने वाले एथलीटों, अहम शख्सियात और मकामी खेल शायकीन की एक बड़ी तादाद मौजूद थी। हमारे नुमाइंदे खुर्शीद पडरू ने कहा है कि कौमी सतह का यह इवेंट मुनाकिद होने से मकामी नौजवान भी खेलकूद की तरफ रागिब होने लगे हैं। वादी में इन दिनों सयाहों का अच्छा खासा रश देखने को मिल रहा है। श्रीनगर के मारूफ झील डल और मुगल बागात के अलावा वादी के दूसरे सियाहती मकामात पर भी सयाहों का अच्छी खासी तादाद नजर आ रही है, जो यहां के कुदरती नजारों से काफी लुत्फ महसूस कर रहे हैं।
2: मेरा नाम अर्शनूर कौर औचला है और मैं बठिंडा पंजाब से हूँ। मेरे को अभी 3 दिन हो गए हैं, अभी हम दूध पथरी विजिट किया है। मिक्स सा मौसम है, कभी ज्यादा ठंडी हो जाती है और कभी थोड़ी थोड़ी गर्मी है, लेकिन एक बात और, जो कश्मीर के जो लोग हैं ये सबसे बेस्ट है। इनकी जुबान माशाल्लाह सुभान अल्लाह, इतने प्यारे लोग है ना, ये मेरे को तो दिल को टच कर गए। मेरे को सभी ने इतना इतना प्यार दिया।
3: माय नेम दिलावर सिंह, आई एम फ्रॉम हरियाणा। कश्मीर इज़ द टॉप ऑफ द ब्यूटी, दूधपथरी इज़ अ ब्यूटीफुल, सो मच ग्रीनरी, लैंडस्केप्स, मीडोज, राइट, एंड वन ऑफ द लाइक वन ऑफ द बेस्ट स्टाफ।
0: महकमा आला तालीम ने जम्मू कश्मीर के कॉलेजों में तदरीसी साल 2026-27 के लिए अंडर ग्रेजुएट और इंटीग्रेटेड पीजी कोर्सेज में दाखिले की खातिर स्पॉट राउंड का ऐलान किया है। इस अमल के जरिए दाखिले के दूसरे राउंड की तकमील के बाद बाकी मांदा खाली नशस्तों को पूर किया जाएगा। जम्मू कश्मीर के डायरेक्टर कॉलेजेस डॉक्टर शेख एजाज बशीर ने तालिब इल्मों से तलकीन की है कि वो स्पॉट राउंड से भरपूर इस्तेफादा करें। जम्मू कश्मीर को मनुष्यात की लानत से छुटकारा दिलाने के लिए 100 दिनों पर मुश्तमिल नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान के तहत सरगर्मियां शदमत से जारी हैं। मनुष्यात के खिलाफ एलजी का पैगाम,
4: ड्रग स्मगलिंग से जुड़े तस्कर का पासपोर्ट, उसका ड्राइविंग लाइसेंस, कार्ड आधार नंबर, उसके आर्म्स लाइसेंस, सब कुछ निरस्त कर दिया जाएगा और अगर फरार होगा तो लुकआउट सर्कुलर जारी किया जाएगा। एनडीपीएस एक्ट के तहत उसकी चल अचल संपत्ति भी अटैच की जाएगी, बैंक अकाउंट फ्रीज किया जाएगा और उसके खिलाफ फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन भी प्रारंभ किया जाएगा।
0: और अब आखिर पर मौसम से मुतल्लिक जानकारी। محکمہ موسمیات کے مطابق جموں کشمیر میں اگلے 24 گھنٹوں کے دوران کہیں کہیں پر گرج چمک کے ساتھ ہلکی بارش کا امکان ہے۔ سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 32 ڈگری جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 16.2 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 39.5 ڈگری جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 27.4 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا۔

0: श्रीनगर में कल तुलई आफ्ताब सुबह 5:21 और गुरुब आफ्ताब शाम 7:46 पर होगा। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।
1: समईन आदाब, आज का तबसरा लिए मैं शबीरुज़्ज़मां। जमहूरी निज़ाम में हुक्मरानी अवाम पर मरकूज होती है और यूं जमहूरी तर्ज निज़ाम में बुनियादी सतह के जमहूरी इदारों का अहम रोल होता है। बदकिस्मती से जम्मू कश्मीर पिछली कई दहाइयों के दौरान नामसाइद सियासी और सलामती हालात से दुचार रहा, ऐसे में यहां पंचायती और बलदियाती इदारों का रोल ज्यादा फाल नहीं रहा। 2019 में रियासी दर्जा खत्म किए जाने और इलाके को मरकजी निजाम वाला इलाका बनाए जाने के बाद 3 सतही पंचायती राज कायम करने की पहल की गई। श्रीनगर में कल पंचायती राज इदारों की मरकजी वजारत के अहतमाम से इन इदारों के कामकाज से मुतल्लिक एक वर्कशॉप में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने यूटी में 2020 से 2023 के दरमियान हुई उस बड़ी पहल और उसके नुमाया असरात को उजागर किया। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में इन इदारों के इंतखाबात के बाद बुनियादी सतह पर तरक्याती अमल और अवामी खिदमात को बेहतर बनाने में नुमाया तब्दीली रोनुमा हुई। मनोज सिन्हा ने कहा कि जहां 2020 में अवाम को डिजिटल जराये से 35 खिदमात हासिल हो रही थीं, वहीं इनकी तादाद 2023 तक 1100 हो गई थी और जम्मू कश्मीर ने पूरे मुल्क में अव्वल दर्जा हासिल किया था। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि इस दौरान यूटी की 98% पंचायतों को डिजिटल निजाम से जोड़ने का संग मील भी तय हुआ था। इस बात में कोई शक नहीं है कि पंचायती और बल्दियाती इदारों के चुनाव होने से जम्मू कश्मीर में इन इदारों के कामकाज में अवामी सहूलियत और दिलचस्पी बढ़ी थी, ताहम ये भी हकीकत है कि ये चुनाव सिक्योरिटी और सियासी हालात के एक खास तनाजुर में हुए थे और अक्सर मेन स्ट्रीम जमातों ने तब इन चुनावों का बायकॉट किया था। बदकिस्मती से इन इदारों की मुकर्ररा मियाद खत्म होने पर ये चुनाव बरवकत करने की तरफ संजीदा तवज्जो नहीं दी गई और सरदस्त इन इदारों में कोई अवामी नुमाइंदगी नहीं है। अभी भी इस ताल्लुक से कोई वाजह टाइम टेबल सामने नहीं आया है कि यूटी में इन इदारों के चुनाव कब होंगे। ये बात मुसल्लम है कि अब की बार इन इदारों के चुनाव में सभी मेन स्ट्रीम जमातों की सरगर्म शिरकत मुतवक्कु है और अवामी सतह पर भी ज्यादा इन्हिमाक से शिरकत का इम्कान है। इन इदारों के लिए यूटी होते हुए हर मुकर्ररा मियाद के बाद बिना किसी वक्फे के चुनाव का इनेकाद सरदस्त मरकजी सरकार और LG की जिम्मेदारी है। ये सवाल अपनी जगह पर कायम है कि 2020 में जिस तरह डोल पीट कर इन इदारों के लिए चुनाव कराए गए, उनकी मियाद खत्म होने पर दोबारा चुनाव कराने में वो इन्हिमाक मफकूद क्यों रहा। कल के वर्कशॉप से इंडिया मिल रहा है कि मरकजी हुकूमत जम्मू कश्मीर में इन इदारों को फिर से फाल देखने की मुतमनी है। तवक्कु की जा सकती है कि अब जबकि पंचायती इदारों के लिए वोटर फहरिस्तों पर हाल ही में नजरसानी मुकम्मल हो गई है, हुकूमत बिला ताखीर इन इदारों के लिए चुनाव शेड्यूल का ऐलान करेगी। यूं पंचायती और बल्दियाती इदारों के लिए शफाफ और मुनसिफाना चुनाव से बुनियादी सतह पर जमहूरियत मजबूत होगी और तरक्याती अमल में अवामी शिरकत में इजाफा होगा। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कल इन इदारों के फाल और मुअसर किरदार को उजागर करके इस बात का इशारा दिया है कि इस मामले में अब मजीद ताखीर नहीं होगी। बाज मुबशिरीन का ख्याल है कि सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा के इख्तिताम पजीर होने पर सितंबर अक्टूबर में जम्मू कश्मीर में पंचायती राज इदारों का चुनाव होगा और श्रीनगर में कल मुनक्कदा वर्कशॉप इसी बात का एक इंदिया था। तबसरा खत्म हुआ। शब बखैर।
2: कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर, आवाज जो आपके कारोबार को एक नई उड़ान दे। क्या आप चाहते हैं कि आपकी सोच आपका कारोबार हर दिल में जगह बनाए? तो देर किस बात की, राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर के साथ और अपने बिजनेस को दीजिए एक नई उड़ान, एक नई पहचान।
3: वादे की आवाज, पाकिस्तान और पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में सुनने वालों के लिए ये प्रोग्राम हर रोज हमारे वक्त के मुताबिक 8 बजे और पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 7:30 बजे शाम नश होता है।

प्रोग्राम वादी की आवाज़ सुनने वाले सभी सामीन के खिदमत में हमारा खलूस भरा आदाब। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे भारत की तरक्की की, खसूसी तौर पर हम बात करेंगे भारत की सेहत और तिब के मैदान में तरक्की की। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की भी बात करेंगे, लेकिन प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं भारत की तरक्की से। समय किसी भी मुल्क की तरक्की का असल पैमाना उसके अवाम की सेहत, तालीम और मयारे ज़िंदगी होता है। एक सेहतमंद कौम ही तरक्की की राह पर तेज़ी से आगे बढ़ सकती है। भारत ने इस हकीकत को मद्देनज़र रखते हुए सेहत के शोबे में वसी पैमाने पर सरमायाकारी की है, जिसके मस्बत नतीज आज वाज़ेह तौर पर नज़र आते हैं। आज़ादी के इब्तदाई बरसों में भारत को सेहत के हवाले से कई संगीन चैलेंजेस का सामना था। मुतदी अमराज, कमज़ोर तिब्बी ढांचा, देही इलाकों में तिब्बी सहूलियात की कमी और तरबियत याफ्ता डॉक्टरों की महदूद तादाद बड़े मसाइल थे। लेकिन वक्त के साथ साथ हुकूमत, तिब्बी इदारों, साइंसदानों और सेहत के माहिरीन की मुश्तरका कोशिशों ने सूरतेहाल को तब्दील करना शुरू किया। हालिया बरसों में शोबे की तरफ जो तवज्जो दी गई वो तारीखी है, क्योंकि हालिया बरसों में मुतअद्दिद तिब्बी इदारों जैसे एम्स वगैरह को मोर्ज़े वजूद में लाया गया और मुतअद्दिद सेहत स्कीमों जैसे आयुष्मान भारत को मुतारिफ किया गया। आज भारत दुनिया के उन ममालिक में शुमार होता है जहां जदीद तिब्बी तहकीक, अद्वियात साजी, सर्जरी और सेहत आमा के शोबों में नुमाया तरक्की हुई है। मुल्क भर में हजारों सरकारी और निजी अस्पताल अवाम को तिब्बी खिदमात फराहम कर रहे हैं। जदीद तिब्बी आलात, डिजिटल तशखीस और जदीद इलाज की सहूलियात ने मरीजों के लिए सेहत की बेहतर खिदमात को मुमकिन बनाया है। तिब्बी तालीम के मैदान में भी भारत ने बड़ी पेशरफ्त की है। मुल्क में मुतअद्दिद मेडिकल कॉलेज, तहकीकी इदारे कायम किए गए हैं जहाँ हर साल हजारों डॉक्टर, नर्सें और तिब्बी माहिरीन तरबियत हासिल करते हैं। भारतीय डॉक्टर न सिर्फ मुल्क में बल्कि दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में अपनी महारत और काबिलियत का लोहा मनवा रहे हैं। अद्वियात साजी की सनत भारत की एक बड़ी कामयाबी समझी जाती है। भारत को अक्सर दुनिया की फार्मेसी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ तैयार होने वाली अद्वियात दुनिया के कई ममालिक को बरामद की जाती है। कम लागत और मयारी अद्वियात की तैयारी ने लाखों लोगों को इलाज की बेहतर सहूलत फराहम की है। खासतौर पर जेनरिक अद्वियात की पैदावार ने इलाज के अखराजात में कमी लाने में अहम किरदार अदा किया है। वैक्सीन साजी के मैदान में भी भारत ने आलमी सतह पर नुमाया मुकाम हासिल किया है। मुख्तलिफ बीमारियों के खिलाफ हिफाजती टीकों की तैयारी और फराहमी में भारतीय इदारों ने काबिल तारीफ खिदमात अंजाम दी है। बच्चों में बीमारियों की रोकथाम के लिए हिफाजती टीका जात के प्रोग्रामों ने शरह अमवात में कमी और सेहत के मयार में बेहतरी लाने में अहम किरदार अदा किया है। हालिया बरसों में डिजिटल हेल्थ के शोबे में भी गैर मामूली तरक्की देखने में आई है। टेलीमेडिसिन की सहूलत ने दूर दराज इलाकों के मरीजों को माहिर डॉक्टरों से राबते का मौका फराहम किया है। अब ऐसे मरीज जो बड़े शहरों तक सफर करने की इस्तेतात नहीं रखते, ऑनलाइन मशवरे और तिबी रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। इस इकदाम ने सेहत की खिदमात को ज्यादा जामा और काबिल रसाई बनाया है। सेहत आमा के प्रोग्रामों ने भी अवामी जिंदगी में मस्बत तब्दीलियां पैदा की है। माँ और बच्चे की सेहत, गिजाइत, सफाई और बीमारियों की रोकथाम के हवाले से मुख्तलिफ मेहमात ने मुआशरे में सेहत के शऊर को फरोग दिया है। देही इलाकों में बुनियादी सेहत मराकज के क्याम और तिब्बी अमले की तैनाती ने लाखों अफराद को बुनियादी तिब्बी सहूलियात फराहम की हैं। दिल के अमराज, कैंसर, गुर्दों की बीमारियों और दीगर पेचीदा अमराज के इलाज में भी भारत ने अहम कामयाबियां हासिल की हैं। जदीद सर्जरी, रोबोटिक सर्जरी, एजा की पैवंदकारी और जदीद तशखीसी टेक्नोलॉजी ने इलाज के मयार को बेहतर बनाया है। ऐसे कई अस्पताल मौजूद हैं जहां आलमी मयार की तिब्बी खिदमात निस्बतन कम लागत पर दस्तियाब है। तहकीकी मैदान में भारतीय साइंसदान नई अद्वियात, वैक्सीन और इलाज के जदीद तरीकों पर मुसलसल काम कर रहे हैं। हयातियाती साइंस, बायोटेक्नोलॉजी और मसनवी जहानत के इस्तेमाल ने तिब्बी तहकीक के नए दरवाजे खोले हैं। मसनवी जहानत की मदद से बीमारियों की जल्द तशखीस, तिब्बी तस्वीर का तज्जिया और इलाज के बेहतर मंसूबे तैयार किए जा रहे हैं। कोरोना वबा के दौरान भारत के सेहत के निजाम और साइंसी इदारों ने अहम किरदार अदा किया। वबा के मुश्किल दौर में तिब्बी अमले ने अनथक खिदमात अंजाम दी। वैक्सीन की तैयारी, टेस्टिंग की सहूलियात में इजाफा, अस्पतालों की इस्तेदाद में बेहतरी और अवामी आगाही मेहमात ने बहरान से निमटने में मदद फराहम की। इस तजुर्बे ने मुल्क के सेहत के

वादी की आवाज़ आप समाप्त कर रहे हैं आकाशवाणी के श्रीनगर स्टेशन से। सामने किसी भी मुल्क की आलमी अहमियत सिर्फ उसके रुकबे, आबादी या फौजी ताकत से मुतयन नहीं होती, बल्कि इसका दारमदार, इसकी माशी ताकत, सियासी इस्तेकाम, सफारती असर व रसूख, साइंसी तरक्की और आलमी मसाइल में इसके किरदार पर भी होता है। कई दहाइयों तक पाकिस्तान को दुनिया में मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर मगरबी दुनिया की तवज्जो नसीब हुई, क्योंकि अमरीका और मगरबी ताकतों को इसकी ज़रूरत थी और उन्होंने डॉलर फेंक कर पाकिस्तान का अच्छा खासा इस्तेमाल भी किया। पाकिस्तानी लीडरान को लगा कि वो असल में कुछ इज्जत और मुकाम रखते हैं, जबकि असल में उनको मगरब एक अवज़ार के तौर पर इस्तेमाल करता था, और अब भी ये सिलसिला दूसरी सूरत में जारी है। सर जंग के दौर में पाकिस्तान मगरबी इत्तेहाद का एक अहम हिस्सा था। बाद अजां अफगानिस्तान में होने वाली तब्दीलियों और दहशतगर्दी के खिलाफ आलमी जंग ने भी पाकिस्तान को आलमी तवज्जो का मरकज बनाए रखा। ताहम 21वीं सदी के तीसरे अशरे में दुनिया तेजी से तब्दील हो रही है। आज ममालिक की अहमियत का पैमाना सिर्फ जोग्राफियाई नहीं बल्कि मईशियत, टेक्नोलॉजी, तिजारत और इख्तरा बन चुके हैं। ऐसे में ये सवाल पैदा होता है कि क्या पाकिस्तान आलमी मंजरनामे में अपनी अहमियत बरकरार रखने में कामयाब रहा है या इसे नई हकीकतों का सामना करना पड़ रहा है। वैसे ये भी बहस तलब मामला है कि वो अहमियत थी या मगरब की वक्ती ज़रूरत। ये बात आया है कि पाकिस्तान की सियासी क़यादत और रियासती इदारे अक्सर आलमी मामलात में अपनी मौजूदगी को नुमाया करने की कोशिश करते हैं, लेकिन दाखिली मसाइल उन कोशिशों की राह में रुकावट बन जाते हैं। उनके मुताबिक जब एक मुल्क मुसलसल माशी बहरानों, सियासी अदम इस्तेकाम, तवन्नाई की किल्लत, कर्जों के बोझ और हुकूमती तब्दीलियों से दो चार हो तो आलमी सतह पर उसकी आवाज़ कमज़ोर पड़ जाती है। गुज़श्ता बरसों में पाकिस्तान को बारहा बैनुल अक्वामी मालियाती इदारों से इमदाद और कर्जों की ज़रूरत पेश आई। माशी कमज़ोरी किसी भी मुल्क की सफारती ताकत को महदूद कर देती है, क्योंकि दुनिया में वही ममालिक ज़्यादा असर रसूख रखते हैं जो मजबूत मईशत के हामिल हो। चीन, अमरीका, जर्मनी, जापान और दीगर तरक्की याफ्ता ममालिक की आलमी अहमियत का बुनियादी सबब उनकी माशी ताकत है। इसके बरक्स पाकिस्तान को अक्सर अपने माशी मसाइल के बाइस दिफाई पोजिशन इख्तियार करना पड़ती है। गैर मुल्की सरमायाकारी में कमी, दरामदाद की महदूद रफ्तार और सनती शोबे के मसाइल ने मुल्क की माशी सलाहियत को मुतासर किया है। नाकदीन के नज़दीक यही वो अवामिल हैं जिन्होंने पाकिस्तान के आलमी असर व रसूख को कमज़ोर किया है। पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के हवाले से बाज़ मुबस्सिरीन का ख्याल है कि पाकिस्तान अक्सर बैनुल अक्वामी फोरम्स पर अपनी अहमियत उजागर करने की कोशिश करता है, लेकिन अमली तौर पर इसकी सफारती कामयाबियाँ महदूद रही हैं। उनके मुताबिक आलमी ताकतों की तरजीहात तब्दील हो चुकी हैं। अब तवज्जो एशिया में माशी तरक्की, मसनवी जहानत, तवन्नाई के नए जराए और आलमी तजारती रास्तों पर मरकूज है। इस तनाजुर में देखा जाए तो भारत ने अपनी मईशियत, टेक्नोलॉजी और आलमी शराकत दारियों के जरिए अपनी बैनुल अक्वामी हैसियत को मजबूत किया है। खलीजी ममालिक ने तवन्नाई के वसाइल के साथ साथ जदीद सरमायाकारी और इंफ्रास्ट्रक्चर पर तवज्जो दी है। जनूब मशरकी एशिया के कई ममालिक ने सनती तरक्की के जरिए आलमी मईशियत में नुमाया मुकाम हासिल किया है। ईरान और अमरीका के दरमियान कशीदगी ने दुनिया भर की तवज्जो अपनी जानिब मबजूल कर रखी है, लेकिन इस बड़ी कहानी के साथ एक और दिलचस्प पहलू भी सामने आया है, और वो है पाकिस्तान की जानिब से खुद को इस बहरान में कलीदी किरदार के तौर पर पेश करने की कोशिश। पाकिस्तानी सियासी और सफारती हलकों में ये तासर देने की कोशिश की गई कि इस्लामाबाद इस

0: वादी की आवाज आप समाप्त कर रहे हैं आकाशवाणी के श्रीनगर स्टेशन से
1: और बात हो रही है पाकिस्तान की।
0: दुनिया की सफारतकारी में ऐसे किरदार अक्सर बहुत अहम होते हैं। कई मरतबा जंगों को रोकने और कशीदगी कम करने में वही ममालिक कामयाब होते हैं जो बातचीत के लिए पुल का काम करते हैं, लेकिन पुल होना और मंजिल तय करना दो मुख्तलिफ बातें हैं। मुजहका खेजी की हद तब हो जाती है कि जब पाकिस्तान के वजीर आजम अमरीका या ईरान के बदले किसी फैसले का ऐलान करते हैं और बाद में जब डिनाइल आता है तो शर्मिंदगी का सामना करते हैं। पाकिस्तान की जोग्राफियाई और सियासी हैसियत इसे एक मुनफरद मुकाम देती है। एक तरफ इसकी सरहद ईरान से मिलती है, दूसरी तरफ अमरीका के साथ इसके अजीब व गरीब ताल्लुकात की एक तवील तारीख मौजूद है। लेकिन रसाई और असर व रसूख एक ही चीज़ नहीं होते। यही वो मुकाम है जहाँ पाकिस्तान का हकीकी किरदार सामने आता है। पाकिस्तान ने अगर कोई अहम खिदमत

0: इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचता है, तो दीजिए अपने मेजबान को इजाजत। खुदा हाफिज।
1: वादे की आवाज। पाकिस्तान और पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में सुनने वालों के लिए ये प्रोग्राम हर रोज हमारे वक्त के मुताबिक 8 बजे और पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 7:30 बजे शाम नश्र होता है।

0: कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर, आवाज जो आपके कारोबार को एक नई उड़ान दे। क्या आप चाहते हैं कि आपकी सोच आपका कारोबार हर दिल में जगह बनाए? तो देर किस बात की, राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर के साथ और अपने बिजनेस को दीजिए एक नई उड़ान, एक नई पहचान।
1: ये आवाज है आकाशवाणी के श्रीनगर स्टेशन की, मीडियम वेव 268.81 मीटर और FM 103.5 MHz पर। 8:30 हुए हैं। समीन पेश होता है आज का जिला नवा।
2: डिस्ट्रिक्ट न्यूज लेटर, मुख्तलिफ अजला में जारी तरक्याती मनसूबों से मुतलिक जामिया रिपोर्ट्स पर मबनी आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर की पेशकश। डिस्ट्रिक्ट न्यूज लेटर।
3: जिला नामा का ताजा शुमारा लेकर आपका मेजबान शेख तजम्मुल हाजिर है। आज के जिला नामा में हम शुमाली कश्मीर के बांडीपोरा जिले से ताल्लुक रखने

0: बिल्डिंगें बने और उसके बाद वो तबाही हो जाए, ताकि हम वहाँ के एनवायरमेंट को बचा सके।
1: अपने लोगों को क्या मैसेज देंगे, जो भी टूरिस्ट आ रहे हैं उनसे वो हमदर्दी से पेश आए, कोई बार्गेनिंग ना करे, तो उनसे चीटिंग कोई ना करे, उन लोगों के लिए, अपने लोगों के लिए आप क्या मैसेज देंगे?
0: मेरी ये मैसेज होगी अपने गुरेज और तिलेल के लोगों के लिए, एक दफा अगर कमाओगे तो 1000 कमाओगे, फिर महीनों आपको कुछ नहीं मिलना है। अगर 10-10 रुपया करके कमाओगे तो उम्र भर की कमाई है। एक तो टूरिस्टों के साथ खुश अखलाकी से पेश आए, दूसरा अपने एनवायरमेंट को गंदा करना नहीं दे, क्योंकि अगर आपका ये कृष्ण गंगा गंदा हो गया उसके बाद तुम्हारे पास कोई नहीं आएगा। ये रोजगार जो है तुम्हारे लिए पीढ़ियों तक चलेगा, सब्जेक्ट कि आप खुद काम करेंगे। आप जापान जाइए।

0: अगर 10-10 रुपया करके कमाओगे तो उम्र भर की कमाई है। एक तो टूरिस्टों के साथ खुश अखलाकी से पेश आए, दूसरा अपने एनवायरनमेंट को गंदा करना नहीं दे, क्योंकि अगर आपका ये कृष्णगंगा गंदा हो गया उसके बाद तुम्हारे पास कोई नहीं आएगा। ये रोजगार जो है तुम्हारे लिए वीडियो तक चलेगा, सब्जेक्ट कि आप खुद काम करेंगे। आप जापान जाइए, जापान में एक थैला लेके सुबह निकलता है आदमी और जहां पर वो लिट देखता है अपने थैले में जमा करके घर में वो अपने डस्टबिन में डालता है। उसी तरीके का एनवायरनमेंट हमें गुरेज में पैदा करना चाहिए। और दूसरा, गुरेज वालों को जो टूरिस्ट आता है उसके साथ खुश अखलाकी से पेश आए, उसको लूटने की कोशिश न करे, एक ही बार कमाने की कोशिश न करे। अगर कम कमाएंगे तो उम्र भर कमाएंगे, अगर ज्यादा कमाने की कोशिश करेंगे तो एक बार जो टूरिस्ट आएगा वो दोबारा नहीं आएगा।
1: समीन, हुकूमत जम्मू कश्मीर ने सियाहत के शोबे को बढ़ावा देने की गरज से चंद साल कबल होम स्टे कॉन्सेप्ट के तहत मकामी नौजवानों को सियाहत के शोबे के साथ जोड़ने की सई की। होम स्टे का नजरिया गुरेज जैसे दूरदराज और दुश्वार गुजार इलाकों में काफी कामयाब रहा, क्योंकि यहां पर सयाहों के लिए कोई बड़े बड़े होटल दस्तियाब नहीं हैं और अक्सर और बेशतर सैलानी अब महंगे होटलों के बजाय होम स्टेज में ही रहना पसंद करते हैं, क्योंकि यहां उन्हें एक तो घर जैसा एहसास मिलता है और दूसरा यहां होटलों के मुकाबले में रहना सस्ता होता है। गुरेज वादी में अब कई बेरोजगार नौजवान सियाहत के शोबे के साथ जुड़कर अपने और अपने अहलवैयाल के लिए बाइज्जत रोजगार कमाने लगे हैं। ताहम इनमें से कुछ नौजवानों का मुतालबा है कि हुकूमत उनकी मदद को आए ताकि वो ज्यादा बेहतर तौर सयाहों की खिदमत करके इलाके को मुकम्मल तौर सियाहती नक्शे पर लाने में मुमिद व मुआविन साबित हो सकें। हमारे बांडीपोरा के नुमाइंदे आदिल इस्माइल ने इलाके के कुछ नौजवानों से बात की तो उन्होंने कहा,
2: हाजी गुलाम अल्लाह, मैं यहाँ गुरेज का रहने वाला हूँ। यहाँ पर यह टूरिज्म में हमने काफी स्टार्ट किया टूरिज्म को 2004 में, उसके बाद 2007 में हमारा फेस्टिवल हुआ यहाँ पर टूरिज्म का, उसके बाद यहाँ पर TRC बन गई तो 2009 में हमने स्टार्ट किया। यहाँ पर कुछ नहीं था गुरेज में, यहाँ रेस्टोरेंट नहीं था, बैठने की जगह नहीं थी, तो हमने काफी इसमें कोशिश किया, लोगों को भी समझाया भाई यहाँ पर टूरिज्म बनेगा तो रोजगार बनेगा। अभी तक चलते चलते तो अच्छे पीक पर आया, इस वक्त हमारा टूरिज्म फर्स्ट क्लास चल रहा है यहाँ पर गुरेज में। खास करके मैं गवर्नमेंट को अपील करना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट मेहरबानी करके यहाँ पर ये बड़े बड़े होटल बंद कर दे जो नए बनेंगे, छोटे छोटे हट बने जो जिसमें वुडन के हट बनाकर हर एक बना सकता है, उसमें कोई परेशानी भी नहीं है, कुछ नहीं है, क्यों टूरिस्ट लाइक नहीं करते इसमें कि ऐसे बड़े होटलों में बैठना, वो चाहते हैं छोटे हट में रिवर साइड भी बाकी जगह भी अच्छी अच्छी जगह पर पहुंच जाए। सर, टूरिज्म काफी कोशिश कर रहा है यहाँ पर, हमारा डायरेक्टर टूरिज्म कश्मीर और हमारे सेक्रेटरी टूरिज्म साहब है, मिनिस्टर साहब भी है, LG साहब है, सब कर रहे हैं इसमें गुरेज को काफी मदद, और सेंटर भी मदद कर रहा है मोदी साहब। तो हमें गुरेज में इस वक्त सिर्फ थोड़ा रोड की प्रॉब्लम है और हमें एक टनल की प्रॉब्लम है। टनल अगर यहाँ होते तो 12 महीना हमारे चलता टूरिज्म, वो टूरिज्म उसमें एक बात थी, विंटर टूरिज्म भी स्टार्ट होते वहाँ पर। यहाँ पर एक गवर्नमेंट को अपील की एक गंडोला बने जिसमें यहाँ के लोगों को कोई उजरत मिले और हमारे टूरिस्ट जो है वो आधा जाना पर्सन करे। और दूसरे जगह हमारा इस वक्त काम चल रहा है टूरिज्म का, ज्यादा टूरिज्म बढ़ेगा उसमें बच्चे उसमें लगे रहेंगे, अभी टेंट लगे हमारे हर जगह, होटल है, बाकी चीजें सब काम कर रहे हैं, बच्चे हमारे गलत रास्ते पर बच्चे नहीं चल रहे इस वक्त। ये खुदा का शुक्र है कि हम अल्लाह ताला से ये दुआ करते हैं कि यहाँ पर ऐसा चले और लोग आए हमारे आंखों में रहा, हम उनको दावत दे रहे हैं यहाँ पर गुरेज आए, हम उनकी खिदमत करेंगे।
3: मेरा नाम अक्सा इश्तियाक है, मेरा ताल्लुक वादी कश्मीर की एक खूबसूरत वादी गुरेज से है। हमें बहुत खुशी है कि सरकार ने गुरेज को सियाहती नक्शे पर लाने के लिए जो पहल की है वो काफी खुश आइंद है। मजीद देखिए, हमारी वादी जो एक खूबसूरत वादी होने का शर्फ रखती है, इसकी खूबसूरती को फरोग देने के साथ साथ यहाँ की खूबसूरती को बचाना भी सरकार की जिम्मेदारी बनती है। और इस सिलसिले में सरकार को चाहिए कि यहाँ गैर मुनज़्ज़म तरीके से हो रही तामीरात पर रोक लगा दिया जाए ताकि यहाँ की कुदरती खूबसूरती मुतासिर न हो। मजीद ये की महकमे सियात को भी चाहिए कि वो इस खित्ते में अपना मौजूदगी दिखाए।
4: मेरा नाम मेराजदीन है, मेरा ताल्लुक गुरेज के बड़वन गाँव से है। जी, मैं सरकार की तरफ से हालिया चंद सालों से जो गुरेज में टूरिज्म शुरू किया गया उसके हवाले से कहना चाहूंगा कि इसकी वजह से बड़ी हद तक जो है गुरेज की इक्तसादी जो हालत है वो बेहतर हो रही है। साथ ही साथ जो यहाँ के पढ़े लिखे बेरोजगार नौजवान हैं उनको भी रोजगार कमाने के मौके मिल रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पे जो हर एक आदमी जो है इससे फायदा उठा रहा है और जो है मुल्क के कोने कोने से लोग आते हैं और आके यहाँ की खूबसूरती से लुत्फ अंदोज हो रहे हैं वो यहाँ पे यहाँ के कल्चर को यहाँ की खूबसूरती को देख के खुश हो रहे हैं। हम सरकार से यही मुतालबा करेंगे कि गुरेज को आलमी

0: या फिर टूरिज्म के नक्शे में लाने के लिए सरकार जो है गैर मुल्की सयाहों को भी गुरेज आने की इजाजत दे, ताकि ये जगह जो है मुल्क के साथ साथ आलमी सतह पर भी टूरिज्म के नक्शे में आए, फिर जो है इससे यहाँ की जो माली हालत है वो मजीद बेहतर हो।
1: इसके साथ ही जिलानामा का आज का शुमारा इख्तिताम पजीर हुआ। निगरान आला अशफाक अहमद शाह, तरतीब व तहजीब कौशकी कश्यप, रिकॉर्डिंग व एडिटिंग नूरुलैन इशरत, तहरीर शेख तजम्मुल, पेशकश रीजनल न्यूज यूनिट आकाशवाणी श्रीनगर।
2: यह आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है।

0: आपने मोहम्मद रफ़ी को सुना फिल्म तकदीर में। यह आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है। समीन 8:45 हो रहे हैं। अब हम आपको खबरों के लिए आकाशवाणी दिल्ली ले चलते हैं।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि दूत जेमिसन ग्रीर के साथ व्यापार वार्ता की प्रगति की समीक्षा की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री चो ह्यून से सोल में मुलाकात की। वैश्विक चुनौतियों के बीच भारत दक्षिण कोरिया संबंधों को मजबूत करने का आह्वान किया। ओमान ने होर्मुज जलडमरू मध्य से एक अस्थायी समुद्री गलियारा खोलने की घोषणा की। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में निर्माणाधीन गोदाम गिरने से 3 लोगों की मौत, बचाव अभियान जारी। अरुणाचल प्रदेश में मूसलाधार वर्षा से अचानक बाढ़ आई, असम में चेतावनी जारी की गई। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में कनाडा आज रात स्विट्जरलैंड से खेलेगा। अब समाचार विस्तार से। वाणिज्य और उद्योग

0: मंत्री पीयूष गोयल ने आज अमरीकी व्यापार प्रतिनिधि दूत जेमिसर ग्रीर और उनके प्रतिनिधिमंडल के साथ नई दिल्ली में बैठकें की। श्री गोयल ने भारत अमरीकी व्यापार वार्ता की प्रगति की समीक्षा की और दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी को और मजबूत करने के अवसरों की खोज की। उन्होंने राजदूत ग्रीर के नेतृत्व और दोनों पक्षों के रचनात्मक तथा प्रगतिशील तरीके से वार्ता को आगे बढ़ाने के निरंतर प्रयासों की भी सराहना की। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने आज नई दिल्ली में सामरिक रक्षा साझेदारी ढांचे के अंतर्गत रक्षा सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए एक बैठक आयोजित की। बैठक की सह अध्यक्षता अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के संयुक्त सचिव अमिताभ प्रसाद और संयुक्त अरब अमीरात के ब्रिगेडियर स्टाफ जमाल इब्राहिम मोहम्मद इब्राहिम अलमारजूकी ने की। चर्चा का मुख्य विषय रक्षा उद्योग सहयोग का विस्तार करना, नवाचार को बढ़ावा देना, विशिष्ट तकनीकों का लाभ उठाना और समुद्री सुरक्षा को मजबूत करना था। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने चुनौतीपूर्ण वैश्विक परिदृश्य के बीच भारत दक्षिण कोरिया संबंधों को और मजबूत करने की आवश्यकता पर बल दिया है। सोल में दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री चो ह्यून के साथ बैठक में डॉ. जयशंकर ने कहा कि वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में विश्वसनीय साझेदारों के बीच सहयोग पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गया है।
1: It is really our responsibility.
2: इस साझेदारी को आगे बढ़ाना हमारी जिम्मेदारी है। इसमें सरकार के अलग अलग विभाग और देश की अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलू शामिल हैं, जिनके बीच तालमेल बिठाना बहुत आवश्यक है। मैं कहूँगा कि हमें भविष्य को ध्यान में रखते हुए एक आधुनिक साझेदारी की ओर बढ़ना चाहिए।
1: रिलेशनशिप इन अ मोर डिफिकल्ट वर्ल्ड।
0: ईरान में मौजूद भारतीय दूतावास ने भारतीय नागरिकों के लिए यात्रा परामर्श जारी किया है। दूतावास ने कहा है कि अगली सूचना तक भारतीय नागरिक जब तक आवश्यक ना हो ईरान की यात्रा न करें। एक रिपोर्ट।
3: जो भारतीय नागरिक वर्तमान में ईरान में रह रहे हैं या किसी आवश्यक कारण से वहां यात्रा करने जा रहे हैं, उन्हें विशेष सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है। दूतावास ने भारतीय नागरिकों से कहा है कि वे अपने आसपास की स्थिति पर लगातार नजर रखें और स्थानीय प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों का पालन करें। दूतावास ने ईरान में मौजूद सभी भारतीय नागरिकों और वहां पहुंचने वाले लोगों से जल्द से जल्द अपना विवरण भारतीय दूतावास में पंजीकृत कराने की अपील की है। भारतीय नागरिकों को दूतावास की आधिकारिक वेबसाइट और सोशल मीडिया मंचों पर जारी वाले अपडेट तथा सलाह पर नियमित रूप से नजर रखने की भी सलाह दी गई है। विष्णु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
0: इस बीच ओमान ने होर्मुज जलडमरू मध्य से एक अस्थायी समुद्री गलियारा खोलने की घोषणा की है। ये वाणिज्यिक जलमार्ग को बहाल करने और खाड़ी में फंसे हजारों नाविकों के संकट को कम करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। ओमान सरकार ने कहा है कि ये पहल संयुक्त राष्ट्र के अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन के समन्वय से की गई है। इससे क्षेत्रीय संघर्ष से जुड़ी महीनों के व्यवधान के बाद जलमार्ग से जहाजों की सुरक्षित आवाजाही को सुगम बनाया जा सकेगा। संगठन के अनुसार क्षेत्र में 11,000 से अधिक नाविक फंसे हुए हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज नई दिल्ली में वीआईपी कल्चर इन इंडिया पावर प्रिविलेज एंड डिस्टेंस फ्रॉम डेमोक्रेसी नामक पुस्तक का विमोचन किया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि ये पुस्तक सत्ता संस्थानों और लोगों के बीच मौजूद दूरी को जन केंद्रित शासन के माध्यम से इस दूरी को कम करने की आवश्यकता पर बल देती है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि ये पुस्तक दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में भारत की पहचान का उल्लेख करती है।
4: That Bharat is the world's largest democracy and is also called the mother of democracy. Our constitution envisions a society based on justice, equality, liberty and fraternity.
0: उपराष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उदाहरण देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने नीट परीक्षा देने वाले छात्रों को यातायात असुविधा से बचाने के लिए हवाई अड्डे से अपनी उड़ान लगभग 45 मिनट तक विलंबित की थी। रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह ने आज पंजाब के जालंधर में दो महत्वपूर्ण रोड ओवरब्रिज आरओबी परियोजनाओं की आधारशिला रखी। उन्होंने बताया कि जालंधर शहर जालंधर कैंट खंड पर गुरु नानकपुरा आरओबी का निर्माण 48 करोड़ 95 लाख रुपए की लागत से किया जाएगा, जबकि दूसरा बस स्टैंड गढ़ा रोड आरओबी 63 करोड़ 98 लाख रुपए की लागत से बनेगा। दोनों परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता रेलवे देगी। गृह मंत्री अमित शाह शुक्रवार को नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे। स्वापक नियंत्रण ब्यूरो द्वारा आयोजित

0: बैठक में केंद्रीय मंत्रालय, राज्य सरकारें और मादक पदार्थों से संबंधित कानून प्रवर्तन एजेंसियों के प्रतिनिधि मादक पदार्थों की तस्करी और दुरुपयोग से निपटने के प्रयासों की समीक्षा करेंगे। भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स अंतरिक्ष एजेंसियों के प्रमुखों की 2026 की बैठक आज बेंगलुरु में सम्पन्न हुई। विज्ञान, प्रौद्योगिकी और अंतरिक्ष राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह समापन सत्र में शामिल हुए। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष वी नारायणन ने कहा कि दो दिन की बैठक में आपदा प्रबंधन और जलवायु परिवर्तन निगरानी सहित कई विषयों पर चर्चा हुई।
1: इस बैठक में 10 देशों के 26 प्रतिनिधियों के साथ साथ इसरो, इन स्पेस और अंतरिक्ष विभाग के लोग भी शामिल हुए। इसमें ब्रिक्स देशों के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए रिमोट सेंसिंग उपग्रह समूहों के इस्तेमाल पर काफी चर्चा हुई, जिसमें आपदा प्रबंधन, जलवायु परिवर्तन और दूसरे पहलू शामिल थे। हमने मलबा मुक्त अंतरिक्ष मिशन प्रबंधन तथा अंतरिक्ष अभियानों के सतत संचालन पर भी विचार विमर्श किया।
0: विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने 14वें पासपोर्ट सेवा दिवस के अवसर पर सभी पासपोर्ट अधिकारियों की उनकी समर्पित सेवा और नागरिकों के प्रति अटूट प्रतिबद्धता के लिए सराहना की। श्री सिंह ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में भारत की पासपोर्ट सेवाओं में उल्लेखनीय परिवर्तन आया है। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि वर्ष 2025 में क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालयों, पासपोर्ट सेवा केंद्रों और विदेशों में भारतीय दूतावासों के माध्यम से भारतीय नागरिकों को लगभग 1.5 करोड़ पासपोर्ट और संबंधित सेवाएं प्रदान की गई हैं। देश भर में पासपोर्ट सेवा केंद्रों और डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्रों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हुई है। वर्तमान में देश में ऐसे 545 केंद्र कार्यरत हैं। पिछले वर्ष 10 नए डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र खोले गए थे और इस वर्ष भी 10 नए केंद्र खोले जाने की योजना है। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी योजना ग्रामीण के मसौदा समन्वय ढांचे पर आज नई दिल्ली में उच्च स्तरीय अंतर मंत्रालय बैठक का आयोजन किया गया। इसकी अध्यक्षता ग्रामीण विकास विभाग के सचिव रोहित कंसल ने की। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने बताया है कि ये बैठक अगले महीने की पहली तारीख से लागू होने वाले विकसित भारत जी राम जी योजना की तैयारियों के अंतर्गत आयोजित की गई। स्वच्छ गंगा राष्ट्रीय मिशन ने राष्ट्रीय नगर कार्य संस्थान के सहयोग से गंगा नदी के तट पर शहरी नदी प्रबंधन योजनाओं का विस्तार किया है। ये प्रबंधन योजनाएं नमामि गंगे कार्यक्रम के अंतर्गत हैं। अब तक 13 शहरों के लिए शहरी नदी प्रबंधन योजनाएं पूरी हो चुकी हैं। इस योजना के प्रथम चरण में 27 शहरों और दूसरे चरण में 33 शहरों के लिए योजनाएं तैयार की जा रही हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। पश्चिम बंगाल में कोलकाता के तारातला इलाके में निर्माणाधीन गोदाम की छत गिरने की घटना के बाद राहत और बचाव अभियान जारी है। हादसे में अब तक 3 लोगों की मौत की खबर है। एक रिपोर्ट।
2: बचाव काम युद्धकालीन तत्परता से जारी है। अब तक 18 श्रमिकों को मलबे की ढेर से जिंदा निकाला गया है। करीब 15 और घायल लोग वहां फंसे रहने का संभावना है। घायलों की इलाज SSKM अस्पताल में हो रहा है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है उससे भी ज्यादा लोग फंसे हो सकते हैं। सेना, NDRF, सिविल डिफेंस, फायर ब्रिगेड और कोलकाता पुलिस मिलकर बचाव अभियान चला रहे हैं। दुर्घटना के कारण पर उन्होंने कहा कि प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक निर्माण के नक्शे में त्रुटि थी, लेकिन जिम्मेदारी किसकी है ये अभी स्पष्ट नहीं है। कल विधानसभा में इसी विषय पर बयान दिया जाएगा। आकाशवाणी समाचार के लिए कलकत्ता से अभिरूप भट्टाचार्य जी।
0: अरुणाचल प्रदेश के की पन्योर जिले के याजाली स्थित पोसा में मूसलाधार बारिश और अचानक आई बाढ़ से काफी नुकसान हुआ है। ताजा खबरों के अनुसार 4 लोग लापता हैं, 17 लोग घायल हुए हैं, जिनमें 3 की हालत गंभीर है। प्रशासन नुकसान का आकलन कर रहा है। भूस्खलन के कारण प्रभावित क्षेत्र याजाली और होजपोटिन दोनों तरफ से अब भी संपर्क से बाहर हैं। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा है कि वे स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। उन्होंने लोगों से सभी सुरक्षा निर्देशों का पालन करने को कहा है। इस बीच अरुणाचल प्रदेश में तेज वर्षा के बाद असम में निचले इलाकों में बाढ़ की आशंका को देखते हुए राज्य सरकार ने सभी एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रखा है। SDRF, NDRF और अन्य आपातकालीन बचाव दलों को तैयार रखा गया है। मौसम विभाग ने कल देश के कई हिस्सों में मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। पूर्वोत्तर क्षेत्र, झारखंड, महाराष्ट्र, उड़ीसा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल

0: कल तेलंगाना, तटीय कर्नाटक, कोंकण और गोवा में तेज वर्षा हो सकती है। मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में कल तक तेज हवाओं के साथ आंधी तूफान की स्थिति बनी रह सकती है। बिहार में भी अगले दो दिनों तक ऐसा ही मौसम रहने का अनुमान है। दिल्ली में कल बारिश की संभावना है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान द्वारा कश्मीर मुद्दा उठाने पर कड़ी आपत्ति व्यक्त की है। पाकिस्तान पर संयुक्त राष्ट्र मंच का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाते हुए भारत ने कहा कि सह अध्यक्ष के रूप में निष्पक्ष रहने के बजाय पाकिस्तान ने पद का दुरुपयोग किया है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि आसिम इफ्तिखार अहमद की टिप्पणियों के जवाब में जम्मू कश्मीर पर भारत का रुख दोहराया।
1: मैं पाकिस्तानी पक्ष की टिप्पणियों का उल्लेख करता हूं। यह हैरान कर देने वाला है कि ऐसे मंच पर जहां राजनीतिक मुद्दों पर संतुलित और निष्पक्ष चर्चा की उम्मीद की जाती है, ऐसी बातें कही गईं। मैं दोहराना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर पूर्ण रूप से भारत का घरेलू मामला है।
0: भारतीय नौसेना के जहाज उदयगिरी और कवरत्ती दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में अपनी परिचालन तैनाती के अंतर्गत वियतनाम के हो चिन मिन शहर से दौरा पूरा करने के बाद रवाना हो गए हैं। इस दौरे पर पूर्वी बेड़े के फ्लैग ऑफिसर रियर एडमिरल आलोक आनंद ने हो चिन मिन शहर की पीपल्स कमेटी और वियतनाम पीपल्स नेवी के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समुद्री सहयोग, आपसी समन्वय और क्षेत्रीय समुद्री सुरक्षा पर चर्चा की। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में INS कवरत्ती पर एक संयुक्त योग सत्र भी आयोजित किया गया। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं अम्बरीश सक्सेना।
2: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 791 अंक बढ़कर 76,991 अंकों पर बंद हुआ। निफ्टी भी 198 अंक बढ़कर 24,022 अंकों पर जा पहुंचा। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के व्यापक बाजार में मिड कैप 100 सूचकांक 0.1% और स्मॉल कैप सूचकांक 0.4% तक बढ़ा। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया एक डॉलर की तुलना में 8 पैसे मजबूत होकर 94.66 पर बंद हुआ।
0: फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप बी मुकाबले में देर रात स्विट्जरलैंड का मुकाबला कनाडा से होगा। इसी ग्रुप में कतर और बोस्निया एंड हर्जोगोविना आमने सामने होंगे। दोनों मुकाबले रात 12:30 बजे से खेले जाएंगे। US ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला डबल्स में त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद ने प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। भारतीय जोड़ी ने स्पेन की पाउला लोपेस और लूसिया रॉड्रिक्स को हराया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि दूत जेमिसन ग्रीर के साथ व्यापार वार्ता की प्रगति की समीक्षा की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री चो ह्यून से सोल में मुलाकात की। वैश्विक चुनौतियों के बीच भारत दक्षिण कोरिया संबंधों को मजबूत करने का आह्वान किया। ओमान ने होर्मुज जलडमरू मध्य से एक अस्थायी समुद्री गलियारा खोलने की घोषणा की। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में निर्माणाधीन गोदाम गिरने से 5 लोगों की मौत, बचाव अभियान जारी। अरुणाचल प्रदेश में मूसलाधार वर्षा से अचानक बाढ़ आई, असम में चेतावनी जारी की गई। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में कनाडा आज रात स्विट्जरलैंड से खेलेगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: यह आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है। मीडियम वेव 268.81 मीटर और FM 103.5 MHz पर। रात के 9 बज चुके हैं। समीन समाप्त कीजिए चंद गजलें। आगाज में यह हैं जगजीत सिंह और चित्र सिंह की आवाज़।

0: की कार्रवाइयों में मसरूफ हैं। अंदेशा है कि और भी कई मजदूर मलबे के नीचे फंसे हो सकते हैं। रियासती सेक्रेटेरिएट नवन्ना ने मुतासरीन की मदद के लिए हेल्पलाइन नंबर्स जारी किए हैं। ये नंबर्स हैं 1609-7807-033-221-4352-6 और 0332-25-351-85। मजीद तफसील हमारे नामनिगार से।
1: भारतीय फौज, NDRF, पुलिस और आग बुझाने वाले अमले के अफराद मुश्तरका तौर पर कोलकाता के तरह तरह इलाके में जेर तामीर गोदाम के मलबे तले दबे अफराद को निकालने के लिए इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ हैं। जख्मियों का कोलकाता के SSKM अस्पताल में इलाज किया जा रहा है, बचाव कार्रवाई जारी है। वजीर आला शुभेंदु अधिकारी ने जाय हादसा का दौरा किया और इमदादी अहलकारों की कोशिशों की तारीफ की। उन्होंने मीडिया को बताया कि कोलकाता मेट्रोपॉलिटन अथॉरिटी आज रात उन्हें हादसे से मुतालिक रिपोर्ट पेश करेगी, जिसके बाद वो कल असेंबली में इस बारे में बयान देंगे। कोलकाता पुलिस ने इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज कर लिया है, मजीद तहकीकात जारी हैं। कोलकाता से करियान लाहा की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं मोहम्मद अम्मार।
0: ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। अरुणाचल प्रदेश में आज शदीद बारिश और अचानक सैलाब के सबब केपन्यार जिले के तहत यजाली सर्कल में नेपको कॉलोनी में भारी नुकसान पहुंचा है। ताजा तरीन इत्तलात के मुताबिक 4 अफराद लापता हैं। हुकाम ने अभी किसी जानी नुकसान की तस्दीक नहीं की है, अलबत्ता अभी नुकसान का जायजा लिया जा रहा है, तफसीलात का इंतजार है। नेपको के प्रोजेक्ट के सरबरा ने मुत्तला किया कि 17 अफराद जख्मी हुए हैं, जिनमें से 3 की हालत संगीन है। संगीन तौर पर जख्मियों को इलाज के लिए बजरिया एम्बुलेंस जीरो ले जाया गया है। वजीर आला पेमा खांडू ने मुतासरीन और उनके कुनबों से ताजियत का इजहार किया है, जो अपने अजीजों के बारे में पता चलने का बेचैनी से इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने यकीन दहानी की कि हुकूमत मुतासरा कुनबों के साथ मजबूती से खड़ी है और बचाव, राहत और तिब्बी मदद फराहम करने में कोई कसर बाकी नहीं रखी जाएगी। मरकजी वजीर किरण रिजिजू ने अरुणाचल प्रदेश सैलाब से मुतासिर अफराद से अपील की है कि वो एहतियात से काम लें। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब रिजिजू ने कहा कि लोगों की हिफाजत हुकूमत के लिए निहायत अहम है। इस दौरान अरुणाचल प्रदेश ने शदीद बारिश और अचानक सैलाब के तनाजुर में आसाम सरकार ने भी हाई अलर्ट जारी कर दिया है। पेश है एक रिपोर्ट।
2: अरुणाचल प्रदेश में शदीद बारिश के बाद आसाम के निचले इलाकों में सैलाब के शदीद खतरात के पेश नज़र आसाम हुकूमत ने अपनी तमाम मुतालिका एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रखा है, जिसके नतीजे में रियासत के निचले अजला बशमूल धीमाजी, लखीमपुर, बिस्वानाथ और सोनीपत में पूर में पानी की सतह में इजाफा और बहाव की रफ्तार में नुमायां तेजी का खतरा दरपेश है, जबकि अगले 1 से 2 दिन के दौरान सैलाब के मजीद आगे बढ़ने का इम्कान है। SDRF और NDRF और दीगर हंगामी इमदादी टीमों को अलर्ट पर रखा गया है, जबकि जिला इंतजामिया को हिदायत दी गई है कि वह हसास इलाकों की कड़ी निगरानी करें और तमाम जरूरी एहतियाती इकदाम करें। निचले और सैलाब के तई हसास इलाकों में रहने वाले लोगों को चौकस रहने, सरकारी हदायात पर अमल करने, पानी वाले इलाकों में जाने से बचने और छोटी कश्तियों के जरिए सफर करने से गुरेज करने की हिदायत जारी की गई है। गुवाहाटी से राकेश डोले की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं फैसल हबीब।
0: नायब सदर जनाब CB राधाकृष्णन ने आज नई दिल्ली में एक किताब का इजरा किया, जिसका उन्वान है VIP कल्चर इन इंडिया, पावर, प्रिविलेज एंड डिस्टेंस फ्रॉम डेमोक्रेसी। इस मौके पर शुरुका से खिताब करते हुए जनाब राधाकृष्णन ने कहा कि किताब में इख्तदार से मुतालिक इदारों और आम शहरियों के दरमियान अक्सर मौजूद फासले की अक्कासी की गई है और इस बात पर जोर दिया गया है कि अवाम पर मरकूज हुक्मरानी के जरिए इस खला को पुर करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि किताब दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत के तौर पर भारत की शनाख्त को उजागर करती है, नीज आईन में पेश किए गए इंसाफ, मसावात और आजादी के ख्यालात का इआदा करती है। भारत की सदारत में ब्रिक्स मुल्कों के खलाई इदारों के सरबराहों की मीटिंग 2026 बेंगलुरु में इख्तिताम पजीर हुई। साइंस, टेक्नोलॉजी और खला के वजीर मुमलिकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इख्तितामी इजलास में शिरकत की और आलमी सतह पर खलाई सरगर्मियों में भारत के बढ़ते हुए रोल को उजागर किया। इसरो के चेयरमैन वी नारायणन ने नामानिगारों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि 2 रोजा मीटिंग में 10 ममालिक के 26 मंदुबीन ने शिरकत की, जिनमें इसरो, इनस्पेस और खला के महकमे के नुमाइंदे भी शामिल थे। उन्होंने कहा कि मीटिंग में समाजी व इक्तसादी तरक्की के लिए रिमोट सेंसिंग, सैटेलाइट निजाम के इस्तेमाल, खसूसन कुदरती आफात के बंदोबस्त और आबो हवा की तब्दीली की निगरानी पर तबादला ख्याल किया गया। انفورسمنٹ

0: डायरेक्टोरेट ने बेंगलुरु और मुंबई में राजेश एक्सपोर्ट्स लिमिटेड से मुंसलिक 9 मकामात पर तलाश की कार्रवाइयां की। गैर मुल्की जर मुबादला मैनेजमेंट एक्ट फेमा 1999 की दफात की मुश्तबा खिलाफ वर्जी के मामले में राजेश एक्सपोर्ट्स लिमिटेड और उससे जुड़े अफराद के बारे में जारी छानबीन के सिलसिले में ईडी ने कल से यह तलाशी की कार्रवाइयां शुरू की थी। एजेंसी ने कहा कि तफ्तीश से इंकशाफ हुआ है कि मस्कूरा कंपनी और उससे जुड़े अफराद गैर मुल्की जर मुबादला मैनेजमेंट एक्ट फेमा की मुबैना खिलाफ वर्जियों जिसमें बैरून ममालिक रकम का लेन देन 3,000 करोड़ रुपए मालियत की गैर शफाफ तरीके से तिजारत 40% स्टॉक के हिसाब में गड़बड़ और बैरून मुल्क बेनामी दारों के हिस्से में हेरा फेरी के मामलात शामिल हैं। ईडी ने तलाशी की कार्रवाइयों के दौरान बरामद किए गए मुख्तलिफ काबिल एतराज दस्तावेजात और डिजिटल शवाहिद के बारे में भी इंकशाफ किया। केरलम के विजिनजाम बैन अलाक्वामी बंदरगाह पर आज शाम एक 1,000वां तिजारती जहाज पहुंचा। ये अहम संगमेल बंदरगाह पर एमएससी लुसियाना नामी बड़े जहाज की आमद के साथ हासिल किया गया। इस कामयाबी के बाद विजिनजाम ने दुनिया की तेजी से तरक्की करने वाली बंदरगाहों में अपनी जगह मजीद मुस्तहकम कर ली है। रांची के राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में मेडिकल सीटों के अलॉटमेंट और दाखिलों के अमल में मुबैना बेजाब्तगियों की तहकीकात करने के लिए सीआईडी की एक टीम रिम्स पहुंची। सीआईडी की टीम ने डीन के दफ्तर और दीगर शोबों के दस्तावेजात की जांच शुरू कर दी है। ये तहकीकात गुज़िश्ता तालीमी साल में बाज़ नाअहल उम्मीदवारों को जाब्तों के खिलाफ वर्जी करते हुए दाखिला दिए जाने की शिकायत के बाद शुरू की गई हैं। भारतीय महकमा मौसमियात ने शिमाल मशरकी खित्ते झारखंड महाराष्ट्र उड़ीसा जैली हिमालयाई मगरबी बंगाल तेलंगाना साहिली कर्नाटक कोंकण और गोवा के मुख्तलिफ मकामात पर कल शदीद बारिश होने की पेशगोई की है। महकमे ने महाराष्ट्र मराठवाड़ा और मगरबी मध्य प्रदेश में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान जाहिर किया है, जबकि अगले 2 दिनों के लिए बिहार में भी इसी तरह के मौसम की सूरत हाल की पेशगोई की गई है। मौसमियात के महकमे के मुताबिक मगरबी राजस्थान में कल धूल भरी आंधी की पेशगोई है। महकमे के मुताबिक शिमाल मशरकी बहर अरब गुजरात और मध्य प्रदेश नीज महाराष्ट्र के बकिया हिस्सों और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों और झारखंड में जुनूब मगरबी मानसून मजीद पेशकदमी कर गया है। इस दौरान आज शाम कौमी राजधानी के कुछ हिस्सों में हल्की से औसत बारिश के बाद लोगों को गर्मी से राहत मिली है। फीफा वर्ल्ड कप में आज कनाडा के वैंकोवर में ग्रुप बी के मैच में कनाडा का मुकाबला स्विट्जरलैंड से होगा। ये मैच भारतीय वक्त के मुताबिक रात 12:30 बजे शुरू होगा। एक और मैच में वाशिंगटन के स्टील स्टेडियम में बोस्निया और हर्जेगोविना का मुकाबला कतर से होगा। इससे पहले मैक्सिको के शहर गुडालाजारा में कोलंबिया ने जमहूरिया कोंगो को 0-1 एक गोल से शिकस्त देकर राउंड ऑफ 32 के लिए क्वालिफाई किया। आखिर में खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। तिजारत और सनत के वजीर पीयूष गोयल ने अमरीकी तजारती नुमाइंदे सफीर जैमिसन ग्रियर के साथ तजारती मुजाकरात की पेशरफ का जायजा लिया। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने सियोल में जनूबी कोरिया के अपने हमनसब शोह्यून के साथ मीटिंग की और आलमी चैलेंजों के तनाजुर में भारत जनूबी कोरिया ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम करने पर जोर दिया। ओमान ने अब नए हुरमुस के जरिए एक आर्जी बहरी राहदारी खोलने का ऐलान किया है। कोलकाता में एक जेर तामीर गोदाम के मुनहदिम होने के हादसे में 5 अफराद हलाक हो गए हैं। इमदादी कार्रवाइयां तेजी के साथ जारी हैं। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर, आवाज जो आपके कारोबार को एक नई उड़ान दे। क्या आप चाहते हैं कि आपकी सोच आपका कारोबार हर दिल में जगह बनाए? तो देर किस बात की, राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर के साथ और अपने बिजनेस को दीजिए एक नई उड़ान, एक नई पहचान।
2: ये आकाशवाणी श्रीनगर मीडियम वेव अक्सा सख्त 16 किलोहर्ट्ज तो एफएम 17.5 मेगाहर्ट्ज़ पेट रोज सुबह 9:30 बजे समीन पेश प्रोग्राम सैन फनकार सैन एज के प्रोग्राम के फनकार छ मरूफ गुलुकार जमीला खान इवन सच हम कलाम प्रोग्राम के प्रोड्यूसर गुलाम रसूल अखुन।

0: हेलो महफिल गजल। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बात कर रहे हैं और कहाँ से?
1: मैं ड्राइवर मोहम्मद सिद्दीक बोल रहा हूँ, गनस्तान चकपुरा से।
0: जी शफी साहब, कैसे हैं आप?
1: बिल्कुल ठीक हो, आप ठीक हो?
0: अल्हम्दुलिल्लाह जी। कौन सी गजल की फरमाइश आज आप करना चाहते हैं?
1: नुसरत फतेह अली खान की आवाज़ में कोई भी गजल।
0: जी, कोई भी गजल आप सुनना चाहते हैं नुसरत फतेह अली खान की आवाज़ में? आपके साथ कोई साथी है?
1: गोतपुरा से जायद अहमद भट्ट।
0: जी, आपके लिए और आपके साथी के लिए हम ये गजल जरूर पेश करेंगे। आपका कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।

0: हेलो महफिले गजल
1: हेलो महफिले गजल
0: जी।
1: इरम दीदी अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम जी, मैं फरजाना जी बात कर रही हूँ।
1: फरजाना दीदी बोल रही हूँ।
0: हाँ जी हाँ जी बिल्कुल।
1: अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम जी, आप कौन बात कर रहे हैं?
1: आप कैसी हैं?
0: अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप बताएं आप कैसे हैं?
1: जी मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ, अल्लाह का करम है
0: जी। अपना नाम बताएं।
1: जी मैं अर्शिद हुसैन दुरानी बोल रहा हूँ बसंत बाग से।
0: जी अर्शिद साहब, कौन सी गजल की फरमाइश आज आप करना चाहते हैं?
1: जी आज मुझे एक गजल की फरमाइश करनी है, जगजीत सिंह की आवाज में है
0: जी।
1: गजल के बोल है, सर झुकाओगे तो पत्थर देवता हो जाएगा, इतना मत चाहो उसे वो बेवफा हो जाएगा। एल्बम का नाम है विजन।
0: जी जी बिल्कुल, हम आपके लिए गजल जो है पेश करेंगे। आपके साथ कोई साथी है जो ये गजल सुनना चाहेंगे?
1: जी ये डॉक्टर बशीर बदर का कलाम है।
0: जी जी,
1: मेरे पास मेरे फ्रेंड भी बैठे हैं, ये इम्तियाज और शबीर।
0: तो आपके लिए और आपके साथियों के लिए हम ये प्यारी सी गजल जरूर पेश करेंगे। आपका कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।

0: हेलो, महफिल गजल।
1: अस्सलाम वालेकुम दीदी।
0: वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बात कर रहे हैं और कहां से?
1: दीदी, मैं आपका मुस्तकिल सामीन शबीर अहमद खान सदरबाग नुनर गांदरबल से कर रहा हूं।
0: शबीर साहब, कैसे हैं आप?
1: दीदी, आप लोगों की दुआ होनी चाहिए।
0: हमेशा हमारी दुआएं जो है आप सबके साथ हैं और आप सबकी दुआएं भी जो है हमारे साथ होनी चाहिए।
1: बिल्कुल, हमेशा रहेगी
0: जी इंशाल्लाह। तो बताइए, कौन से गजल की फरमाइश आज आप करना चाहते हैं?
1: तेरे बगैर यूं जिए जा रहे हैं।
0: जी बिल्कुल, हम आपके लिए गजल जो है पेश करेंगे। कुछ साथी हैं आपके साथ?
1: बिल्कुल, पहले फारूक अहमद पीएचई बद्रकुंड मेरे साथ है। तो दीदी, मेरे साथ आप भी सुनोगी?
0: जी बिल्कुल।
1: नन्ना सा बच्चा है, मोमिन शबीर, आरजू शबीर, आबरी शबीर, मोहम्मद अमीन खान, मुश्ताक अहमद खान, जुबैदा बानो, रसीका बानो, अतीका बानो, हिना बानो, अब्दुल गनी, शबनम और जाहिद है। जाते जाते आपकी नजर एक शहर।
0: जी जरूर।
1: इस दुनिया में कब किसी का दर्द अपना लेते हैं लोग, रुख हवा का देखते ही अक्सर बदल जाते हैं लोग। अस्सलाम वालेकुम दीदी।
0: वालेकुम अस्सलाम।

0: हेलो, महफिल गजल।
1: अस्सलामु अलैकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बात कर रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, बस चस बिल्कुल ठीक। तू फरमायो, तू छु बस ठीक पड़?
1: आन ठीक पट असल पर बुछु सुरफाओ कंगने पर लतीफ मोहम्मद रेना।
0: लतीफ साहब, वनि बस कसस गजल छु तू यसा नाज बोजिन?
1: बिल्ले नादान तुझे हुआ क्या?
0: बिल्कुल, तो ऐसे छे कैसे थी ये गजल यसान बोजिन?
1: आन
0: नाव विन तो
1: गुलाम अहमद कुमार गांधरबल टेलर बेशरूफ
0: शेख
1: साहिल तनवीर बेस।
0: बिल्कुल, तो तुहन सथियन खतर करो ये गजल जरूर पेश। तुहन कॉल करने खतर सेठा सेठा शुक्रिया।

तो दोस्तों, इसी गजल के साथ ही अब आज के इस प्रोग्राम का वक्त भी मुकम्मल हुआ चाहता है। इसी महफिल में अगली बार आपके साथ फिर से मुलाकात होंगी। जब तक के लिए आपका, हमारा, हम सबका

0: सुनील अभी आप फरमाइशी गजलों का फोन इन प्रोग्राम समाप्त कर रहे थे। हेलो महफिल गजल पेश कर रही थी फरजाना। यह आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है। शब के ठीक 11 बजने वाले हैं। अब आकाशवाणी दिल्ली से समाचार नष्ट होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में प्रगति की 52वीं बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में लगभग 30,000 करोड़ रुपए की 4 प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की समीक्षा की गई। प्रधानमंत्री ने परियोजनाओं को समय पर पूरा करने और लंबित मुद्दों के शीघ्र समाधान पर बल दिया। बैठक में टीबी मुक्त भारत अभियान की भी समीक्षा की गई। श्री मोदी ने टीबी उन्मूलन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग और जागरूकता अभियानों में एनसीसी कैडेटों तथा माय भारत स्वयं सेवकों की भागीदारी बढ़ाने का सुझाव दिया। प्रधानमंत्री ने साइबर अपराध और डिजिटल धोखाधड़ी के बढ़ते मामलों पर चिंता व्यक्त करते हुए सभी एजेंसियों, बैंकों और डिजिटल प्लेटफॉर्मों के बीच बेहतर समन्वय तथा जन जागरूकता बढ़ाने के निर्देश दिए। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज अमरीकी व्यापार प्रतिनिधि दूत जैमिसन ग्रीर और उनके प्रतिनिधिमंडल के साथ नई दिल्ली में बैठक की। श्री गोयल ने भारत अमरीकी व्यापार वार्ता की प्रगति की समीक्षा की और दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी को और मजबूत करने के अवसरों की खोज की। उन्होंने राजदूत ग्रीर के नेतृत्व और दोनों पक्षों के रचनात्मक और प्रगतिशील तरीके से वार्ता को आगे बढ़ाने के निरंतर प्रयासों की भी सराहना की। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने आज नई दिल्ली में सामरिक रक्षा साझेदारी ढांचे के अंतर्गत रक्षा सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए एक बैठक आयोजित की। बैठक की सह अध्यक्षता अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के संयुक्त सचिव अमिताभ प्रसाद और संयुक्त अरब अमीरात के ब्रिगेडियर स्टाफ जमाल इब्राहिम मोहम्मद इब्राहिम अलमार जुकी ने की। चर्चा का मुख्य विषय रक्षा उद्योग सहयोग का विस्तार करना, नवाचार को बढ़ावा देना, विशिष्ट तकनीकों का लाभ उठाना और समुद्री सुरक्षा को मजबूत करना था। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर ने चुनौतीपूर्ण वैश्विक परिदृश्य के बीच भारत दक्षिण कोरिया संबंधों को और मजबूत करने की आवश्यकता पर बल दिया है। सोल में दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री चो ह्यून के साथ बैठक में डॉ. जयशंकर ने कहा कि वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय

0: परिदृश्य में विश्वसनीय साझेदारों के बीच सहयोग पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गया है।
1: It is really our responsibility.
2: इस साझेदारी को आगे बढ़ाना हमारी जिम्मेदारी है। इसमें सरकार के अलग अलग विभाग और देश की अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलू शामिल हैं, जिनके बीच तालमेल बिठाना बहुत आवश्यक है। मैं कहूँगा कि हमें भविष्य को ध्यान में रखते हुए एक आधुनिक साझेदारी की ओर बढ़ना चाहिए।
1: रिलेशनशिप इन अ मोर डिफिकल्ट वर्ल्ड।
0: नागर विमानन मंत्रालय ने कहा है कि 22 जून को दिल्ली से अमृतसर जा रही एयर इंडिया की एक उड़ान को रनवे निरीक्षण के दौरान के कारण अमृतसर हवाई अड्डे पर कुछ समय तक प्रतीक्षा करने के निर्देश दिए गए थे। मंत्रालय के अनुसार इस दौरान विमान रडार के मार्गदर्शन के तहत कुछ समय के लिए पाकिस्तान के हवाई क्षेत्र में प्रवेश कर गया था। ये प्रक्रिया पाकिस्तान के हवाई यातायात नियंत्रण अधिकारियों के समन्वय से की गई। बाद में विमान को दिल्ली वापस भेजा गया, जहां वे सुरक्षित रूप से उतरा। मंत्रालय ने बताया कि घटना की सूचना न देने के मामले में संबंधित एयर ट्रैफिक कंट्रोलर और विमान चालक दल के खिलाफ अंतरिम कार्रवाई की गई है। पश्चिम बंगाल में कोलकाता के तारातला इलाके में निर्माणाधीन गोदाम की छत गिरने की घटना के बाद राहत और बचाव अभियान जारी है। हादसे में अब तक 5 लोगों की मौत की खबर है। घायलों का इलाज सरकारी SSKM मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में चल रहा है। इस बीच मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने घटनास्थल का दौरा कर स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि कोलकाता नगर निगम घटना की रिपोर्ट तैयार कर रही है। उन्होंने कहा कि हादसे की विस्तृत जानकारी कल विधानसभा में दी जाएगी। गुजरात के भुज क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय में आज AI आधारित स्वचालित ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक का उद्घाटन किया गया। नई व्यवस्था के अंतर्गत ड्राइविंग टेस्ट से पहले वाहन का पंजीकरण, प्रशिक्षण वीडियो देखना, फोटो स्कैनिंग और RFID सेंसर लगाना अनिवार्य किया गया है। अधिकारियों के अनुसार इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और पूरी प्रक्रिया अधिक निष्पक्ष बनेगी। ईरान में मौजूद भारतीय दूतावास ने भारतीय नागरिकों के लिए यात्रा परामर्श जारी किया है। दूतावास ने कहा है कि अगली सूचना तक भारतीय नागरिक जब तक आवश्यक ना हो ईरान की यात्रा ना करें। दूतावास ने भारतीय नागरिकों से कहा है कि वे अपने आसपास की स्थिति पर लगातार नजर रखें और स्थानीय प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों का पालन करें। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

फागुन फिल्म का ये नगमा आशा जी और मोहम्मद रफी साहब की बहुत ही खूबसूरत आवाजों में आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर गीत मेरे मनमीत की इस बेहद खूबसूरत महफिल में और गीत मेरे मनमीत की इस बेहद खूबसूरत महफिल में आगे बढ़ते हैं एक और बहुत ही खूबसूरत नगमे के साथ और ये नगमा है फिल्म हावड़ा ब्रिज से। यह फिल्म आई थी 1958 में। इस फिल्म में मुख्य किरदार निभाने वालों में अशोक कुमार मधुबाला और उनके साथ थे के एन सिंह, मदनपुरी, ओम प्रकाश, धूमल, सुंदर

ब्रह्मा भरद्वाज, चमनपुरी, निर्मल कुमार, महमूद, मीनू मुमताज वगैरह। इस फिल्म के गीतों को लिखा है कमर जलालाबादी साहब और हसरत जयपुरी ने, और इसी फिल्म का एक बहुत ही खूबसूरत जलालाबादी साहब का लिखा हुआ, आवाजें हैं मोहम्मद रफी साहब और आशा भोसले जी की। तो आइए आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं ये बेहद खूबसूरत नगमा आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर एक छोटे से अंतराल के बाद एक बार फिर मैं फेरोज आप तमाम सुनने वालों का शानदार इस्तकबाल करता हूं, स्वागत करता हूं। वक्त हो चुका है हमारे स्टूडियो की घड़ी के मुताबिक ठीक 11:32 और 45 सेकेंड और गीत मेरे मनमीत की इस महफिल में सुनहरे दौर के उन नगमों के साथ हम हाजिर हैं जो आपके दिल के बेहद करीब है और आप इसे बार बार सुनना चाहते हैं, गुनगुनाना चाहते हैं। और ऐसे ही नगमों के साथ हम हाजिर हैं जो गोल्डन एरा की पहचान बनते हैं, सुनहरे दौर की पहचान बनते हैं। ये वो नगमे हैं जो हम सब उन्हें बार बार सुनते हैं, गुनगुनाते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं और सुनहरे दौर के इस नगमे को और आगे बढ़ाते हैं एक बेहद खूबसूरत फिल्म आवारा के एक नगमे से। यह फिल्म आई थी 1951 में। राज कपूर साहब के निर्माण और निर्देशन में बनी इस फिल्म में मुख्य किरदार निभाने वालों में पृथ्वीराज कपूर, खुद राज कपूर, नरगिस, लीला चटनीस, के एन सिंह, शशि कपूर वगैरह ने बहुत ही खूबसूरत अभिनय किया था। इसी फिल्म का एक बहुत ही प्यारा नगमा जिसको लिखा है शैलेंद्र साहब ने और बहुत ही खूबसूरत संगीत से संवारा है शंकर जयकिशन साहब ने। हालांकि इस फिल्म में दो गीतकारों ने गीत लिखे, एक शैलेंद्र साहब और दूसरे हसरत जयपुरी साहब। पर यह नगमा जो मैं आपके लिए लेकर आया हूं उसे लिखा है शैलेंद्र साहब ने। तो आइए सुनवाते हैं वही नगमा आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर लता जी और मुकेश साहब की बहुत ही खूबसूरत आवाजों में।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर महफिल सजी है आपकी अपनी पसंदीदा गीत मेरे मनमीत की। और गीत मेरे मनमीत की इस महफिल में इस सफर को यूं ही बरकरार रखते हुए आगे बढ़ते हैं एक और बहुत ही मशहूर फिल्म के नगमे की तरफ। और वो फिल्म है 1958 में आई मधुमति। इस फिल्म में मुख्य किरदार निभाने वालों में वैजयंती माला, दिलीप कुमार, जॉनी वॉकर और साथी कलाकारों में प्राण, जयंत, रामायण तिवारी, तरुण बोस और बूडो आडवाणी वगैरह ने बेहद खूबसूरत अभिनय किया था। इस फिल्म के संगीत की अगर बात करें तो मधुमति का संगीत 1958 का सबसे ज्यादा बिकने वाला हिंदी फिल्म संगीत बना। इस फिल्म के लिए सलील चौधरी को पहला फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला जो सर्वश्रेष्ठ संगीतकार का मिला। सुहाना सफर और ये मौसम हसी मुकेश के सबसे लोकप्रिय गीतों में से एक है और आज भी बहुत पसंद किए जाते हैं। उसी फिल्म का ये बहुत ही खूबसूरत नगमा हम आपके लिए लेकर आए हैं लता जी और मन्ना डे साहब की बहुत ही प्यारी आवाजों में आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर गीत मेरे मनमीत की इस बहुत ही खूबसूरत महफिल में।

लता जी और मन्ना डे साहब की बहुत ही खूबसूरत आवाजों में यह नगमा था फिल्म मधुमति से। आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गुड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर गीत मेरे मनमीत की इस बेहद खूबसूरत महफिल में। तो आइए गीत मेरे मनमीत के सफर को यूं ही बरकरार रखते हुए आगे बढ़ते हैं और चलते हैं एक और गोल्डन एरा के बहुत ही खूबसूरत नगमे की तरफ। और हम आपको अब लेकर चलते हैं 1949 के दौर में। 1949 में एक बेहद खूबसूरत फिल्म आई थी जो बहुत ही मशहूर रही और उसके नगमे भी बहुत ही कामयाब रहे, और वो फिल्म थी कमाल अमरोही साहब के निर्माण और कमाल अमरोही साहब के निर्देशन में यह फिल्म थी महल, जिसका निर्माण किया था अशोक कुमार साहब ने। और इस फिल्म में मुख्य किरदार निभाने वालों में अशोक कुमार, मधुबाला और साथी कलाकारों में एम कुमार, विजय लक्ष्मी, कानू राय, नाजिर हुसैन, शीला नायक, लीला पांडे, नीलम, कनीज, जगन्नाथ, मोहसिन वगैरह, ये तमाम लोग थे। और इन लोगों ने अपने अभिनय से इस फिल्म को एक यादगार फिल्म बना दिया। इस फिल्म में तकरीबन 8 नगमे थे और उन तमाम गीतों को लिखा था जे नक्शराब ने।

और इन गीतों को बहुत ही खूबसूरत संगीत से संवारा खेमचंद प्रकाश साहब ने। तो आइए इसी फिल्म का एक बहुत ही प्यारा नगमा हम आपको सुनवाते हैं, राजकुमारी और जोहराबाई अम्बाले वाले की आवाजों में, आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर। कुछ नगमे ऐसे हैं जिन्हें आप बार बार सुन चुके हैं और कुछ ऐसे हैं जिन्हें शायद नहीं सुन पाए हैं। उन्हीं नगमों में से ये बहुत ही प्यारा नगमा आपके लिए है।

आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर गीत मेरे मनमीत में सुनहरे दौर के उन नगमों के साथ हम हाजिर हैं और अगला नगमा एक बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही मशहूर फिल्म से, और ये फिल्म थी 1957 में आई नया दौर, जिसके निर्देशक थे और निर्माता भी B.R. चोपड़ा साहब। और इस फिल्म में दिलीप कुमार साहब, वैजयंती माला ने मुख्य भूमिका निभाई थी, साथ में अजीत जीवन, जॉनी वॉकर, चांद उस्मानी, नाजिर हुसैन, मनमोहन कृष्ण, लीला चटनीस, डेजी ईरानी, मूलचंद, कुमकुम वगैरह ने बहुत ही खूबसूरत अभिनय किया था। इसी फिल्म का एक बहुत ही खूबसूरत नगमा हम आपके लिए लेकर आए हैं। आवाजें हैं शमशाद बेगम और आशा भोसले जी की। इस फिल्म के गीतों को लिखा है साहिर लुधियानवी साहब ने और बहुत ही खूबसूरत संगीत से संवारा है OP नैयर साहब ने। तो आइए सुनते हैं वही नगमा आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर।

0: इसी नगमे के साथ मुझे यानी फेरोज को अब दीजिए इजाजत। आज की गीत मेरे मनमीत की महफिल को यहीं पर समाप्त करने की। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में बारी बारी से समाचार, और समाचारों के बाद अंजू रहेगी आपके साथ लेकर अगला प्रोग्राम। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री दिल्ली में प्रगति की 52वीं बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में लगभग 30,000 करोड़ रुपए की 4 प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की समीक्षा की गई। प्रधानमंत्री ने परियोजनाओं को समय पर पूरा करने और लंबित मुद्दों को शीघ्र समाधान पर बल दिया। बैठक में टीबी मुक्त भारत अभियान की भी समीक्षा की गई। श्री मोदी ने टीबी उन्मूलन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग और जागरूकता अभियानों में एनसीसी कैडेटों तथा माई भारत स्वयंसेवकों की भागीदारी। प्रधानमंत्री ने साइबर अपराध और डिजिटल धोखाधड़ी के बढ़ते मामलों पर चिंता व्यक्त करते हुए सभी एजेंसियों, बैंकों और डिजिटल प्लेटफार्मों के बीच बेहतर समन्वय तथा जन जागरूकता बढ़ाने के निर्देश दिए। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने अमरीकी व्यापार प्रतिनिधि दूत जैमिसन ग्रीर और उनके प्रतिनिधि मंडल के साथ नई दिल्ली में बैठकें की। श्री गोयल ने भारत अमरीकी व्यापार वार्ता की प्रगति की समीक्षा की और दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी को और मजबूत करने के अवसरों की खोज की। उन्होंने राजदूत ग्रीर के नेतृत्व और दोनों पक्षों के रचनात्मक और प्रगतिशील तरीके से वार्ता को आगे बढ़ाने के निरंतर प्रयासों की भी सराहना की। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने नई दिल्ली में सामरिक रक्षा साझेदारी ढांचे के अंतर्गत रक्षा सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए एक बैठक आयोजित की। बैठक की सह अध्यक्षता अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के संयुक्त सचिव अमिताभ प्रसाद और संयुक्त अरब अमीरात के ब्रिगेडियर स्टाफ जमाल इब्राहिम मोहम्मद इब्राहिम अल मारजूकी ने की। चर्चा का मुख्य विषय रक्षा उद्योग सहयोग का विस्तार करना, नवाचार को बढ़ावा देना, विशिष्ट तकनीकों का लाभ उठाना और समुद्री सुरक्षा को मजबूत करना था। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने चुनौतीपूर्ण वैश्विक परिदृश्य के बीच भारत दक्षिण कोरिया संबंधों को और मजबूत करने की आवश्यकता पर बल दिया है। सोल में दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री चो ह्यून के साथ बैठक में डॉ जयशंकर ने कहा कि वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में विश्वसनीय साझेदारों के बीच सहयोग पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गया है।
2: It is really our responsibility.
3: इस साझेदारी को आगे बढ़ाना हमारी जिम्मेदारी है। इसमें सरकार के अलग अलग विभाग और देश की अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलू शामिल हैं, जिनके बीच तालमेल बिठाना बहुत आवश्यक है। मैं कहूँगा कि हमें भविष्य को ध्यान में रखते हुए एक आधुनिक साझेदारी की ओर बढ़ना चाहिए।
2: रिलेशनशिप इन अ मोर डिफिकल्ट वर्ल्ड।
1: ईरान में मौजूद भारतीय दूतावास ने भारतीय नागरिकों के लिए यात्रा परामर्श जारी किया है। दूतावास ने कहा है कि अगली सूचना तक भारतीय नागरिक जब तक आवश्यक ना हो ईरान की यात्रा ना करें। दूतावास ने भारतीय नागरिकों से कहा है कि वे अपने आसपास की स्थिति पर लगातार नजर रखें और स्थानीय प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों का पालन करें।

0: भारत और तजाकिस्तान के बीच आतंकवाद रोधी संयुक्त कार्य समूह की पांचवी बैठक ताजिकिस्तान की राजधानी दुशांबे में आयोजित की गई। बैठक की सह अध्यक्षता विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव डॉ विनोद बहाड़े और ताजिकिस्तान के विदेश मंत्रालय के अधिकारी शेराली जोनो ने की। बैठक में दोनों देशों ने वैश्विक और क्षेत्रीय स्तर पर आतंकवादी संगठनों से उत्पन्न खतरों तथा उग्रवाद, कट्टरपंथ, आतंकवाद के वित्त पोषण, तकनीकी दुरुपयोग और मादक पदार्थों की तस्करी जैसे मुद्दों पर चर्चा की। अमेरिका की एक संघीय अदालत ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के चुनाव संबंधी कार्यकारी आदेश के अधिकांश प्रावधानों पर स्थायी रोक लगा दी है। बोस्टन की संघीय न्यायाधीश डेनिस कैस्पर ने कहा कि चुनावों को विनियमित करने का अधिकार राज्यों और कांग्रेस के पास है, राष्ट्रपति के पास नहीं। राष्ट्रपति ट्रंप के आदेश में मतदाता पंजीकरण के लिए नागरिकता का दस्तावेजी प्रमाण अनिवार्य करने, चुनाव के बाद प्राप्त डाक मतपत्रों की गिनती रोकने तथा नियमों का पालन न करने वाले राज्यों के लिए संघीय धनराशि रोकने जैसे प्रावधान शामिल थे। ओमान ने होर्मुज जलडमरू मध्य से एक अस्थायी समुद्री गलियारे के खोलने की घोषणा की है। ये वाणिज्यिक जलमार्ग को बहाल करने और खाड़ी में फंसे हजारों नाविकों के समुद्री संकट को कम करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण। फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप बी मुकाबले में देर रात स्विट्जरलैंड का मुकाबला कनाडा से होगा। वहीं इसी ग्रुप में कतर और बोस्निया एंड हर्जेगोविना आमने सामने होंगे। दोनों मुकाबले रात 12:30 बजे से खेले जाएंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज शेयर्ड बाय अपराजिता नायर। Prime Minister Narendra Modi chaired the 52nd meeting of Pragati, the ICT-enabled multimodal platform for proactive governance and timely implementation at Seva Teerth in New Delhi. During the meeting, Mr. Modi reviewed four major infrastructure projects in the road, power, industrial corridor and metro rail sectors across four states, involving an investment of around 30,000 crore rupees. The Prime Minister stressed that delays in infrastructure projects lead to cost escalation and deprive citizens and industries of timely benefits. He directed the concerned ministries and state governments to resolve bottlenecks in a mission mode and ensure close monitoring of project implementation. The Prime Minister also emphasized the effective use of the PM Gati Shakti National Master Plan for efficient planning and timely execution of infrastructure projects. The Prime Minister's office informed that the meeting also reviewed the TB Mukt Bharat Abhiyan. Mr. Modi also reviewed grievances related to cybercrime and digital arrest cases. Union Commerce and Industry Minister Piyush Goyal has concluded a series of meetings with U.S. Trade Representative Ambassador Jamie Sun Greer and his delegation in New Delhi yesterday. In a social media post, Mr. Goyal said, "They reviewed the progress of the ongoing India-U.S. trade discussions and explored avenues to further deepen economic partnership between both the countries." He also appreciated Ambassador Greer's leadership and the sustained efforts of both teams in advancing the discussions in a constructive and forward-looking manner. The 12th Indo-European Union Human Rights Dialogue was held in New Delhi yesterday. During the dialogue, both sides noted their commitment to the promotion and protection of all human rights and emphasized the universality, indivisibility, and interrelatedness of all human rights. The MEA said that both sides discussed their shared interest in increased cooperation on humanitarian assistance and disaster relief. India and Tajikistan held the fifth meeting of the Joint Working Group on Counter-Terrorism in Dushanbe yesterday. Ministry of External Affairs said that during the meeting, both sides discussed threats posed by terrorist groups globally and in their respective regions. The two sides also discussed measures to strengthen bilateral cooperation in the field of counter-terrorism through enhanced information sharing, capacity building, and the exchange of best practices. Prime Minister Narendra Modi congratulated Armenia's Prime Minister Nikol Pashinyan and his party on their victory in the recently held parliamentary elections in Armenia. Mr. Modi received a call from his Armenian counterpart earlier today. Prime Minister Modi thanked him for facilitating the evacuation of Indian nationals stranded in Iran following the recent. As a house-to-house enumeration of special intensive revision of electoral rules in Delhi

तारों में नहाई ये रात और उस पे सरगोशी करती ये हवा। बार बार ये एहसास दिल करा रही है कि आगाज हो चुका है उस महफिल का जिसमें शिरकत होती है आपकी और महफिल सजती है आपके अपने ही चैनल जिसका नाम है आकाशवाणी गोल्ड, आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। मैं हूं अंजू आपके साथ, स्वागत है आप सभी का। कार्यक्रम लेकर आई हूं निशिगंधा। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और शुरुआत बहुत ही खूबसूरत गीत के साथ, फिल्म स्वामी और जिसे गाया है लता मंगेशकर ने।

कोई और करे क्या तुम्हारी चाहत का यूं हिसाब, कोई और करे क्या तुम्हारी चाहत का यूं हिसाब, हमारे जितना प्यार पाओगे तो खुद को भी भूल जाओगे।

काबिल समझा उसने मुझे, ये उसका करम है। मोहब्बत के काबिल समझा उसने मुझे, ये उसका करम है। वरना तो इस जमाने में वफा ढूंढना सिर्फ एक वहम।

लोग कहते हैं मेरा महबूब चांद जैसा है, लोग कहते हैं कि मेरा महबूब चांद जैसा है। नहीं नहीं, लोग तो धोखे में हैं, चांद मेरे महबूब जैसा है।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 26 जून तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।

जो दोस्त हमारे साथ अभी अभी जुड़े हैं, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। अंजू है आपके साथ और कार्यक्रम है निशिगंधा।

0: न जाने कितने सपने तेरे लिए इन आंखों में सजाए हैं, न जाने कितने सपने तेरे लिए इन आंखों में सजाए हैं, हमने तो अपनी जिंदगी के हर लम्हे बस तुझसे ही तो महकाए हैं।
1: मैंने

और तुमसे क्या कहूं कि तुमसे शुरू और तुम पे ही खत्म मेरी हर बात हो, कि तुमसे शुरू और तुम पे ही खत्म मेरी हर बात हो। तुम चाहे जहां भी रहो, मेरा साया तुम्हारे साथ हो।

और क्या मांगू मैं अपनी दुआओं में, खुदा से और क्या मांगू मैं अपनी दुआओं में कि बस उम्र भर का साथ मिल जाए तेरा इन राहों में।

कहने को तो बहुत कुछ है इस दिल में, मगर तेरी एक मुस्कुराहट के आगे मेरे सारे लफ्ज कम पड़ जाते हैं।

दोस्तों, ये कार्यक्रम का आखिरी गीत है। अभी होंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार, फिर आपसे दोबारा मिलूंगी 1:10 पर कार्यक्रम गीत सुहाने लेकर, जिसमें चलेंगे हुजरे दौर की गीत सुनने के लिए। सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में प्रगति की 52वीं बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में लगभग 30,000 करोड़ रुपए की 4 प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की समीक्षा की गई। प्रधानमंत्री ने परियोजनाओं को समय पर पूरा करने और लंबित मुद्दों के शीघ्र समाधान पर बल दिया। बैठक में टीबी मुक्त भारत अभियान की भी समीक्षा की गई। श्री मोदी ने टीबी उन्मूलन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की उपयोग और जागरूकता अभियानों में एनसीसी कैडेटों तथा माई भारत स्वयं सेवकों की भागीदारी बढ़ाने का सुझाव दिया। प्रधानमंत्री ने साइबर अपराध और डिजिटल धोखाधड़ी के बढ़ते मामलों पर चिंता व्यक्त करते हुए सभी एजेंसियों, बैंकों और डिजिटल प्लेटफार्मों के बीच बेहतर समन्वय तथा जन जागरूकता बढ़ाने के निर्देश दिए। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने अमरीकी व्यापार प्रतिनिधि दूत जेमिसन ग्रीर और उनके प्रतिनिधि मंडल के साथ नई दिल्ली में बैठकें की। श्री गोयल ने भारत अमरीकी व्यापार वार्ता की प्रगति की समीक्षा की और दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी को और मजबूत करने के अवसरों की खोज की। उन्होंने राजदूत गीर के नेतृत्व और दोनों पक्षों के रचनात्मक और प्रगतिशील तरीके से वार्ता को आगे बढ़ाने के निरंतर प्रयासों की भी सराहना की। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने चुनौतीपूर्ण वैश्विक परिदृश्य के बीच भारत दक्षिण कोरिया संबंधों को और मजबूत करने की आवश्यकता पर बल दिया है। सोल में दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री चो ह्यून के साथ बैठक में डॉ जयशंकर ने कहा कि वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में विश्वसनीय साझेदारों के बीच सहयोग पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गया है।
1: इस साझेदारी को आगे बढ़ाना हमारी जिम्मेदारी है। इसमें सरकार के अलग अलग विभाग और देश की अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलू शामिल हैं, जिनके बीच तालमेल बिठाना बहुत आवश्यक है। मैं कहूंगा कि हमें भविष्य को ध्यान में रखते हुए एक आधुनिक
2: रिलेशनशिप इन अ मोर डिफिकल्ट वर्ल्ड।
0: कोलकाता में भवन ढहने की घटना के संबंध में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने भवन के परियोजना पर्यवेक्षक सहित 3 आरोपियों को हिरासत में लिया है और मामले की जांच जारी है। इस हादसे में अब तक 5 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कई अन्य घायल हुए हैं। सेना, एनडीआरएफ, पुलिस और अग्निशमन विभाग की टीमें राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्मेनिया के प्रधानमंत्री निकोल पाशिनयान और उनकी पार्टी को हाल ही में हुए संसदीय चुनावों में जीत पर बधाई दी है। दोनों नेताओं के बीच आज टेलीफोन पर बातचीत हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम एशिया की हालिया परिस्थितियों के बीच ईरान में फंसे भारतीय नागरिकों की निकासी में सहयोग के लिए आर्मेनिया का आभार व्यक्त किया। दोनों नेताओं ने व्यापार, रक्षा, प्रौद्योगिकी और लोगों के बीच संपर्क जैसे क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत बनाने की प्रतिबद्धता दोहराई। ईरान में मौजूद भारतीय दूतावास ने भारतीय नागरिकों के लिए यात्रा परामर्श जारी किया है। दूतावास ने कहा है कि अगली सूचना तक भारतीय नागरिक जब तक आवश्यक न हो ईरान की यात्रा न करें। दूतावास ने भारतीय नागरिकों से कहा है कि वे अपने आसपास की स्थिति पर लगातार नजर रखें और स्थानीय प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों का पालन करें। अमेरिका की एक संघीय अदालत ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के चुनाव संबंधी कार्यकारी आदेश के अधिकांश प्रावधानों पर स्थायी रोक लगा दी है। बोस्टन की संघीय न्यायाधीश टेनिसन कैस्पर ने कहा कि चुनावों को विनियमित करने का अधिकार राज्यों और कांग्रेस के पास है, राष्ट्रपति के पास नहीं। राष्ट्रपति ट्रंप के आदेश में मतदाता

दोस्तों, गुजरे जमाने के गीत और संगीत में जो मधुरता थी वो आज के श्रोताओं को भी बरबस अपनी ओर खींचती है, और उसी को बरकरार रखते हुए हम लेकर आए हैं आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम जिसका नाम है गीत सुहाने। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज आपने ट्यून किया है और मैं हूं एक बार फिर से आपके साथ अंजू। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, और समय हुआ है 1:11:30। शुरुआत कर रही हूं फिल्म मधुमती से। ये फिल्म 1958 में आई थी और इस गीत को गाया है लता मंगेशकर ने।

ऐसे पुराने गीतों को सुनकर यकीन बहुत अच्छा लगता है, और जब आजकल की युवा पीढ़ी भी इन गीतों को सुनती है, इनके रीमेक्स को सुनते हैं, तो यकीन मानिए दिल खुश हो जाता है। लेकिन ओरिजिनल गीत ओरिजिनल ही होता है। चलिए अब बात करते हैं एक ऐसी फिल्म की जो राज कपूर द्वारा निर्मित और निर्देशित थी, और ये फिल्म 1951 में आई थी। इसका नाम था आवारा। राज कपूर साहब की खासियत ये थी कि वह अपनी फिल्मों में मुख्य भूमिका खुद ही निभाते थे, और सबसे मजेदार बात ये रही कि उनके ही अपने परिवार के 3 सदस्यों ने इस फिल्म में प्रमुख भूमिकाएं निभाई। पिता पृथ्वीराज कपूर ने जज रघुनाथ की भूमिका निभाई, और सबसे छोटे भाई शशि कपूर ने राज कपूर के बचपन का रोल किया। और तो और, पृथ्वीराज कपूर जी के पिताजी और राज कपूर के दादाजी दीवान विश्वनाथ कपूर ने भी एक छोटा सा रोल किया। आगे बात करूंगी इस फिल्म ने कहां कहां सफलता पाई। पहले एक बहुत ही प्यारा गीत इसी फिल्म से।

अपने देश के अलावा ये फिल्म विदेशों में बहुत पॉपुलर हुई और कई जगह उसका गीत आज भी गाया जाता है, जिसे गाया मुकेश और लिखा शैलेंद्र ने, संगीत दिया था शंकर जयकिशन ने। जी हाँ, आवारा हूँ। ये फिल्म कान फिल्म फेस्टिवल में भी ग्रैंड प्राइज के लिए नॉमिनेट हुई। इस फिल्म के सभी गीत बहुत मशहूर हुए। हसरत जयपुरी साहब ने भी कुछ गीत इसके लिखे। तो चलिए सुनते हैं इसका दूसरा गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में।

दोस्तों बात करते हैं फिल्म अलबेला की। ये फिल्म 1951 में आई थी। ये क्लासिक बॉलीवुड म्यूजिकल कॉमेडी फिल्म है और इसका निर्देशन भगवान दादा ने किया और इसमें उन्होंने गीता बाली के साथ अभिनय भी किया है। ये फिल्म अपने यादगार गानों, एक संघर्षरत कलाकार के सपनों को साकार करने की बहुत ही दिलचस्प कहानी है। कहा जाता है कि इस फिल्म ने उस दौर में सबसे ज्यादा कमाई की थी। और जानते हैं एक जो गीत है इसका, शोला जो भड़के, ये एक ऐसी घटना बन गई थी इसकी कि जब ये गाना पर्दे पर आता था तो सिनेमा घर में दर्शक इसे बजते समय स्क्रीन पर सिक्के फेंकते थे। और एक बड़ी रोचक जानकारी यह है कि भगवान दादा को सेट पर पेशेवर डांसर नहीं मिल पाने, स्टंटमैन और फाइटर से ही फिल्म के लिए नृत्य की कोरियोग्राफी कराई। नृत्य की इस अनोखी और मौलिक शैली ने उनकी एक अलग ही पहचान बनाई। तो चलिए सुनते हैं इसी फिल्म का एक गीत जिसे गाया है लता मंगेशकर ने और उनका साथ दिया है सी रामचंद्र ने।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं, विरासत की उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।

समय हुआ है 1:32 और 52 सेकंड। कार्यक्रम है गीत सुहाने, मैं हूं आपके साथ अंजू। अभी जो मैं आपको गीत सुनाने जा रही हूं, ये फिल्म है दो बीघा जमीन, जो 1953 में प्रदर्शित हुई थी, और इस गीत को गाया है लता मंगेशकर के साथ मन्ना डे ने और साथियों ने, संगीत दिया है सलिल चौधरी ने।

दोस्तों बात करते हैं 1953 में आई फिल्म लड़की की। एम वी रमन द्वारा निर्देशित हिंदी सिनेमा के एक बेहद रोमांटिक लोकप्रिय फिल्म थी और एक कॉमेडी फिल्म थी। इस फिल्म ने अपने दौर में बहुत ज्यादा प्रसिद्धि पाई और दर्शकों को खूब हंसाया था। इस फिल्म में वैसे तो मुख्य रूप से हीरो थे भारत भूषण, लेकिन किशोर कुमार ने सेकेंड लीड में इतनी जबरदस्त अपनी प्रतिभा दिखाई कि सबका दिल जीत लिया। और कहा जाता है कि किशोर कुमार के अभिनय का जो शुरुआत मानी जाती है, पहली हिट फिल्म यही मानी जाती है। और दोस्तों ये फिल्म असल में दक्षिण भारत की ब्लॉकबस्टर फिल्म पेन की रीमेक थी। और दिलचस्प बात यह है कि तमिल मूल की जो फिल्म थी, हिंदी रीमेक में लड़की के नाम से ये फिल्म बनाई गई, तो दोनों में ही जो वैजयंती माला और अंजलि देवी, उन्होंने ही तमिल वर्जन में इस फिल्म में काम किया था। लेकिन तमिल वर्जन में वैजयंती माला और अंजलि देवी के अपोजिट थे जैमिनी गणेशन, और जबकि हिंदी में भारत भूषण और किशोर कुमार को लिया गया था। वैजयंती माला ने अपने करियर के शुरुआती दौर में इस फिल्म में रानी मेहरा के नाम की एक आत्मनिर्भर और प्रगतिशील लड़की का किरदार निभाया। फिल्म में उनके शास्त्रीय और आधुनिक नृत्य ने दर्शकों को बेहद प्रभावित किया, जिससे आगे चलकर उन्हें बॉलीवुड की पहली डांसिंग सुपरस्टार बनाया। तो चलिए सुनते हैं उसी फिल्म का एक गीत लता मंगेशकर की आवाज में।

अब बात करते हैं फिल्म दीदार की। ये फिल्म 1951 में ही प्रदर्शित हुई थी। नितिन बोस द्वारा निर्देशित हिंदी सिनेमा की एक ऐतिहासिक और बेहद भावुक फिल्म दीदार। ये फिल्म हिंदी सिनेमा के दिग्गज अभिनेता दिलीप कुमार साहब को ट्रेजेडी किंग के रूप में स्थापित करने वाली सबसे महत्वपूर्ण फिल्मों में से एक मानी जाती है। दोस्तों, ये भी कहा जाता है कि ये फिल्म जब सिनेमाघर में प्रदर्शित हुई तो दर्शक इतने भावुक हो जाते थे कि वो लोग रोने लगते थे वहीं पर ही। और इस फिल्म को बार बार देखने के लिए टिकट न मिलने पर बाहर भीड़ बहुत बेकाबू हो जाती थी। कलाकारों की बात करें तो बाल कलाकारों की शुरुआत जो हुई थी, परीक्षित सहनी साहब ने दिलीप कुमार साहब के बचपन का किरदार निभाया, वहीं मशहूर होस्ट और अभिनेत्री तबस्सुम ने नरगिस के बचपन का किरदार निभाया। गीत आशा भोंसले और गीता दत्त की आवाज में।

अभी आपने फिल्म दीदार से एक गीत सुना जिसे गाया था लता मंगेशकर के साथ शमशाद बेगम ने। महबूब खान साहब की एक फिल्म आई थी आन, 1952 में ये फिल्म प्रदर्शित हुई थी। ये भारत की पहली टेक्निकल फिल्म थी। दिलीप साहब, प्रेमनाथ, निम्मी, हालांकि नादिरा जी को नरगिस जी की जगह रिप्लेस किया गया था, ये बहुत बड़ी हिट फिल्म रही। हालांकि इसके रिकॉर्ड को श्री 420 ने 3 साल बाद तोड़ा।

हालांकि इस फिल्म का बजट बहुत ज्यादा था, ये पहली ऐसी फिल्म थी जो कि दुनिया भर में प्रदर्शित की गई। लंदन में भी इस फिल्म का एक प्रीमियर हुआ जिसमें महबूब खान साहब और उनकी पत्नी और अभिनेत्री निम्मी ने उसको अटेंड किया। तो चलिए सुनते हैं इसी फिल्म का एक गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में।

0: चांद के पीछे भाग रहा हूं मगर अब तक पकड़ नहीं पाया उसे। एक बात बताइए,
1: क्या
0: ऐसा महसूस क्यों होता है?
1: सपनों में देखा होगा।
0: जी हाँ, मैं सपने बहुत देखा करता हूं।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में प्रगति की 52वीं बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में लगभग 30,000 करोड़ रुपए की 4 प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की समीक्षा की गई। प्रधानमंत्री पूरा करने और लंबित मुद्दों के शीघ्र समाधान पर बल दिया। बैठक में श्री मोदी ने टीबी उन्मूलन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग और जागरूकता अभियानों में एनसीसी कैडेटों तथा माई भारत स्वयंसेवकों की भागीदारी बढ़ाने का सुझाव दिया। प्रधानमंत्री ने साइबर अपराध और डिजिटल धोखाधड़ी के चिंता व्यक्त करते हुए सभी एजेंसियों, बैंकों और डिजिटल प्लेटफार्मों के बीच बेहतर समन्वय तथा जन जागरूकता बढ़ाने के निर्देश दिए। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने चुनौतीपूर्ण वैश्विक परिदृश्य के बीच भारत दक्षिण कोरिया संबंधों को और मजबूत करने की आवश्यकता पर बल दिया है। सोल में दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री चो ह्यून के साथ बैठक में डॉ जयशंकर ने कहा कि वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में विश्वसनीय साझेदारों के बीच सहयोग पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गया है।
1: इस साझेदारी को आगे बढ़ाना हमारी जिम्मेदारी है। इसमें सरकार के अलग अलग विभाग और देश की अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलू शामिल हैं, जिनके बीच तालमेल बिठाना बहुत आवश्यक है। मैं कहूंगा कि हमें भविष्य को ध्यान में रखते हुए एक आधुनिक साझेदारी की ओर बढ़ना चाहिए।
0: केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज से ब्रिटेन की 3 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर जाएंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया कि यह यात्रा भारत और ब्रिटेन के बीच महत्वपूर्ण व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते तथा दोहरे अंशदान पर समझौते के लागू होने से पहले हो रही है। ये समझौते 15 जुलाई से लागू हो जाएंगे। यात्रा के दौरान पीयूष गोयल लंदन में ब्रिटेन के व्यापार और वाणिज्य मंत्री पीटर काइल के साथ उच्च स्तरीय द्विपक्षीय बैठक करेंगे। बैठक में व्यापार समझौते को लागू करने की तैयारियों पर चर्चा होगी। ग्रामीण विकास में एआई के उपयोग पर एक राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन करेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि ये 1 दिवसीय कार्यक्रम अत्याधुनिक तकनीकी नवाचारों को ग्रामीण भारत की जमीनी स्तर की विकासात्मक आवश्यकताओं के साथ जोड़ने के लिए एक सहयोगात्मक मंच के रूप में कार्य करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्मेनिया के प्रधानमंत्री निकोल पाशिनयान और उनकी पार्टी को हाल ही में जीत पर बधाई दी है। दोनों नेताओं के बीच आज टेलीफोन पर बातचीत हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम एशिया की हालिया परिस्थितियों के बीच ईरान में फंसे भारतीय नागरिकों की निकासी में सहयोग के लिए आर्मेनिया का आभार व्यक्त किया। दोनों नेताओं ने व्यापार, रक्षा, प्रौद्योगिकी और लोगों के बीच संपर्क जैसे क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत बनाने की प्रतिबद्धता दोहराई। कोलकाता में भवन ढहने की घटना के संबंध में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने भवन के परियोजना पर्यवेक्षक सहित 3 आरोपियों को हिरासत में लिया है और मामले की जांच जारी है। इस हादसे में अब तक 5 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कई अन्य घायल हुए हैं। सेना, एनडीआरएफ, पुलिस और अग्निशमन विभाग की टीमें राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई है। भारत और ताजिकिस्तान के बीच आतंकवाद रोधी संयुक्त कार्य समूह की 5वीं बैठक ताजिकिस्तान की राजधानी दुशांबे में आयोजित की गई। बैठक की सह अध्यक्षता विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव डॉ विनीत बहाड़े और ताजिकिस्तान के विदेश मंत्रालय के अधिकारी शिराली जोनेन ने की। बैठक में दोनों देशों ने वैश्विक और क्षेत्रीय स्तर पर आतंकवादी संगठनों से उत्पन्न खतरों तथा उग्रवाद, कट्टरपंथ, आतंकवाद के वित्त पोषण, तकनीकी दुरुपयोग और मादक पदार्थों की तस्करी जैसे मुद्दों पर चर्चा की गई। कोलंबिया के राष्ट्रपति चुनाव में वामपंथी उम्मीदवार इवान सेपेडा ने अपनी हार स्वीकार कर ली है। प्रारंभिक परिणामों के अनुसार उन्हें दक्षिणपंथी कारोबारी एबेलार्डो डेला एस्प्रियला

2:10 हो चुके हैं और अब हो गए हैं 2:11:03। मैं हूँ आपके साथ एक बार फिर से अंजू लेकर आई हूँ कार्यक्रम रात सुरमई। रहिए मेरे साथ इस घंटे और हम सुनेंगे बहुत ही मधुर गीत। शुरुआत दिल तो पागल है से, जिसे गाया है उदित नारायण के साथ लता मंगेशकर ने।

मोहब्बत भी क्या चीज है कोई समझाए हमें, मोहब्बत भी क्या चीज है कोई समझाए हमें, जो मुस्कुराए वो तो जान ले जाए और जो रुलाए वो दिल में घर कर जाए।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की

बदल जाए ये दुनिया पर हम ना बदलेंगे, तेरे थे तेरे हैं और तेरे ही रहेंगे। खत्म हुई अब जमानों से चाहतों की तलाश, खत्म हुई अब जमानों से चाहतों की तलाश, अब तुम्हें ही चाहेंगे और उम्र भर चाहते रहेंगे।

ऐसी नजरों से न देखो कि मैं होश खो बैठूं, जो बात दिल में छुपी है वो सरेआम कह बैठूं। तुम्हारी इन आंखों में वो नशा है कि बिन पिए ही महफिल में बहक बैठूं।

पहली बार किसी की नजरों का ऐसा असर हुआ है कि ना होश है ना जमाने की कोई खबर है। जुबां खामोश है पर दिल सब कुछ कह रहा है। ये प्यार का पहला नशा मेरी रूह में बह रहा है।

दोस्तों अभी होंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार और आगे का सफर आपके साथ बढ़ाएंगी हमराही लेकर आएंगी वंदना चुक। मुझे अनुमति दीजिए अपना और अपने अपनों का खास ख्याल रखिएगा। नमस्कार, शुभ रात्रि।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में प्रगति के 52वीं बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में लगभग 30,000 करोड़ रुपए के 4 प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की समीक्षा की गई। प्रधानमंत्री ने परियोजनाओं को समय पर पूरा करने और लंबित मुद्दों के शीघ्र समाधान पर बल दिया। बैठक में टीबी मुक्त भारत अभियान की भी समीक्षा की गई। श्री मोदी ने टीबी उन्मूलन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग और जागरूकता अभियानों में एनसीसी कैडेटों तथा माय भारत स्वयंसेवकों की भागीदारी बढ़ाने का सुझाव दिया। प्रधानमंत्री ने साइबर अपराध और डिजिटल धोखाधड़ी के बढ़ते मामलों पर चिंता व्यक्त करते हुए सभी एजेंसियों, बैंकों और डिजिटल प्लेटफार्मों के बीच बेहतर समन्वय तथा जन जागरूकता बढ़ाने के निर्देश दिए। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने चुनौतीपूर्ण वैश्विक परिदृश्य के बीच भारत दक्षिण कोरिया संबंधों को और मजबूत करने की आवश्यकता पर बल दिया है। सोल में दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री चो ह्यून के साथ बैठक में कहा कि वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में विश्वसनीय साझेदारों के बीच सहयोग पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गया है।
1: It is clearly our responsibility.
2: इस साझेदारी को आगे बढ़ाना हमारी जिम्मेदारी है। इसमें सरकार के अलग अलग विभाग और देश की अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलू शामिल हैं, जिनके बीच तालमेल बिठाना होगा कि हमें भविष्य को ध्यान में रखते हुए एक आधुनिक साझेदारी की ओर बढ़ना चाहिए।
1: रिलेशनशिप इन अ मोर डिफिकल्ट वर्ल्ड।
0: केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज से ब्रिटेन की 3 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर जाएंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया कि यह यात्रा भारत और ब्रिटेन के बीच महत्वपूर्ण व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते तथा दोहरे अंशदान पर समझौते के लागू होने से पहले हो रही है। ये समझौते 15 जुलाई से लागू हो जाएंगे। यात्रा के दौरान पीयूष गोयल लंदन में ब्रिटेन के व्यापार और वाणिज्य मंत्री पीटर काइल के साथ उच्चस्तरीय द्विपक्षीय बैठक करेंगे। बैठक में व्यापार समझौते को लागू करने की तैयारियों पर चर्चा होगी। ग्रामीण विकास विभाग आज नई दिल्ली में ग्रामीण विकास में एआई के उपयोग पर एक अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन करेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि ये 1 दिवसीय कार्यक्रम अत्याधुनिक तकनीकी नवाचारों को ग्रामीण भारत की जमीनी स्तर की विकासात्मक आवश्यकताओं के साथ जोड़ने के लिए एक सहयोगात्मक मंच के रूप में कार्य करेगा। केंद्रीय विद्यालयों के लिए 36वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता 2025-26 का पुरस्कार वितरण समारोह आज नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल इस समारोह की अध्यक्षता करेंगे। श्री मेघवाल विजेता विद्यार्थियों और विद्यालयों को पुरस्कार प्रदान करेंगे। कोलकाता में भवन ढहने की घटना के संबंध में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने भवन के परियोजना पर्यवेक्षक सहित 3 आरोपियों को हिरासत में लिया है और मामले की जांच जारी है। इस हादसे में अब तक 5 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कई अन्य घायल हुए हैं। सेना, एनडीआरएफ, पुलिस और अग्निशमन विभाग की टीमें राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्मेनिया के प्रधानमंत्री निकोल पाशिनियान और उनकी पार्टी को हाल ही में हुए संसदीय चुनावों में जीत पर बधाई दी है। दोनों नेताओं के बीच आज टेलीफोन पर बातचीत हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम एशिया की हालिया परिस्थितियों के बीच ईरान में फंसे भारतीय नागरिकों की निकासी में सहयोग के लिए आर्मेनिया का आभार व्यक्त किया। दोनों नेताओं ने व्यापार, रक्षा, प्रौद्योगिकी और लोगों के बीच संपर्क जैसे क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत बनाने की प्रतिबद्धता दोहराई। जिम्बाब्वे की सीनेट ने एक संवैधानिक संशोधन विधेयक को मंजूरी दे दी है, जिसके अंतर्गत देश में राष्ट्रपति के प्रत्यक्ष चुनाव समाप्त किए जा सकते हैं, अगले चुनाव को टाला जा सकता है और राष्ट्रपति का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। सीनेट में इस विधेयक के पक्ष में 75 और विरोध में 4 मत पड़े। प्रस्ताव के अनुसार वर्ष 2028 में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव को 2030 तक स्थगित किया जाएगा और राष्ट्रपति एमरसन मनांगवा का कार्यकाल 2 वर्ष बढ़ जाएगा। मौसम विभाग ने आज देश के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश की संभावना जताई है। पूर्वोत्तर क्षेत्र, झारखंड, महाराष्ट्र, ओडिशा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, तटीय कर्नाटक, कोंकण और गोवा में तेज बारिश हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani. The news read by Ashish.

नमस्कार, एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है एफएम गोल्ड चैनल और अब आप सुनेंगे गीत हमराही कार्यक्रम के अंतर्गत अपनी दोस्त वंदना चुक के साथ।

दोस्तों, दौर भले ही चला गया है, लेकिन हमारे जहन में ये गीत आज भी जुड़े हुए हैं। ताजमहल फिल्म से ये गीत आपने सुना मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाज में। साहिर लुधियानवी की रचना थी और रोशन का संगीत। अगला गीत आप सुनेंगे पेइंग गेस्ट फिल्म से आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाज में। मजरू सुल्तानपुरी की रचना है और एस डी बर्मन का संगीत।

दोस्तों, जमाने की परवाह क्या करें, उसने तो कुछ ना कुछ कहना ही है। इसलिए आपके दुख सुख में जो साथ दे, आप उसी के साथ खुश रहिए और अपनों का ख्याल भी रखिए।

दोस्तों, कुछ गीतों को तो लगता है कि साथ ही गुनगुनाते रहें और ये बजते रहें। आपके साथ भी ऐसा होता होगा जब ये तो कितना अच्छा लगता है ना। मुकेश और लता मंगेशकर की आवाज में आपने ये गीत सुना पूर्णिमा फिल्म से। गीत को रचा था गुलजार ने और धुन बनाई थी कल्याण जी आनंद जी ने। अगला गीत छाया फिल्म से लता मंगेशकर और तलत महमूद का गाया हुआ आपको सुनवा रही हूँ। राजेंद्र कृष्ण की रचना है और सलील चौधरी का संगीत।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 26 जून तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या माई गॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।
1: तो आपने ट्यून किया है FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर और इस समय मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त वंदना चुग हमराही कार्यक्रम के अंतर्गत।

जब आप किसी को देख लें तो वो आपकी आंखों में बस ही जाता है। घराना फिल्म से ये गीत था, मोहम्मद रफी और आशा भोसले का गाया हुआ। शकील बदायूं की रचना थी और रवि का संगीत। अगला गीत ये रास्ते हैं प्यार के, इस फिल्म से आप सुनेंगे मोहम्मद रफी और आशा भोसले का गाया हुआ। राजेंद्र कृष्ण के बोल हैं और रवि का संगीत।

अगला गीत आप सुनेंगे वो कौन थी इस फिल्म से, मनोज कुमार और हेलन पर फिल्माया गया है। इस फिल्म में हेलन बहुत ही सुंदर लग रही हैं। लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर का गाया हुआ राजा मेहंदी अली खान की रचना है और मदन मोहन का संगीत।

0: चोरी चोरी, इस फिल्म से भी आपने गीत सुना लता मंगेशकर और मन्ना डे का गाया हुआ। शैलेंद्र की कलम से निकला गीत था और धुन तैयार की थी शंकर जयकिशन ने। अगला गीत आप सुनेंगे दिल्ली का ठग फिल्म से। ये गीत किशोर कुमार और आशा भोंसले का गाया, मजरू सुल्तानपुरी ने गीत को लिखा है और रवि ने संगीत दिया है। सुन लेते हैं किशोर कुमार का हंसी से भरा हुआ अंदाज से ये गीत।
1: C-A-T cat, cat माने बिल्ली, R-A-T rat, rat माने चूहा, अरे दिल है तेरे पंजे में तो क्या हुआ?
2: M-A-D mad, mad माने पागल, D-O-Y boy, boy माने लड़का, अरे मतलब तो क्या हुआ?
1: C-A-T cat, cat माने बिल्ली, R-A-T rat, rat माने चूहा, अरे दिल है तेरे पंजे में तो क्या हुआ?
2: M-A-D mad, mad माने

0: G-O-A-T, goat. Goat माने बकरी. L-I-O-N, lion. Lion माने शेर. अरे दिल है तेरे पंजे में तो क्या हुआ.
1: Hey, madam.

0: उम्मीद है आपको ये किशोर कुमार का हंसी भरा अंदाज जरूर पसंद आया होगा। और अब अगला गीत, दोस्तों जिसकी भी जिंदगी में बहुत अच्छा चल रहा हो तो उसकी जिंदगी में भला बहारें क्यों नहीं आएंगी। तो अब सुन लेते हैं ये गीत और आपको पता चल जाएगा कि मैं ऐसा क्यों कह रही हूं।
1: ये कली जब

दोस्तों, मैंने आपसे कहा था कि आप जान जाएंगे, तो आप जान गए होंगे कि ये फिल्म का नाम लिया था मैंने कि उसकी जिंदगी में बहार आ जाती है। तो आए दिन बहार के इस फिल्म से आपने गीत सुना लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर की आवाज में। अगला गीत सूरज फिल्म से आपको सुनवा रहे हैं, मोहम्मद रफी और आशा भोसले का गाया हुआ। बहुत बार ऐसा होता है कि आप किसी को अपनी बात समझा रहे होते हैं लेकिन नहीं समझ में आती, फिर आप क्या कहते हैं, क्या करते हैं, छोड़ देते हैं उसे अपने वक्त पर, कोई बात नहीं। जब इसे या कहते हैं ना कि जब सयाना हो जाएगा तो खुद ही समझ जाएगा, तो इस गीत में भी ऐसा ही कुछ है।

दोस्तों, इस गीत के साथ ही आज का हमराही कार्यक्रम अब संपन्न होता है, लेकिन मैं कहीं नहीं जा रही हूँ क्योंकि मैं अगले कार्यक्रम के साथ भी तो जुड़ी हुई हूँ। और अब आपके लिए कुछ ही पलों बाद होंगे समाचार, आप सुनेंगे।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में प्रगति की 52वीं बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में लगभग 30,000 करोड़ रुपए की 4 प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की समीक्षा की गई। प्रधानमंत्री ने परियोजनाओं को समय पर पूरा करने और लंबित मुद्दों के शीघ्र समाधान पर बल दिया। बैठक में टीबी मुक्त भारत अभियान की भी समीक्षा की गई। श्री मोदी ने टीबी उन्मूलन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग और जागरूकता अभियानों में एनसीसी कैडेटों तथा माय भारत स्वयं सेवकों की भागीदारी बढ़ाने का सुझाव दिया। प्रधानमंत्री ने साइबर अपराध और डिजिटल धोखाधड़ी के बढ़ते मामलों पर चिंता व्यक्त करते हुए सभी एजेंसियों, बैंकों और डिजिटल प्लेटफॉर्मों के बीच बेहतर समन्वय तथा जन जागरूकता बढ़ाने

0: करने के निर्देश दिए। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने चुनौतीपूर्ण वैश्विक परिदृश्य के बीच भारत दक्षिण कोरिया संबंधों को और मजबूत करने की आवश्यकता पर बल दिया है। सोल में दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री चो ह्यून के साथ बैठक में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में विश्वसनीय साझेदारों के बीच सहयोग पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गया है।
1: इस साझेदारी को आगे बढ़ाना हमारी जिम्मेदारी है। इसमें सरकार के अलग अलग विभाग और देश की अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलू शामिल हैं, जिनके बीच तालमेल बिठाना बहुत आवश्यक है। मैं कहूंगा कि हमें भविष्य को ध्यान में रखते हुए एक आधुनिक साझेदारी की ओर बढ़ना चाहिए।
0: केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज से ब्रिटेन की 3 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर जाएंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया कि ये यात्रा भारत और ब्रिटेन के बीच महत्वपूर्ण व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते तथा दोहरे अंशदान पर समझौते के लागू होने से पहले हो रही है। ये समझौते 15 जुलाई से लागू हो जाएंगे। यात्रा के दौरान श्री गोयल लंदन में ब्रिटेन के व्यापार और वाणिज्य मंत्री पीटर काइल के साथ उच्च स्तरीय द्विपक्षीय बैठक करेंगे। बैठक में व्यापार समझौते को लागू करने की तैयारियों पर चर्चा होगी। ग्रामीण विकास विभाग आज नई दिल्ली में ग्रामीण विकास में एआई के उपयोग पर एक राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन करेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि ये 1 दिवसीय कार्यक्रम अत्याधुनिक तकनीकी नवाचारों को ग्रामीण भारत के जमीनी स्तर के विकासात्मक आवश्यकताओं के साथ जोड़ने के लिए एक सहयोगात्मक मंच के रूप में कार्य करेगा। केंद्रीय विद्यालयों के लिए 36वें राष्ट्रीय 2025-26 का पुरस्कार वितरण समारोह आज नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल इस समारोह की अध्यक्षता करेंगे। श्री मेघवाल विजेता विद्यार्थियों और विद्यालयों को पुरस्कार वितरित करेंगे। कोलकाता में भवन ढहने की घटना के संबंध में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने निरीक्षक सहित 3 आरोपियों को हिरासत में लिया है और मामले की जांच जारी है। इस हादसे में अब तक 5 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कई अन्य घायल हुए हैं। सेना, एनडीआरएफ, पुलिस और अग्निशमन विभाग की टीमें राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्मेनिया के प्रधानमंत्री निकोल पाशिनियान और उनकी पार्टी को हाल ही में हुए संसदीय चुनावों में जीत पर बधाई दी है। दोनों नेताओं के बीच टेलीफोन पर बातचीत हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम एशिया की हालिया परिस्थितियों के बीच ईरान में फंसे भारतीय नागरिकों की निकासी में सहयोग के